0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: बुधवार 10 जून घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। सुप्रभात आप सभी को। 6 बज चुके हैं, समय हुआ है समाचार का, और समाचारों के बाद शुरुआत होगी भोर की बेला इस कार्यक्रम की। तो ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा आप रेडियो मॉरिशस पर।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। सुमेरा से नमस्कार रादाब।
4: नमस्कार रादाब। हमारे जलाशयों में जल स्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कलाम हुई CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। मोगोवाकवा में हालत काफी गंभीर है, जो सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनजर कई कदमों पर गौर किया जा रहा है। भारत की तरफ से मॉरिशस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास ढांचे की जरूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम अहम हैं। इस संदर्भ में लातू के नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। और ये भी जाने कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स लगते थे। विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अबनाए होर्मुज पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए। और उधर इसराइल ने दक्षिणी लबनान में कई जानलेवा हमले किए, बावजूद ये कि ईरान ने चेतावनी दी। लिबनानी विदेश मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल सुनिए।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह कुछ छींटे पड़ेंगे खासतौर पर पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में। दूसरे इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और दक्षिण तथा ऊंचे इलाकों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। आज रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। हवा आज सुबह उत्तर की तरफ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पूर्व में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। दिन के दौरान समुद्र की हालत में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20

0: अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त 5:37 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
4: तो चलिए, नया दिन निकल चुका है एक नई शुरुआत के साथ, हम भी आ चुके हैं आपके साथ, जुड़ चुके हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़ चुके हैं, आप सभी का दिल से स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। और चलिए, नया दिन है, बहुत कुछ होगा नए दिन के लिए, बहुत कुछ हमने सोचा होगा, बहुत कुछ हमें करना है, बहुत सारे सपनों को साकार करना है, बहुत सारे अरमानों को पूरा करना है। तो नया दिन एक अवसर होता है, एक नया जीवन होता है, और नए दिन का हर एक क्षण जो है अपने आप में बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। तो इसका सही उपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास हम करते हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस भोर की बेला को आरंभ करते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो चलिए, इसी के साथ आपको बता दें, कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, और फिर लगभग 6:20 पर सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में। अभी के लिए सनातन धारा, इस कार्यक्रम को हम सुनते हैं सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
5: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
6: निगम का

फलं सुखमुखादमृतद्दवसंयुतं सुखमुखादमृतद्दवसंयुतं।

रसमालयां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयां। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय गीता और स्वधर्म। श्री गोविंद मुखार वंदम मधुनाम निष्टम महाभारती गीतारभ्यम परमं रहस्यम मृषाणां व्यासेन व्याख्यापितं व्यास्यंख्यातं भवति पदे प्रतिपदं श्री शंकराख्यां पुनः विस्पिष्टं मधुसूदनेन मुनीनां स्वशां शुद्ध्यति कृतं। महर्षि व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद मधु से मधुर गीता नाम का परम रहस्य महाभारत में प्रसिद्ध किया। भागवत पद श्री शंकराचार्य जी ने उसके प्रत्येक पद की व्याख्या की है, फिर उसी के मधुसूदन मुनि ने अपने ज्ञान की बुद्धि के लिए अनेक प्रकार के स्पष्ट किया। उनके माता अनुसार श्रीमद् भागवत, उनके मत अनुसार श्रीमद् भागवत गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संतुलित समन्वय है, परंतु

मानव की सर्वज्ञात्मक प्रक्रिया में प्रकृति की शक्ति के प्रभाव की मान्यता प्रदान कर गीता के कर्म के संबंध में अत्यंत साधारण बात कही गई है कि अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए तीसरे अध्याय में पांचवें श्लोक में कहा गया है, नहि किश्चितम् क्षणमपि जातो तिष्ठस्य कर्मकृतम् कार्यतेन हव्यवंश कर्म स्वः प्रकृतम् जुनेन। अर्थात सर्वता कर्मों का स्वरूप में त्याग ही भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। निसंदेह सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवंश हो करके कार्य करते रहते हैं। फिर 33वें श्लोक में कहा गया, दृश्यम चिन्त्यते स्वस्थाय प्रकृति ज्ञानवानामपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी अपने स्वभाव से परवश होकर के कर्म करते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर निग्रह क्या करेंगे। आगे वर्णन है कि मनुष्य की श्रद्धा बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव प्रकृति से उत्पन्न होती है। 18वें अध्याय में तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस कर्म को तुम मुंह से नहीं करना चाहते हैं उसे भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश हो करके करेगा। प्रत्येक धर्म की यही समस्या है कि मानवता को किसी प्रकार समुचित पथ की ओर उग्रसर किया जाए और मानव की स्वाभाविक प्रकृतियों को कल्याण की ओर मोड़ा जाए। अपने अपने ढंग से सभी कर्म इनका समाधान उपस्थित करते हैं। इस संबंध में गीता कहती है, श्रेषां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिताम् तथा स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावसः। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है, तथा अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में भय देने वाले होता है। धर्म शब्द बहुत व्यापक है। गीता के अनुसार धर्म का तात्पर्य केवल जाति व्यवस्था वाले धर्म से ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव अथवा प्रकृति एवं कर्तव्य से है। स्वधर्म का अर्थ है अपना धर्म, अपने नियत कर्म का करने वाला पाप का भागी नहीं होता। स्वभावं नित्यं कर्म कुर्वाणां नोति केवलम्। प्रश्न उठता है कि कभी कभी अच्छे मनुष्य भी न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से किया था। अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरितं पुरुषं अनिछन्नपिवापेन बलाद्यते नियजितम्। भगवान ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है, काम एषम क्रोधम एषम रजोगुणम सद्बुहेत महाशनि महापापात्मं विद्यते महितं वै।

हिरणी भूमिनाम नियति ही बहिवत्याम देशी मलिन च यथोवालम वृतम त घरबस्तम तिदतम कृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानति नित्यं त वैरति कामरूपेण कैंतेन्य दुष्पकरे दिलायते। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह ही महा अनशन अर्थात अग्नि के समान भोग से न तृप्ति होने वाले और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तुम वैरी जान। वैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, वैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि के काम समान न पूर्ण होने वाला काम रूपी ज्ञानियों के नित्य बैर से ज्ञान ढका हुआ है। काम महाशत्रु है, अतएव इंद्रियों को वश में करने से पहले उसी पापी को मारने वही सलाह दी जाती है। तस्मत्वाम छिद्र्याणिं दौ नित्यं तं भरते वर्षितं पापात्मां ब्रह्मजीवा ज्ञानं विज्ञानं नाशनम्। स्वधर्म अर्थात अथवा स्वभाव हमारे लिए प्राकृतिक देन है, इसका पूर्व विकास होना चाहिए और उसे ऐश्वर्य की सेवा में लगाना चाहिए। स्वभाव आत्मा का शत्रु नहीं, प्रतियुक्त उसका मित्र है। इसे दबाना ठीक नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमता के साथ संचालित करना चाहिए। इससे अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है। स्वधर्म सहता और स्वच्छा का घोतक है, इसमें प्रतिरोपण को स्थान नहीं है। गीता के अनुसार जो कार्य स्वभाव और स्वेच्छा से नहीं किया जाता वह उत्तम नहीं है, और जो कार्य किसी के सामर्थ्य के बाहर हो और बिना सोचे समझे किया जाए वही वह भी बुरा है। व्यवहार शास्त्र का भी ऐसा ही निर्देश है। असंख्यानि च वस्तुनाम नारभेतम विचक्षण। गीता के 18वें अध्याय में सभी कार्य को 3 भागों में सात्विक राजस और तामस में विभक्त किया गया है। उसमें पहला स्थान उस सात्विक कर्म का है जो नित्य किया गया हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल ने की चाहने वाले पुरुष द्वारा किया गया हो। इस प्रकार स्वधर्म का तकाजा है कि मनुष्य आध्यात्मिक संसार में अपना काम सतर्कता और स्वेच्छा से करे। वह अपने अपेक्षित स्वभाव को समझे और तद अनुकूल कर्म करें। स्वधर्म की परिभाषा में केवल सहजता और स्वेच्छा ही नहीं है, बल्कि उसमें कुशलता का भी समावेश है। अपने कर्तव्य का पालन सावधानी से होना चाहिए। हाँ, कार्य निर्धारण में भी सतर्कता होनी चाहिए। लोगों के वैसा ही काम दिया जाए जिसके लिए वे पूरी तरह दक्ष हो। इस दृष्टिकोण से हमारे मनुष्यों द्वारा गुण कर्म के
आधार पर निर्धारित वर्ण व्यवस्था जिसका

0: प्रचलन अति प्राचीन काल से है, एक आदर्श व्यवस्था है। इसीलिए गीता में वर्ण व्यवसाय का उल्लेख 2 बार हुआ है। कुछ लोग इसे संकुचित दृष्टि से देखते हैं, जो ठीक नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सवेरे के 6:20 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुन लीजिए। कौंदोस वाकवा रोड के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, कौंदोस वाकवा रोड के खासकर लाल बहादुर शास्त्री रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 11 जून को दोपहर के दो से साढ़े चार बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और श्रोताओं, अभी के लिए समय हुआ है सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में सुने यह विशेष कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य खेदू जी, तो आइए उनको सुनते हैं और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर।
3: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। मॉरिशस आर्य विवेक पचाने सभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है सत्याप्रकाश में गृहस्थ धर्म। महर्षि देव दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुलास में विवाह एवं गृहस्थ प्रकरण का विस्तार रूप से वर्णन किया है। मनु महाराज का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमं अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमं आ विवेशत। जो ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों का वा तीन अथवा दो अथवा कम से कम एक वेद का पूर्ण रूप से वेदांग व उपांग सहित पढ़े, वे स्त्री एवं पुरुष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृहस्थ का अर्थ होता है घर से संबंधित कार्य। पूर्ण विद्या प्राप्त करने के पश्चात ही गृहस्थ में प्रवेश होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से पति पत्नी का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और वैदिक धर्म में दोनों पुरुष और स्त्री को उत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तभी दोनों मिलकर गृहस्थ के दायित्व को अच्छी तरह से निभा पाते हैं। निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन एक बड़ा दायित्व होता है जिससे जीवन भर निभाना पड़ता है। गुरुकुल में विद्या अध्ययन के बाद स्नातक अपने आचार्य एवं अपने माता पिता आदि परिवार के बड़े लोगों से अनुमति प्राप्त करके ही गृहस्थ में प्रवेश करें। वर एवं कन्या के स्वभाव एवं गुण मिलने चाहिए, क्योंकि विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का ही है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे के समान गुण होना अति आवश्यक है।

0: आवश्यक हैं। संतुष्टो भार्याया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस घर में पत्नी पति परस्पर एक दूसरे से हमेशा खुश रहते हों, उस कुल में सदा आनंद लक्ष्मी और कीर्ति का वास होता है। परंतु जिस घर में पति पत्नी के बीच में पारस्परिक मेल न हो, हमेशा कलह होता हो, वहाँ दुख दरिद्रता एवं निंदा का निवास रहता है। इस कारण ऋषि दयानंद जी ने स्वयंवर की रीति से उत्तम वर वधु चुनने को श्रेष्ठ माना है। जहाँ वर एवं कन्या एक दूसरे के प्रसन्नता से एक दूसरे का वरण करके विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गृहस्थी का यह परम धर्म होता है कि वे नित्य प्रति 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। वे 5 महायज्ञ इस प्रकार हैं: ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा, नृ यज्ञम, पितृ यज्ञम च यथाशक्ति न हापयेत, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं पितृ यज्ञ। इनको गृहस्थ सदा करते रहें तथा इनमें कभी भी प्रमाद न करें। प्रातः एवं सायं के संध्या बेला में नित्य प्रति ईश्वर की उपासना करना, वेद आदि आर्ष शास्त्रों का अध्ययन एवं स्वाध्याय तथा योगाभ्यास ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसका फल स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना से मानसिक शांति, सद्गुणों की प्राप्ति, अहंकार की समाप्ति एवं आत्मिक शांति प्राप्त होती है। देव यज्ञ का तात्पर्य होता है विद्वानों का संग एवं उनकी सेवा से दिव्य गुणों को अपनाना, विद्या की उन्नति करना तथा दोनों संध्या काल में अग्नि में घृत आदि हव्य पदार्थों की आहुति देना। इससे वायु की शुद्धि एवं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जीवित माता पिता, बुजुर्ग एवं जानियों का सेवा सत्कार करना ही पितृ यज्ञ होता है। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। पाक अग्नि में घृत युक्त अन्न की आहुति एवं अन्य प्राणियों के लिए अन्न का भाग निकालना बलिवैश्य देव यज्ञ है। पाकशाला में अर्थात रसोई में आहुति देने से वहाँ की वायु शुद्ध होती है तथा जो अज्ञानतावश अदृश्य जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार के रूप में अन्न का भाग निकाला जाता है तथा धार्मिक विद्वान एवं अतिथियों का घर पर सेवा सत्कार करना ही अतिथि यज्ञ होता है। उनके सतुपदेश से गृहस्थ अपने संदेह निवृत्ति प्राप्त करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो चा नुचिन्तयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेदत्वार्थमेव च। वे ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर आवश्यक कर्म करके धर्म का पालन करते हुए शारीरिक रोगों के कारणों को दूर करें तथा परमात्मा का ध्यान करें। जीवन में कभी भी अधर्म का आचरण न करें, किसी से भी व्यर्थ में विवाद न करें, कभी भी कुसंग न करें, हमेशा सदपात्रों को ही दान दें, कुपात्र को कभी भी दान न दें। स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद जी गृहस्थों को सन्मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिए हैं। उनको कदापि धर्म के मार्ग को नहीं त्यागना चाहिए। मनु महाराज का श्लोक प्रस्तुत करते हुए ऋषि लिखते हैं, येनास्य पितरो याता येन याता पितामह येन याता त्वास्तम मार्गम तेन यच्छन्न ऋष्यते। जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज अर्थात पिता दादा चले हों उस मार्ग में संतान भी चलें तथा उनका अनुकरण करें। परंतु जो सत्पुरुष पिता पितामह हो उन्हीं का मार्ग पर हम चलें। यदि वे अधर्म के मार्ग पर चलते थे तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि धर्मात्माओं के बनाए हुए रास्ते पर चलने से हमेशा सुख की अनुभूति होती है। आज के आधुनिक युग में अनेक घरों में गृहस्थ एवं पारिवारिक संबंधित नाना प्रकार के परेशानियों को देखने को प्राप्त होता है। गृहस्थ से ही परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का तथा समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः राष्ट्र की उन्नति का पूरा दायित्व एक सुखद गृहस्थ पर है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे को समझें, कभी भी एक दूसरे से वैर भाव न रखें, सबसे मधुर भाषा का प्रयोग करें। छोटी शंकाएं अथवा छोटा विवाद ही बड़ा रूप धारण कर लेता है, प्रयत्नपूर्वक इनको दूर करना चाहिए। एक गृहस्थ तभी स्वर्ग के समान होता है जब पति पत्नी में विश्वास एवं प्रेम हो, परिवार के सभी सदस्य एक सूत्र में बंधे हुए हों, तब जाकर के परिवार सुखद होता है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: नमस्कार आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट। CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोबा को सिर्फ 45.8% भरा। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5-10 पॉइंट गवा सकेंगे। प्रशिक हिरू मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। और इसराइल ने जनूबी लेबनान पर जोरदार हमले किए, 8 लोगों की मौत हुई। खुशामदीद। इस बुलेटिन में हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कल आम हुई CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोबाकुआ में हालत काफी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनजर कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए बोहोल्स, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क्याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के अध्यक्ष लोमिश जगू के मुताबिक अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। मुख्तलिफ साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए जा रहे हैं ताकि अवाम पर इस स्थिति के असरात को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके। शैली नियाबन ने उनसे बात की है, उन्हें सुनते हैं आशिता रघु की जबानी।
4: एक बोहोल की खुदाई की परियोजना जल्द शुरू होगी, विशेषकर जहां इसकी जरूरत पड़ रही है। देश का जल स्तर काफी चिंताजनक है और इसके साथ साथ सेंट्रल प्लाटो के इलाकों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि महोबाकुआ जलाशय का जल स्तर लगभग 46% है, जहां आमतौर पर इसी अवधि के दौरान हम 85% के लगभग होते हैं। चंद सावधानी के कदमों में CWA की ओर से कंटेनराइज प्रेशर फिल्टर्स बिठाए जाएंगे, जहां पानी की छोटी धार है वहां से पानी निकालकर ट्रीटमेंट के बाद पानी की कमी जहां हो रही है उन इलाकों में पानी का वितरण किया जाएगा और साथ ही पानी के वितरण की मांगों पर भी पुनः गौर करना होगा। जल्द ही इस संबंध में फैसले आम किए जाएंगे।
3: इस हालत के मद्देनजर अधिकारी जनता से पानी जाया न करने की मांग करते हैं और M1 पर

0: ला मैटिनल के दौरान सीडब्ल्यूए के जनरल मैनेजर श्याम तानू स्टूडियो में 8:15 बजे से एक इंटरव्यू के दौरान जानकारियां देंगे। भारत की तरफ से मुशर्रफ को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 35 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की जरूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम अहम है। इस सिलसिले में लातूकेनिक में नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहां एक दौरा किया। सांताना पोस्नो ने उनसे बात की।
1: Il y en a 45 bus ici, ici il y avait 13 la route et il y en a 9 charging places. Rémi Ollier qui m'a visité la dernière fois, il y en a 20 des bus qui roulaient depuis là-bas. Ici il y avait 10 la route et il y en a 2 charging stations. Forest Side qui est un grand dépôt aussi, sous construction en ce moment. Et là-bas il y en a 19 bus et 6 la route ici il y a et il y en a 9 charging stations. Là il y en a Rivière du Rapport aussi qui est un bus qui sortit la tour électrique ici. Passe pour lui, il prend pas sa fille à Rivière du Rapport le matin et peut retourner. Là-bas, il y en a 9 bus et 4 la route des séries.
0: इस दौरे के दौरान सेशल की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत भी मौजूद रहीं। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संदर्भ में मुशर्रफ में हुई तरक्की का उल्लेख किया और पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अमल की भी सराहना की और ये जाने कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स थे। मेट्रो में अनुचित हरकतों और मेट्रो लाइन पर इलेक्ट्रिक सामग्रियों की चोरी के मुतालिक बढ़ती तादाद के सिलसिले में मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड कदम उठाने का दावा कर रही है। सवारियों की हिफाजत के लिए अपराधियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मेट्रो एक्सप्रेस ने इलेक्ट्रिक सामग्रियों को हाट लगाने के खतरों के बारे में याद दिलाया, इसके चलते अब सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। बुजुर्ग और बेवा महिलाओं को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी के संदर्भ में नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पिछले 4 जून को हेमराज मनोहर और 5 जून को रमेश हेमराज की गिरफ्तारी के बाद एफसीसी ने फेसबुक पर कल एक पोस्ट में सूचित किया कि 12 शक की शिकार लोगों की सुनवाइयां हो चुकी हैं। फिलहाल करीब 40 लोगों से पूछताछ की जा रही है। एफसीसी मांग करता है कि जिस किसी के पास इस मामले में मालूमात हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को इतला करे। अन्य खबरों में, हिरन की शिकारी हर साल मुशर्रफ में अहम आमदनी लाती है और इस साल 600 टन मांस प्राप्त करने का अनुमान है, जो प्रति किलो 350 रुपए में बेचे जाएंगे। इस संदर्भ में नया सीजन 1 जून से शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं ताकि सप्लाई हो और साथ में भागीदारों की सुरक्षा का आश्वासन भी हो। सोसाइटी डी शास्त्रिया से वैसों दारिफा ने कुछ स्पष्टीकरण भी दिए हैं। शबनी जुजिया वाहिद अली ने उनसे बात की, उन्हें सुनते हैं अशिता रघु की जबानी।
2: रविवार और सोमवार के बीच संघर्ष अचानक बढ़ने के बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले तुरंत रोकने का फैसला लिया है। दोनों पक्षों ने कहा कि अपनी अपनी तरफ से प्रहार नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि दोनों में से किसी ने भी इस फैसले का उल्लंघन किया तो भीषण जवाबी हमले होंगे। रविवार के मिसाइल
0: हम बाद में इस टेप पर ज़्यादा जानकारियां देंगे। अन्य खबरों में, अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहानों में ख्याल मुगिसिया की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद 1:15 बजे से 2 बजे के बीच मुशर्रफ एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES जा सकते हैं। ये प्रक्रिया वहां जाकर पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए 526 रुपये और पर्चे के लिए 3,499 रुपये लगेंगे। जो उम्मीदवार इसी पर्चे के लिए GCEO लेवल के लिए पंजीकृत हो चुके हैं, उन्हें कोई फीस भरनी नहीं पड़ेगी। बालिगों को अपने साथ अपने

0: अपना आईडी कार्ड और ओरिजिनल जन्म पत्र लाना चाहिए, जबकि नाबालिगों को अपना जन्म पत्र और स्कूल का एडमिशन कार्ड और हालिया खींची दो तस्वीरें लानी चाहिए, जिन पर एक नामवर व्यक्ति के दस्तखत होना चाहिए। प्रशिक हिरू मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। रविवार को महाराष्ट्र भवन मोका में नई प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। संकल्प दल से प्रशिक हिरू को 146 वोट मिले, जबकि चक्र दल से पूर्व अध्यक्ष बलराज नारू को 125। नए अध्यक्ष ने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र भवन के दूसरे चरण के निर्माण पर जोर देंगे। उन्हें सुनते हैं, राजमीरा सिंधामुनी ने उनसे बात की।
1: Construction de la Maharashtra Bhavan, deuxième phase, pour continuer en parallèle avec nos activités qui nous habituent à faire. Quelques projets qui nous tiennent dans le manifeste électoral, c'est le Marathi Adult Online Classes, le Chhatrapati Shivaji Maharaj Challenge Cup au niveau régional et national, le APLA Trail, le National Art School et Caravane de Santé dans quatre coins de l'île.
0: विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने आब नए हॉर्मुज पर एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए। उधर इसराइल ने दक्षिणी लबनान में कई जानलेवा हमले किए, बावजूद ये कि ईरान ने हमला न करने की चेतावनी दी थी। लबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है।

और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटो में कुछ चीते पड़ेंगी और बाद में मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बादल घेराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। आज रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। आज सुबह हवा उत्तर की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पूर्व में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट। CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोवाक्वा सिर्फ 45.8% भरा। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स थे। प्रशिक हीरो मुर्शिद मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मराठी भाषा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के अलावा स्पोर्ट्स के विकास को अपनी प्राथमिकताएं बताई। और इसराइल ने जनूबी लबनान पर जोरदार हमले किए, 8 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।

शोक समाचार सुनिए. डेबी स्ट्रीट फॉरेस्टसाइड में 66 साल के 66 years old श्री जैन मुचुराम जो जैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और ताबाजी जैन के संचालक थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज दो बजे इनके भाई रॉय मुचुराम के घर डेबी स्ट्रीट

साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कैथ कारो ओकुले में 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवी गुटिया, श्रीमती देवी गुटिया पैदाइशी नाम सानजेन, जो देवी पैट्रिसिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह तीन बजे इनके रिश्तेदार पूनम पुरन के घर कथकाहो उकुले से उठा

एपिसोड श्रीमती विद्यावंती दिगम, श्रीमती विद्यावंती दिगम जो रमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 3 बजे इनके बेटे ललन रिडोई के घर मोते एस कॉम्बनोआ पिचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो पिचित रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 3 PM नंबर 77 नंबर 77 एचन पेलो स्ट्रीट पोर्ट लुई में 81 साल के 81 years old जनाब स्वादिक बाई दौलत, जनाब स्वादिक बाई दौलत जो बाई स्वादिक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे के घर नंबर 77 नंबर 77 एचन पेलो स्ट्रीट पोर्ट लुई से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए अलक्सा मस्जिद प्लानवेट और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM मुसलमान मोरियाल कोरोमोंडेल में 84 साल की 84 years old श्रीमती सुभावती सिउदीन, श्रीमती सुभावती सिउदीन जो शांति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे इनकी बहू संध्या सिउदीन के घर मुसलमान मोरियाल कोरोमोंडेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM कौशालू शुमैग्रोनी में 52 साल के 52 years old श्री हरीश चमन जो पुनन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10:30 बजे इनकी माँ शोभा चमन के घर कौशौल शुमैघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे गाले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM मॉस्क्रो द्रिशमोफ्लाक में 95 साल की 95 years old बीबी जैतून अली बोकस, बीबी जैतून अली बोकस पैदाइशी नाम मगन जो दादी जैतून के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 10 बजे आज सुबह 10 बजे के घर मॉस्क रोड रिश्मो फ्लाक से उठाकर सबसे पहले रिश्मो की मस्जिद करतबा मस्जिद जनाजे की नमाज के लिए और फिर दफनाने के लिए रिश्मो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल डे 10 AM रॉयल रोड बुआशेरी में 84 साल के 84 years old श्री अनिरुद्ध गंगा जो गंगा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके भांजे कृष्णराज राधाकिशन के घर रॉयल रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीजानी गुजबैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM डेमी ग्रोलिन प्लेन मान्यों में 51 साल के 51 years old श्री राकेश मातों जो पुपुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे के घर डेमी ग्रोलिन प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM स्कूल लेन फोंजूसैक में 53 साल के 53 years old श्री राजेश कुमार बीरियों जो जेरो मोगल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे इनके पति प्रियादत्त बीरियों के घर स्कूल लेन फोंजूसैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00 PM रॉयल रोड ख्वाबगा पिटी राफ्रे में 23 साल के 23 years old श्री मिहिर शाम की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके घर रॉयल रोड ख्वाबगा पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM फोबाक रोड फोंजूसैक में 82 साल की 82 years old श्रीमती पद्मावती रूपचंद जो छोटकी चाची के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके बेटे साइलेश मुरत के घर फोबाक रोड फोंजूसैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंजूसैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 36 नंबर 36 अबातुआ रोड रोशबुआ में 58 साल के 58 years old श्री खेमराज चारिटर जो जानों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर
नंबर 36, नंबर 36 साबातवा रोड खुशबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 ए

0: Gudcharan Lane, Midlands में 74 साल के 74 years old श्री आत्मदेव दुमन, श्री आत्मदेव दुमन जो रांदाबेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे। आज 11 बजे इनके घर गुजचरण लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसेलमो प्रोविडेंसिया टू प्रोविडेंस कोटी मिलिटिया में 52 साल के 52 years old श्री महेश्वर पटू, श्री महेश्वर पटू जो सतीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और CID मोका में पुलिस सर्जन थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 9:30 बजे। आज सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी तिहा मनुष मीनाक्षी पटू के घर मोसेलमो प्रोविडेंस प्रोविडेंस कोटी मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेडिन कॉन्डे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। मुलजी लेन प्लेनमानियों में 78 साल के 78 years old के श्री सुखजन बिसुनी, श्री सुखजन बिसुनी जो जीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और शुभ टैक्सी के नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 1 बजे। आज 1 बजे इनके बेटे विशाल बिसुनी के घर मुलजी लेन प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। भोगन रोड रिविया जोंपर में 56 साल के 56 years old श्री कृतानंद भोगन जो जुके के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 1 बजे। आज 1 बजे इनके घर भोगन रोड रिविया जोंपर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इंग्लैंड में 72 साल के 72 years old श्री राजेंद्र रुचाया जो रॉय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और टैगोर रोड फोजुसा के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई हैं और थे आज 1:30 बजे। आज 1:30 बजे इनकी पत्नी सविता रुचाया के घर इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ईस्ट लंदन इंग्लैंड की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड प्रोविडेंस कोटी मिलिटिया में 74 साल की 74 years old की श्रीमती वालिमी पालियाची मुनियों, श्रीमती वालिमी पालियाची मुनियों पैदाइशी नाम सीनातोंबी जोमानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 2 बजे। आज 2 बजे इनके पोते मुदाली बेन पाजानी के घर और रोड प्रोविडेंस कोची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रामचंद रोड रिपाई में 82 साल की 82 years old श्रीमती कुसमावती रामन जो मावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 9 बजे। आज 9 बजे इनके घर रामचंद रुद रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। बेनिका लेन नंबर 2 ग्लेनपार्क वाकुआ में 64 साल की 64 years old श्रीमती सुमित्रा बाई बाऊ पैदाइशी नाम लक्सीमो जो मांटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 9:30 बजे। आज 9:30 बजे इनके घर बेनिका लेन नंबर 2 ग्लेनपार्क वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट के पिप में 77 साल के 77 years old श्री जय पोगासस रामसरन जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 10 बजे। आज 10 बजे इनकी पत्नी शांति बाई रामसरन के घर लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट के पिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकुआ में 68 साल के 68 years old श्री धर्मरोध देवी जो राजेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 10:30 बजे। आज 10:30 बजे इनके बेटे कुशल देवी के घर सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। चंद्र लेन लागोजा में 89 साल के 89 years old श्री राम सामी यामानारेडी आपादू जो नारायण के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 1 बजे। आज 1 बजे इनके बेटे दमारेडिया पादू के घर चंद्रलेन लाखोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदाल बेया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्यसभा मॉरिशस एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित महान वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष प्रवचन देंगे। तारीख बुधवार 10 जून। जगह कौन दे मास पावे आर्य समाज। समय दोपहर 4 बजे।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल से शुरू होगा। रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी तीनों देशों में। पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच। ये ग्रुप ए का मैच है, जिसमें मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक है। किक ऑफ आज रात, कल रात 11 बजे, फिर परसों सुबह 6 बजे साउथ कोरिया चेक रिपब्लिक, और रात 11 बजे ग्रुप बी में कनाडा का मुकाबला बोस्निया से होगा। ब्राजील का पहला मैच संडे सुबह 2 बजे, फ्रांस का पहला मैच सेनेगल के खिलाफ होगा। अर्जेंटीना की एंट्री होगी बुधवार को। इंग्लैंड ग्रुप एल में है, पहला मैच बुधवार को मिडनाइट किक ऑफ क्रोएशिया के खिलाफ। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच खेले गए। कल सुबह स्पेन ने पेरू को 3-1 से हराया। चीन 0, थाईलैंड 0, इंडोनेशिया 1, मोजाम्बिक 0, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1, चिली 2, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ रशिया 3, त्रिनिदाद 0, हंगेरी 3, कजाकिस्तान 1, जोबोस्लाई का 1 गोल रहा। आज सुबह सऊदी अरेबिया और सेनेगल के बीच मैच ड्रॉ 0-0। अर्जेंटीना हाफ टाइम में आइसलैंड के खिलाफ 1-0 से आगे था। इराक वेनेजुएला वाला मैच भी वेनेजुएला 1-0 से आगे। फिर आज ही पोर्टुगल का मुकाबला नाइजीरिया से होगा और इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से। ट्रांसफर न्यूज। एथलेटिको मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज के लिए रियल मैड्रिड 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है, पर एथलेटिको मैड्रिड ने कहा उसका रिलीज क्लोज 430 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग है। फुलहम से मैनेजर मार्को सिल्वा अब बेनफिका में जा रहा है। मैनेजर मार्को सिल्वा वहां योजे मोरिनो के स्थान लेगा। द स्पेशल वन वापस रियल मैड्रिड में जा रहा है। योजे मोरिनो के साथ एएस रोमा में आर्सेनल का डिफेंडर कलाफ्योरी खेल चुका है। मोरिनो उसे अपने साथ अब रियल मैड्रिड में लाना चाहता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के डिफेंडर लेविस हॉल पर है, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाड़ी एलियट एंडरसन के वेज डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार, पर मैनचेस्टर सिटी फ्रंट रनर है, आगे है एंडरसन को साइन करने के लिए। और क्रिकेट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में हराया। इंडिया ए टीम की जीत हुई श्रीलंका ए टीम के खिलाफ। वैभव सूर्यवंशी इस बार केवल 14 रन बना पाया। ऋतुराज गायकवाद की सेंचुरी रही। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। भूलिएगा नहीं, हमारी मुलाकात फिर से होगी 7:40 पर RM2 पर, और RM2 पर ही 8:30 वर्ल्ड कप स्पेशल जरूर सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी लोग अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: बुधवार 10 जून घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का दिल से स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए आप सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा हम करते हैं और यहाँ पर हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर बुधवार का दिन है, जून महीने की 10 तारीख है। आज का दिन बहुत से लोगों के लिए खास होगा, बहुत कोई खास वजह होगी, कोई खास कारण होगा। तो चलिए जो भी कुछ अच्छा है उससे और भी अच्छा हो ऐसी उम्मीद हम करते हैं, और ये दिन और भी खास हो और भी स्पेशल हो आप सभी के लिए ऐसी आशा हम करते हैं, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह का नजराना इस प्रोग्राम से। म्यूजिकल सफ़र है, चलने वाला है सवेरे के 9 बजे तक। खूबसूरत गाने तराने तो होंगे ही, शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस भी, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी। सुदेर किस बात की है, बस जुड़ जाइए इस म्यूजिकल सफर के साथ 9 बजे तक। और आइए अभी के लिए सुबह का नजराना की शुरुआत हम करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जो धैर्यवान नहीं होता है उसका ना ही वर्तमान होता है ना ही भविष्य। धैर्य का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि धैर्य ही हमारा सच्चा साथी है।

0: यकीनन सुख की बात करें या दुख की बात करें, यह मौसम के समान होता है, आज है तो कल बीत जाता है। इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर रहे हो, कैसे भी हालात क्यों ना हम पर आए हो, या कैसे भी मुश्किलों का सामना हम क्यों ना कर रहे हो, बस धैर्य बनाए रखे। समय है, वक्त है, ये ज़रूर गुजरता है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, परिवर्तन ही कहते हैं ना कि जीवन का नियम है, तो बस बदलने का इंतजार करें। आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिश।

0: रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए देखते ही देखते सवेरे के 7:10 आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीईबी कटरबोन के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। कटरबोन के खासकर एवेन्यू विक्टोरिया, एवेन्यू दिपिने, एवेन्यू नाज, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 11 जून को सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मौसलमा ग्रीन क्रीक फ्लिक ऑफ लॉक यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है। खासकर यहाँ के इन इलाकों में रहने वाले ग्राहक रुई दे क्वेंदेमिया एवेन्यू कोदेगॉड रुई दे लिल प्लाथ रुई दे इलो गैब्रियल रेसिडेंस ब्लू रॉक, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 11 जून को सुबह के 8:30 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। कोरोमोडल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है। कोरोमोडल के खासकर इन इलाकों में रहने वाले ग्राहक चैपमैन व्यू एवेन्यू सीरिसिया मौसलमा मोन्ट्रियल नंबर 1 नंबर 2 पुलिस क्वार्टर्स, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 10 जून को सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच और फिर दोपहर के 2:30 से 3:30 के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

चलिए, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है कहते हैं हमारी किस्मत में लिखी हुई होती है, और जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं लिखी हुई होती है उसे बेशक हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपनी कोशिश से ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता नहीं है, और जो भी कुछ मिल रहा है उसके पीछे हम सबका परिश्रम है, हम सबकी मेहनत है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है ना, हमारे माता पिता का जो परिश्रम है, जो त्याग है वो करते हैं, ये सारी चीज़ें ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। और जीवन की सुंदरता अपनों के साथ होती है, अपनों का प्यार होता है, अपनों का स्नेह होता है, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, अपनों के बीच विश्वास, ये सारी चीज़ें हमारी छोटी छोटी खुशियों को और भी बड़ा बना देती है, हमारे छोटे छोटे जो है लम्हों को और भी यादगार बना देती है, और जीवन जो है इनके बिना अधूरा होता है। और अभी के लिए हमारा प्रोग्राम जो है आप लोगों के बिना अधूरा है, आप लोगों का साथ है तो हमारी प्रोग्राम की खूबसूरती भी बहुत बढ़ जाती है। चलिए, अभी के लिए बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। ऐसे तो अभी के लिए सुबह का नजराना ये प्रोग्राम चल रहा है, 7:40 से शामिल करेंगे आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपके डेडिकेशंस, आपके बर्थडे विशेस, जिसके लिए सवेरे से ही आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 बजे हम लेकर आएंगे खेल खेले हम इस प्रोग्राम को, एक छोटा सा क्विज आपको तो पता ही है हर बुधवार को होता है। और फिर 8:50 पर आप किरण जानकी से सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को। 9 बजे होगा समाचार, और समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस कार्यक्रम को रत्ना की प्रस्तुति में। 10 बजे के समाचारों के बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11 बजे होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोसा। दोपहर के 12 बजे विश्वा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 बजे प्रीति प्रस्तुत करेगी मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 बजे आरसी द्वारा आप सुन पाएंगे तमिल भाषा में प्रोग्राम। 2:15 बजे गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी अमिता। 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपके पसंद इस प्रोग्राम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपेर के 4 बजे शीरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा। 5 बजे खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारी की प्रस्तुति में। 5:15 बजे से रोशन और उषा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे अंता

अक्षरीय इस प्रोग्राम को शाम के 6 बजे समय होगा पूरा समाचार का MBC रेडियो पर 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड, 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे युवरासन द्वारा, 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे राजेंद्र से, 7:50 पर मराठी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे गीत गंगा नितिन बापू, रात के 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे रोशनी से, 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब, 9:00 से 11:00 के बीच आप प्रताप की प्रस्तुति में सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम को, और 11:00 गिनीशा की पेशकश में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस कार्यक्रम को, 12:00 से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: यकीनन जीवन में कुछ अच्छा चाहिए और कुछ बेहतर की ओर बढ़ना है तो इंतज़ार तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है ना। सब कुछ आसानी से थोड़ी ना मिलता है यहाँ पर। और चलिए कहते हैं ना कि जो भी इंतज़ार होता है ना, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो चलिए अभी के लिए खूबसूरत गानों का कारवां जो है यहाँ पर जारी है। देखते ही देखते सवेरे के 7:23 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। और ये जो अंदाज है इस गाने का, अंदाज फिल्म का, आप सभी के नाम हम करते हैं रफ़ी साहब, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में।

इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार।

यकीनन प्यार जहाँ होता है ना, वहाँ से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि आप मानते हैं जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता होती है, और प्यार ज़िंदगी के हर शय को बदल देता है। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हमारा काम हमें कभी बोझ नहीं लगता है, कभी भारी नहीं लगता है। अगर हम अपने किसी शौक़ से प्यार करते हैं तो वो शौक़ कब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, कब हमारे जीने का सहारा बन जाता है, कब हम उस शौक़ को, उस पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल देते हैं या उससे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कब हम अपनी ज़िम्मेदारियों से जब हम प्यार करते हैं तो ज़िम्मेदारियां कभी भारी नहीं लगती है। तो इसलिए ज़िंदगी के जिस भी पहलू से, ज़िंदगी के जिस भी पहलू से प्यार जुड़ जाता है ना, तो उसका रंग ही बदल जाता है। कभी इस सवेरे सवेरे उठना अपने आप में एक पॉजिटिव ख्याल जो है हमारे जीवन को जिस तरह से बदलता है, हर एक सोच में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी करुणा हो तो जीवन और भी खूबसूरत लगने लगता है। मानते हैं ना इस बात को? और चलिए सवेरे सवेरे इतने खूबसूरत गाने शुक्रिया गाने को पसंद करने के लिए। अजी थोड़ी ही देर में आपके डेडिकेशंस हम जोड़ेंगे, बहुत से लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बस जुड़े रहिए, साथ देते रहिए।

जी हाँ, सुहानी सी ये सुबह है और ये सुबह और भी सुहानी हो जाती है जब आप जुड़ते हैं और आपका साथ हमें मिलता है। तो चलिए, यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है यहाँ पर शिवरानी जी आपके नाम क्रोमबॉस से हमारा साथ दे रही है, कह रही है गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्हें हमारे प्रोग्रामों से जुड़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो शिवरानी जी, अगला तराना आपके नाम हम करेंगे। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही है बदलते मौसम के साथ सेहत जो है थोड़ी सी ख़राब है, तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल, बदलते मौसम का असर सभी की सेहत पर पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपना खास ध्यान रखें, गर्म कपड़े हमेशा पहने रहे, गर्म गर्म चीज़ों का सेवन करें और ये जो बदलते मौसम के साथ ये जो सर्दी ज़ुकाम है इससे बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ऐसा है ना कि सर्दी ज़ुकाम घर में किसी एक को होता है तो बाकी लोग भी इनसे जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगला गाना है आपके नाम शोभा जी, आपकी प्यारी बेटियों के लिए, श्रविना है, अनुषा है और आपके सभी दोस्तों के नाम। और चलिए यहाँ पर इस खूबसूरत मैसेज की ओर बढ़ते हैं। ऐसे आजकल हमारे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि क्या कहें। तो प्यारी सुबह में बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार भरे स्वागत के लिए माला जी। यकीनन हमारे नहीं, बिल्कुल आप लोग जब हमारे प्रोग्रामों से जुड़ते हैं तो चारों ओर मानो खुशियों की बहार आ जाती है। तो अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सुमारू परिवार के नाम। अगला तराना यहाँ पर ये जो अगला मैसेज है, हंसी जीवन की सबसे अच्छी दवा है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल, हम तो

ये मानते हैं कि मुस्कुराने से आधी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं, और मुस्कुराने से ऐसा होता है कि जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाले के चेहरे पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं ना, जो स्माइल है ना, इन्फेक्शियस होती है। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ये जो खूबसूरत सा मैसेज है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद अनीता जी, मौदालबिया से साथ दे रही है, करुणा है, अमृता है, विनीता है, सभी परिवार।

यहाँ पर एक खूबसूरत सा जो है गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, लेकिन ये मैसेज किसने भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। कभी कभार आप इतने खूबसूरत खूबसूरत मैसेज या फिर सवेरे सवेरे जो है इतने अच्छे अच्छे गुड मॉर्निंग की तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन अपना नाम ही लिखना भूल जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये मैसेज किसकी ओर से आया है। तो अगली बार जब भी मैसेज करें, आप मैसेज के साथ अपना नाम लिखना दे भूलिएगा मत। और चलिए, यहाँ पर गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाएंगे। एक दो और डेडिकेशंस हम यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर ये जो मैसेज है आया है, प्रणाम बहन, लिसनिंग टू योर शो, थैंक यू सो मच। ट्रियोले से सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला गाना सभी सजादा परिवार के नाम हम करते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण सी गोविंद जी वाकवा से हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को शुभ दिन कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, सभी सी गोविंद परिवारों को भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ इस नए दिन की। तो चलिए इस नए सफ़र पर साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं।

साथ यकीनन चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस सफर में। सुबह का नजराना का ये सफर है और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने से जो है इस सफर और भी खूबसूरत और हसीन हो जाता है। चलिए अभी के लिए इस डेडिकेशंस के सिलसिले को आगे ले जाते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? यह है अनीता जी, फ्लिक ऑफ लक्स हमारा साथ दे रही है, सभी को गुड मॉर्निंग कह रही है। और आपकी फ्रेंड कविता बीमा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो कविता बीमा जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं अनीता जी की ओर से और सभी बीमा परिवारों की ओर से। यहाँ पर गीता जी अपनी बहू जानिक को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही है। गीता जी और रोहित जी की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके बहू जानिक के नाम। साथ में आपके पति है विनय जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, बेस्ट विशेज आए हैं पूरे परिवार की ओर से। जानवी, रवि, राजीव, आदित्य, आरव, तनिष सभी परिवारों की ओर से ढेर सारा प्यार और बेस्ट विशेज आपके बर्थडे के मौके पर जानिक आपको। और यहाँ पर दामाद ऋषि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऋषि जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी सासू माँ अनीता की ओर से, आपकी पत्नी रूमा की ओर से, निया है, दारिश है, सभी ईतू परिवार और सभी दुलभ परिवारों की ओर से ढेर सारा प्यार आपके नाम। और जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

यकीनन चले, दुआ तो हम भी करते हैं कि आप जहाँ रहे बहुत अच्छे से रहे और हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और चलिए, यहाँ पर उषा जी हाईलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है बेब और मिला के नाम, सभी कुंज बिहारी परिवार और सभी मोहन सिंह परिवारों के नाम। यहाँ पर माला जरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद माला जी आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। गाना जाता है सभी जरी परिवारों के नाम जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। गुणगुप्त की सुनीता जी, ये अगला तराना आपके लिए भी हम करते हैं। और इसी के साथ जो है ये डेडिकेशंस का सिलसिला समाप्त तो होने को चला। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। यूं ही हमारा साथ देते रहिए और एक बार फिर से आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसी कामना हम करते हैं।

0: नमस्ते और सलाम फजर के 8 बजलबा। आवाजा समाचार सुना जा। हमने के गजियावा में पानी कमती बा काल आम होलबा। CWA के आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरेला, जबकि गलत बरिस के इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% रहलन। मोगवाकवा में हालत काफ़ी गंभीर बाते। ये सबसे बड़ा जलाशय में सिर्फ 45.8% पानी बा। हाई स्थिति के चलत कई कदम पर गौर करेला ताकि पानी के सप्लाई करल जाए सकेला। भारत के तरफ से मुरिस के हासिल 100 इलेक्ट्रिक बस में से 95 बस हमनी के सड़क पर कार्यरत बाते। देश भर में हाई बस 33 लाइनों पर सेवा देवे बाते। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद कहेला के कहलन के सार्वजनिक परिवहन में ई नवा बस के बदौलत एगो असल पैराडाइम शिफ्ट होलबा। ऊ बोलन के डीजल से चलने वाली बस के बरअक्स इलेक्ट्रिक बस खातिर एगो खास मूल ढांचा के ज़रूरत बाते, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसर इंतजाम अहम बाते। आज से पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के लेके नवा कानून नवा नियम लागू होलबा। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जिन जना फोन के इस्तेमाल करेला उ 5 से 10 पॉइंट गवालेला। अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहान में खेल मरीसिया के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गलबा। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद 12:45 से 2 बजे के बीच मुर्शस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES में जा सकेला। ये प्रक्रिया हुआ जाकर ही पूरा करे सकेला। रजिस्ट्रेशन फी खातिर 526 रुपये और पर्चे खातिर 3,499 रुपये लगेला। विदेश में इसराइल ने दक्षिणी लिबनान में कई जानलेवा हमला करेला, बावजूद कि ईरान ने हमला ना करे के चेतावनी देलन। लिबनानी स्वास्थ्य मंत्री बतैलन कि 8 जना के मौत होकर पाती। समाचार नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: चंद्र लेन लाहौजा में 4 नौ बरिस के 89वां श्री राम स्वामी यामाना रेडिया पादू। श्री राम स्वामी यामाना रेडिया पादू जो नारायण के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती। आज एक बजे इनकर बेटा दमा रेडिया पादू के घरे चंद्र लेन लाहौजा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मौदालबिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमा प्रोविडेंसिया नंबर 2 प्रोविडेंस कॉटी मिलिटिया में 2 करी 12 बरिस के 52वां श्री महेश्वर पत्तू। श्री महेश्वर पत्तू जन सतीश के नाम से जस्ती जान जात्रलन और CID मोका के पुलिस सर्जन रलन गुजर कल हवन इनकर माती। आज नौ बज के आधा इनकर पत्नी तिहा मीनाक्षी पत्तू के घरे मोसेलमा प्रोविडेंसिया 2 प्रोविडेंस कॉटी मिलिटिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौंडीमास के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। मुलजी लेन प्लान मानियों में 3 करी 18 बरिस के 67वीं श्री सुख जैन बिसुनी। श्री सुख जैन बिसुनी जंजीत के नाम से जस्ती जाना जात्रलन और जुन शुफिया टैक्सी रहलन गुजर कल हमन इंकर माती। आज 1 बजे। आज दोपहर बाद 1 बजे इंकर बेटा विशाल बिसुनी के घरे मुलजी लेन प्लान मानियों से उठा के अंतिम संस्कार खाते

प्लेन मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्वेमेशन टुडे एट 1 PM भोगन रोध रिबिया जुरों पर मे दू कोरी 16 बरिस के सेकंड सीजन श्री कृतानंद भोगन श्री कृतानंद भोगन जो जुके के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज एक बजे इनकर घरे भोगन रोध रिबिया जुरों पर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्वेमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 60 कैल्डन रोड ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 3:12 बरिस के स्वसंधुजों श्री राजेंद्र रुचाया जिन रोई के नाम से जस्ती जाना चाहत रलन और जिन टैगोर रोड फोंजुसाक के वासी रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज एक बज के आधा इनकर पत्नी सबिता रुचाया के घरे ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वहीं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रेमेशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड प्रोविडेंस कोची मिलिटिया में 3:14 बरिस के 64 के श्रीमती वाल्यमी पालियाची मुनियो पैराशी नाम सिनातोंबी जुन मानी के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर पोता मुदाली बेन पाजानी के घरे रॉयल रोड प्रोविडेंस कोची मिलिटिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रामचंद रोड रिपाई में 4:02 बरिस के 82 श्रीमती कुसमावती रमन जिन मावती के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज नौ बजे इनकर घरे रामचंद रोड रिपाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सियाकोस्तांस सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 9 AM बेअनिकाली नंबर 2 ग्लेनपॉक वाकवा में 3:04 बरिस के 64 श्रीमती सुमित्राबाई बाऊ पैदाइशी नाम लक्सीमो जनमानती के नाम से जस्ती जाना चात्रलन को जरगल हवन इनकर माते आज नौ बज के आधा इनकर घरे बेअनिकाली नंबर 2 ग्लेनपॉक वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तमामेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 9 AM लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट क्यूपी में 3:17 बलिस के 77 के श्री जय परगासुस राम सरन जिन जगदीश के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज दस बजे इनकर पत्नी शांतिबाई राम सरन के घरे लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट क्यूपी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा में 3:08 बरिस के 68 श्री धर्मरोध देवी जिन राजेश के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज दस बज के आधा इनकर बेटा कुशल देवी के घरे सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM डेबी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 3:06 बरिस के 86 श्री जैन मुचुराम जन जैन के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर भाई रॉय मुचुराम के घरे डेबी स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM कारो ओकुले में 2:40 के श्रीमती देवी गुचिया पैदाशी नाम संदियन जो देवी पात्रिसिया के नाम से जस्ती जाना जात्रोलन गुजर कल हवन इनकर माती आज तीन बजे इनकर रिश्तेदार पूनम पूरन के घरे कात्रकारो ओकुले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लाग्रिमा सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 3 PM मोंते एस कॉम्बेनोआ पिटी ट्रिविया में 4:06 बरिस के 86 श्रीमती विद्यावंती दिगम जन रमावती के नाम से जस्ती जाना चात्रलन गुजरगल हवन इनकर माती आज तीन बजे इनकर बेटा ललन रिडोई के घरे मोंते एस कॉम्बेनोआ पिटी ट्रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिशलियो पिटी ट्रिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 77 नंबर 77 इटियन पेलरो स्ट्रीट पोर्ट लुई में 4:01 बरिस के 81 जनाब स्वादिक भाई दौलत जिन भाई स्वादिक के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इंतकाल कर कल हवन जनाजा आज 12 बज के आधा इनकर घरे एच एन पेलरो

0: स्ट्रीट पोर्ट लुई से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर अलक्सा मस्जिद प्लेनवेट और दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रिस्तान ले जावल जाए। क्रिमेशन फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट नून। मौसमा मोरियाल कोरोमोडेल में चार कोरी चार बरिस के 84 श्रीमती सुबाउती स्यूडिन जन शांति के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर कल हवन इनकरमाती आज दो बजे इनकर पत्तो संध्या स्यूडिन के घरे मोरियाल कोरोमोडेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बाम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कौशौलू शुमे घोनी में दो कुरी 12 बरिस के 52 श्री हरीश चमन जनपुनन के नाम से जस्ती जाना जात्र ललन गुजर कल हवन इंकर माती आज दस बज के आधा इंकरमा शोभा चमन के घरे कौशौलू शुमे घोनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिव्या दिकाले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। मॉस्क्रो द्रिश्मो फ्लाक में चार कुरी 15 बरिस के 95 बीबी जैतून अली बोकस पैदाशी नाम मागन जिंदादी जैतून के नाम से जस्ती जाना जात्रलन इंतकाल कर कल हवन जनाजा आज दस बजे कर घरे मॉस्क्रो द्रिश्मो फ्लाक से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर मस्जिद करतबा रिश्मो और दफनाए खातिर रिश्मो के कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड बॉशेरी में चार कोरी चार बरिस के 84 श्री अनिरुद्ध गंगा जिन गंगा के नाम से जस्ती जाना चात्रा लन गुजरगल हवन इनकर माती आज दस बजे इनकर भांजा कृष्णराज राधा किशन के घरे रॉयल रोड बॉशेरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारीशानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। दुमी ग्रो लेन प्लान मान्यों में दुकोरी घर बरिस के 51 श्री राकेश मातों जिन पुपुन के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर घरे दुमी ग्रो लेन प्लान मान्यों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मान्यों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन फोंजूसाक में दुकोरी 13 बरिस के 53 श्री राजेश कुमार बिरियों जन जेरो मोंगल के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इनकर माती आज बारह बजे इनकर पत्नी प्रियादत बिरियों के घरे स्कूल लेन फोंजूसाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फोंजूसाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड थ्वा भ्रा पति राफ्रे में कोरी 3 बरिस के 23 श्री मिहिर श्याम जिन मिहिर के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे कर घरे रॉयल रोड थ्वा भ्रा पति राफ्रे से उठा कर अंतिम संस्कार खातिर दाऊची के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। फो बाक रोड फोंजूसाक में चार कोरी 2 बरिस के 82 श्रीमती पद्मावती रूपचंद जिन छोटकी चाची के नाम से जस्ती जाने जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे कर बेटा शैलेश मुरत के घरे फोबाक रोड फोंजूसाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फोंजूसाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 36 साबातुआ रोड रुशबुआ में दुकोरी 18 बरिस के 58 श्री केमराज चारितर जनजानों के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज दस बजे इंकर घरे आबातुआ रोड खुशबुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भोईले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गुजरन लेन मिडलैंड्स में 3 कोरी 14 बरिस के 64 श्री आत्मदेव दोमन जन रंदाबेल के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज ग्यारह बजे इंकर घरे गुजचरण ने मिडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट कर थी जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए अभी के लिए हम आ गए हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। यह है सुबह का नजराना का दूसरा घंटा और चलिए अब ये विज्ञप्ति सुन लीजिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सीबी कोरोमोंडल में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीबी कोरोमोंडल में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। कोरोमोंडल के खासकर इन इलाकों, इन गलियों में रहने वाले ग्राहक चैपमैन व्यू एवेन्यू सेरिसिया मौसल मामोथ्रियाल नंबर 1 नंबर 2 पुलिस क्वार्टर्स यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 10 जून को अभी सवेरे के 8:30 बजे से सुबह के 9:30 बजे के बीच, अभी सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 9:30 बजे के बीच और फिर दोपहर के 2:30

0: 3:30 के बीच, दोपहर के 2:30 से 3:30 के बीच इन जगहों पर आज जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: और चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। और सुबह का नजराना का दूसरा घंटा है और हर बुधवार को आपको तो पता ही है कि एक छोटा सा क्विज़ होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, कभी कोई पहेली होती है। तो आज हम अपने प्रश्न के साथ बिल्कुल तैयार है। क्या आप तैयार है जवाब देने के लिए? तो चलिए यहाँ पर हमारे इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और जवाब हम तक पहुँचाए 4028085 पर, या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700005 पर। तो चलिए यहाँ पर आज 10 जून है और आज एक बहुत ही खास दिन मनाया जा रहा है। आज 10 जून है और आज एक बहुत ही खास दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच समझता हो, आपसी समझ हो, सही सुनता हो और शांति को बढ़ावा देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 जून 2024 को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और हर वर्ष 2024 से 10 जून को इस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में। आज एक ऐसा दिन मनाया जा रहा है जो विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ का कार्य करता है। एक ऐसा दिन जो आपसी बातचीत को बढ़ावा देता है, आपसी समझौता को बढ़ावा देता है और आपस में शांति को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो आप बताएं कि आज कौन सा ऐसा दिन मनाया जा रहा है। ये जो दिन है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने के लिए भी इस दिन का एक बहुत ही अहम जो है उद्देश्य है। यह दिन मानता है कि सभी सभ्यताओं की उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है। तो चलिए यहाँ पर फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। लग रहा है कि हमारा जो सवाल है थोड़ा सा कठिन था क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा देर से आया। आमतौर पर हमारे सवाल पूछते पूछते ही जो है आपके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका स्वागत है। कौन बोल रही है?
1: मैं हूँ अमृता।
0: अमृता जी कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक है जी। और क्या है जवाब आपके पास?
1: पता नहीं ठीक होगा या नहीं,
0: कोशिश कीजिए।
1: कल विश्व कल्याण दिवस।
0: विश्व कल्याण दिवस, चलिए आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा।
1: ओके धन्यवाद, आपको भी शुभ
0: धन्यवाद, शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते, मैं इंदिरा।
0: इंदिरा जी कहाँ से बोल रही है?
2: मेबेक से।
0: बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। अगली बार जब आप कॉल करें अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को प्लीज़ कम रखें क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी आवाज़ आपकी ओर से भी सुनाई दे रही है। जितने भी श्रोता है जब भी आप फ़ोन करते हैं तो कृपया करके अपने रेडियो सेट से दूर रहे, रेडियो सेट के वॉल्यूम को कम रखें और हमारी आवाज़ को फ़ोन पर सुने, रेडियो पर मत सुने, तब ऐसे आप जो है जवाब दे पाएंगे। हेलो इंदिरा जी बताइए कहाँ से बोल रही है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है ना?
2: अच्छा आप ठीक हैं। मैं आपको, आप ही हैं वो बहना ना जो क्यूज कंपटीशन करती हैं?
0: जी जी।
2: बहुत ही सुंदर लगती हैं।
0: बहुत धन्यवाद जी,
2: आपकी कॉस्ट्यूम बहुत ही
0: धन्यवाद। ये हमारी पूरी टीम का काम है, सब एक साथ मिलकर।
2: ये बहुत अच्छा है जनरल नॉलेज को, कभी कभी मैं भी जानती हूँ क्वेश्चन, कभी कभी नहीं जानती।
0: चलिए कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। और बताइए जवाब क्या है आज के सवाल का?
2: आज का जवाब है ये पोर्चुगल देश।
0: पोर्चुगल देश, चलिए आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत

0: धन्यवाद
1: संस्कृति दिवस।
0: चलिए इस जवाब को भी हम नोट कर लेते हैं, आपने भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, शुभ दिन कहेंगे आपको। यहाँ पर एक और जवाब आया है इंदिरा लौटन की ओर से, विश्व का संसार दिवस। ऑल राइट, चलिए आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसा वाकई में हमें लग रहा है कि आज का जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जितने भी फ़ोन कॉल्स आए सभी सही जवाब नहीं दे पाए हैं और उतने फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आम तौर पर ऐसा होता है कि 8-10 फ़ोन जो है लगातार बैक टू बैक आते रहते हैं। तो ऐसा करते हैं आपकी जो है थोड़ा सा आसान कर देते हैं, जवाब हम ही दे देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता संवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन हर साल 10 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ और शांति को बढ़ावा देना है। 2024 से इस दिन को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। ये जो है सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने का काम करता है। उनके बीच जो भी मतभेद होते हैं, जो भी विचारों के मतभेद होते हैं, उन्हें भी दूर करने का प्रयास करता है। और ऐसे सारे आयोजन से क्या होता है कि आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी संवाद बढ़ता है, जो है एक दूसरे के संस्कृति के प्रति, जो हमारी सभ्यताओं के प्रति जो हमारा सम्मान है वो बढ़ता है। तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश तो की और ये अगला तराना आप सबकी कोशिश के लिए है।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, अपने तो अपने होते हैं, और चलिए यहाँ पर अपनों का साथ हमें मिल रहा है, अपनों का प्यार हमें मिल रहा है। आपकी इस प्यार भरी साथ के लिए, आपकी इस प्यार भरी दोस्ती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अगर अच्छे अच्छे गाने को सुनकर हो तो दिन अपने आप में खुशनुमा हो ही जाता है, और सवेरे सवेरे जब अपनों से मुलाकात होती है तो दिन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर सवेरे सवेरे हम जिसके साथ भी काम करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, आपसे मिलते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, तो मानो हमारे भी दिन में वो खूबसूरती जुड़ जाती है। और प्यार तो देने का नाम है ना, बदले में जो मिलेगा मिलेगा, वो बात की बात है। अभी के लिए चले, बेशुमार प्यार यहाँ पर आप लोगों का बरस रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए अब बारी है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम की, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज चर्चा करब जा अल्जीरिया, मोरिटानिया, मोरक्को और टूनिशिया के एगो अमूर्त विरासत के, जोन यूनेस्को लिस्ट में शामिल बा और जोन आपके रसोई में ज़रूर होई। बात करब जा कुसकुस के। कुसकुस के पैदावार और खान पान से जुड़ल ज्ञान, जानकारी, तौर तरीका और प्रथा के कितने आयाम बा। एकर तैयारी और पैदावार एक तरफ और एके तैयार करे होला औजार और स्थिति एक तरफ। एकर से जुड़ल वस्तु भी धरोहर में गिनल जाला। कुसकुस के तैयारी एगो उत्सव जैसन है, जोन अनेक चरण और अनेक प्रकार से होवेला। शुरुआत त होवेला ई सेरियल के उगैला से। एगो जोन खेती है एकर होवेला और ओकर फसल से। फिर एकर बिया के पीस के एकर साबुदाना निकालल जाला। हाथ से तैयार करके एके भाप में पकावल जाला और फिर व्यंजन बनावल जाला। एकर तैयारी खातिर खास औजार और बर्तन चाहेना। और कुसकुस कितने सब्जी या फिर गोश्त मच्छी संगे खाल जाला, बेशक मौसम और मौका के अनुसार। आज भी कुसकुस के पैदावार के पीछे कितने परंपरागत जानकारी चाहेला और ई ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आवता। नवा पीढ़ी बड़ा आदमी लोग के देख देख के सीखेलन सा। एकर पैदावार में माटी के बर्तन जोन कुम्हार बनावेला इस्तेमाल करल जाला और लकड़ी के भी बर्तन। ई सब बर्तन जस्ती खानदानी रहेला जोन एगो पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक चले आवता। फिर भी हालिया दशक में जस्ती औपचारिक ट्रांसमिशन पर जोर देवल जाता, जोन घर और परिवार के दायरा से बाहर बाटे। आगे के समय में घर में ही बड़ा लोग से छोटा लोग सीख सीख के एके आगे बढ़ावत रहलन सा। लेकिन अब देखत है जा कि सब कोई अपन जोन परंपरागत क्राफ्टमैनशिप बा या फिर बिजनेस बोल बा ओके छोड़ के अलग अलग नौकरी के पीछे भागे रहन जा। कुसकुस एगो प्रतीकात्मक व्यंजन है जेकर कितने मतलब बा और कितने सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी बा। ई भाईचारा, एकता, खुशी, स्नेह और बांट के खाए के प्रतीक है। अनेक मौका पर ई खाल जाला, जैसे पारिवारिक मिलाप, जन्म रही, शादी रही, मृत्यु या कोनो भी रिवाज के बखत। कुसकुस के बनावे के एगो लंबा प्रथा है। कुसकुस जब बन जाला त एक महीनों तक सकबर रखे। अलग अलग देश में अलग अलग तरीका से और अलग अलग तड़का के साथ ई व्यंजन खाल जाला। अब कुसकुस खैबा त ध्यान करिया कि ई यूनेस्को के ICH लिस्ट के एगो धरोहर के गिनती में आवेला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद आपके दिलचस्पी खातिर। काल फिर मिलब जा। नमस्ते।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: तो चलिए किरण जानकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी जानकारियाँ वो हमें देती है इसके लिए बहुत बहुत आभार उनका। और बढ़ते हैं हम इस भोजपुरी गीत की ओर, और जिसके साथ हमारा आज का जो सुबह का नजराना कार्यक्रम है वो समाप्त होने को चला। जाते जाते आपको यही कहेंगे कि आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत अच्छे से आप समय अपना व्यतीत करें। और आपको बता दें 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर और साथ ही इसे आप देख पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो अभी के लिए बस इतना ही। सवेरे से अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारा साथ दिया, धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है सुमेरा। नमस्ते सुमेरा।
1: नमस्कार आदाब। हमारे जलाशयों में जल स्तर में लगातार गिरावट से अधिकारियों का फिक्र और बढ़ रहा है। कलामहुवी CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। मोहवाकुआ में हालत काफ़ी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनज़र कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए बोहोल्स, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क़याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू के मुताबिक अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, मुख्तलिफ साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से मुर्शस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की ज़रूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट्स और दूसरे इंतजाम बहुत ही अहम है। इस संदर्भ में लातू के निक में नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं और कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहां एक दौरा भी किया। आपको ये भी बताते चलें कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स लगते थे। बुजुर्ग और बेवा महिलाओं को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी के संदर्भ में नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच अभी तक जारी है। पिछले 4 जून को हेमराज मनोहर और 5 जून को रमेश हेमराज की गिरफ्तारी के बाद FCC ने फेसबुक पर कल एक पोस्ट में सूचित किया कि 12 शक्की शिकार लोगों की सुनवाइयां हो चुकी हैं और फिलहाल करीब 40 लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है। फिर भी FCC मांग करता है कि जिस किसी के पास इस मामले में मालूमात है वो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को इतला कर सकता है। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अब नए होर्मुज पर एक नए अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। कल से अमेरिकी ताकतों ने हमले शुरू किए हैं और उधर इसराइल ने जनूबी लेबनान में कई जानलेवा हमले किए, बावजूद ये कि ईरान ने हमला ना करने की चेतावनी पहले से दी थी। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। As a DJ. Namaskar aur aadab.
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर आज के इस कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बुधवार का दिन है, 10 जून आज की तारीख, और अभी से लेकर बिल्कुल एक घंटे का ये सफ़र जहां पर हम अपनी सेहत को लेकर बात करते हैं। और जैसे कि हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था, 14 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। इसी के उपलक्ष्य में एक और बार आज के इस कार्यक्रम को हम आधारित रखेंगे, पर आज हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर श्रीमती जानकी सुनू। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी।
1: नमस्ते रत्ना जी, और सभी जो हमारे सुनने वालों को भी मेरा नमस्ते
0: जी। आज के इस कार्यक्रम को हम एक बार फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पर आधारित रखने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम में हम जरूर जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, इसका उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, जैसा कि नाम बताता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये दिन जो है, जो हमारे जो ब्लड डोनर्स या रक्तदाता जो हैं उनको समर्पित है। और ये क्यों उनको समर्पित है? क्योंकि आप देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य जो हमारा सिस्टम है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे मरीजों के इलाज में और मरीजों को ठीक रखने में। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये ब्लड तो किसी को देना होता है, और वो देता कौन है? जो हमारे ब्लड डोनर्स होते हैं। तो ब्लड डोनर्स देखिए, अपना स्वयं अपनी इच्छा से अपना ब्लड डोनेट करके कितनी सारी जानें बचाते हैं। और वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो बहुत सारी जो है जिंदगियां इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बचती हैं। और ये सिर्फ मुमकिन है क्योंकि हमारे जो कुछ जो ब्लड डोनर्स हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपना खून दे

0: करते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उनको कोई ये नहीं कहता कि अगर आप एक ब्लड डोनर हैं तो कल किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने खून दिया, लेकिन आपके खून से कई जिंदगियां बचती हैं। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में ये फैसला लिया कि एक तो कि ये जो हमारे वर्ल्ड जो ब्लड डोनर्स हैं उनको रिकग्नाइज करना कि उनके जो ये कंट्रीब्यूशन है कितना महत्वपूर्ण है और इसे कितनी जानें बचती हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उनको एक तरह की एक श्रद्धांजलि और उनका एक रिकग्निशन जो देने के लिए
1: एक ट्रिब्यूट के तौर पर
0: ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2004 से मनाया जाता है। दूसरी इसकी ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है
1: जी?
0: तो अगर हम ब्लड डोनेशन की और ब्लड ट्रांसफ्यूशन की हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी हुई कि जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन सेफ बना वो था ABO, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी डिस्कवरी। और उनकी डिस्कवरी करी थी एक हमारे बहुत जो है बड़े जो साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं कार्ल लाइनस्टाइनर, जिनका नाम था
1: जी।
0: तो उन्होंने इस इन ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी करी थी और 14 जून को उनकी जन्मतिथि होती है। तो ये भी एक दूसरा ध्येय था कि 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाएंगे दो उद्देश्यों से। एक तो उनको ट्रिब्यूट देना जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी कि जिसकी वजह से आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना सेफ है, और दूसरा जो हमारे रक्तदाता हैं, ब्लड डोनर्स हैं, उनको ये ट्रिब्यूट देना कि उनकी वजह से कितनी जिंदगियां हर रोज़,
1: मतलब एक रिसर्च के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जिसके कारण बहुत सेफ तरीके से आज ब्लड डोनेशन किया जाता है। तो मैं डॉक्टर जी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे शरीर में अगर खून की कमी होने लगे, मान लीजिए अगर एनीमिया हो गया है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण से अगर खून की कमी होने लगे तो इसके कारण किस प्रकार की दिक्कतें, किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं?
0: देखिए हमारे शरीर में खून जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक ये भी एक टिश्यू की तरह हम लेते हैं, ब्लड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खून में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो जो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उस इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स मेनली जो होते हैं जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या ग्लोबल गूस, वाइट ब्लड सेल्स ग्लोबल ब्लॉन्ज जिसे कहते हैं, और प्लेटलेट्स प्लैकेट जिसे कहते हैं। तो ये इस प्लाज्मा में मिले होते हैं, और हर तत्व का, हर एलिमेंट जो है, हर सेल का अपना अपना एक रोल होता है शरीर में। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर टिश्यू में पहुंचाए
1: जी।
0: तो ये रेड ब्लड सेल्स का मेन जो काम होता है वो शरीर में ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाना। अब मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन शरीर पे नहीं पहुंचता है तो इसकी वजह से सारे सिस्टम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ये ग्लोबल रूज या रेड ब्लड सेल्स का काम है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में हमेशा, मैं कहती हूँ, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी तरह हैं। वो हमारे शरीर को हर बाहर के आक्रमण से, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो उससे बचाते हैं। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स आपको जो है जब कभी भी चोट लगती है तो जब खून बहता है तो उस खून बहने के उसको रोकते हैं।
1: अच्छा।
0: ये प्लेटलेट्स का काम होता है। उसके अलावा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी बहुत सारे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, खासकर जो कोएगुलेशन फैक्टर्स, वो भी जो है ब्लीडिंग को कम करने में सहायता करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके शरीर में खून की कमी हो, मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स की कमी हो, तो आदमी को किसी को भी एनीमिया होता है, और एनीमिया के सिम्टम्स वही, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम हो जाती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत, कमज़ोरी और इस तरह के कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स की कमी है
1: जी,
0: तो प्लेटलेट्स की कमी तो उसमें जो है आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसे आपकी छोटी छोटी वेसल्स में से, नाक में से, या आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में से, मतलब खून की मात्रा वो ज़्यादा बहेगी। और इसी तरह से जो वाइट ब्लड सेल्स की कमी अगर होती है तो बार बार आपको, आप प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस। तो जिन लोगों में वाइट सेल्स की कमी होती है, मान लीजिए एक बीमारी है HIV, HIV क्या करता है, वो लिम्फोसाइट्स, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको
1: पूरी तरह से कम
0: कर देता है। तो वो जो है आपका शरीर जो है एक तरह से बहुत वल्नरेबल हो जाता है हर तरह के इन्फेक्शन के लिए। तो जो खून जो है उसके बहुत सारे जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ये हमारे शरीर को हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा खून ठीक मात्रा में रहे और

0: ठीक तरह का रहे।
1: बिल्कुल सही। और डॉक्टर जी, कौन सी बीमारियों में या शारीरिक समस्याओं में हमें खून की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में हमें ज़्यादा?
0: जैसे मैंने बताया खून के जो क्या फंक्शंस हैं, तो मान लीजिए खून की कमी, मान लीजिए किसी को एनीमिया हो गया, एनीमिया सब लोग समझते हैं और सुनते हैं रोज के उसको एनीमिया हो गया है, तो एनीमिया में क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी खून में हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है आपको एनीमिया होता है। तो एनीमिया अगर किसी को हो तो हो सकता है उसको खून देने की ज़रूरत पड़े। इसी तरह से आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उसको प्लेटलेट्स खून से जो है, जो जो हम प्लेटलेट सेपरेट करते हैं, वो देने की ज़रूरत पड़ती है
1: जी।
0: इसी तरह से कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि हमको प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि हमको खून देने की ज़रूरत पड़ती है, एनीमिया सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आप ब्लीड कर रहे हैं, कोई भी अगर आपको आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप
1: खून लॉस
0: कर रहे हैं, ब्लड लॉस हो जाए, तो उसमें खून की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई सर्जरी कर रहे हैं जिसमें कि ब्लड लॉस की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कैंसर के मरीज जब वो जो है अपना इलाज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं आपके जो बोन मैरो, क्योंकि सारा खून जो है वो खून के जो सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, तो ये कैंसर की दवाइयाँ आपके बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं
1: जी।
0: तो उसमें भी जो है जब कोई मरीज़ अपना कैंसर का इलाज कर रहा होता है तो उसको हमें ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है उन्हें, जिसमें कि उनको रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये सब देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि आपका शरीर ठीक से खून नहीं बना रहा है, जो इनहेरिटेड जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या जिसको हम कहते हैं कि कई बीमारियां जो होती हैं एप्लास्टिक एनीमिया है, जैसे जिसमें कि आपका बोन मैरो फंक्शन करना बंद कर देता है, तो उसमें भी जो है मरीजों को ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बहुत सारे सिचुएशंस में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है।
1: और मैम, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस दरमियान कोई दिक्कत होती है? मतलब मान लीजिए जब एक शरीर में से दूसरे शरीर में या पाइंट के द्वारा ही अगर खून चढ़ाया जाता है, तो क्या उनको कोई भी ऐसी दिक्कत या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है?
0: देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मैं हमने अभी अभी बताया कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सेफ हो गया
1: जी।
0: अब ये क्यों ज़रूरी, क्यों सेफ हुआ? क्योंकि हमारे शरीर में चार तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ओके। और जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये ज़रूरी है कि ये ब्लड ग्रुप की कॉम्पैटिबिलिटी रहे डोनर और जो मरीज है उसके बीच। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है
1: जी,
0: तो मैं ब्लड या तो ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप ओ ले सकती हूँ
1: जी।
0: अगर मुझ में ब्लड ग्रुप बी अगर डाल दिया तो ये बहुत सीवियर रिएक्शन देगा
1: अच्छा
0: शरीर में, तो इससे ये कॉम्पैटिबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ जो है, जो जब हम लोग कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद ब्लड में बहुत सारे परीक्षण होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि खून के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन एक मरीज़ को जाए। कई इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक ब्लड डोनर हूँ और मेरे खून में HIV का वायरस है या हेपेटाइटिस का वायरस है
1: जी,
0: और जब मैंने ये ब्लड डोनेट किया तो ये मेरे खून के द्वारा मरीज में जा सकता है, तो इसलिए हम कई सारे परीक्षण करते हैं कि इनको डिटेक्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो। तो ये तो एक तरह की जो जो जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के होते हैं। उसके अलावा जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इन सबके अलावा और कई छोटे मोटे जो है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे जो हमने प्रोटीन दिया तो किसी को हो सकता है वो प्रोटीन से एलर्जी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में, तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। जब जो खून में जो वाइट ब्लड सेल्स जब हम उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कई लोगों में जो है रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि उनको बुखार और कंपकपी और ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो कई सारे ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, कि जो हमें जो है खून देने से पहले हम कई ऐसे स्टेप्स या ऐसे
1: टेस्ट करते हैं,
0: टेस्ट करते हैं अच्छा। और ऐसे आप जो प्रिकॉशंस लेते हैं कि मरीज में जो ये खून जा रहा है उसमें कोई ऐसे इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो।
1: तो मैम, ये जो टेस्ट किए जाते हैं, मान लीजिए एक इंसान ने अपना खून दे दिया, सारे वो अपने जैसे जो कहते हैं ना कि जितने भी क्वेरीज होती है वो सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद जब उनका खून निकाला जाता है, तो ये जब टेस्ट करने

0: के लिए लेबोरेटरी जाता है तो कितना समय लगता है इस टेस्ट को कंप्लीट होने में?
1: देखिए, इस टेस्ट को जैसे किसी ने आज खून दिया तो कम से कम 24 आवर्स वो टेस्ट को करने में, क्योंकि आज अगर खून दिया तो जहाँ भी वो लोग, हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं वहाँ से ये ब्लड जो है हम लोगों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में आता है
0: जी।
1: तो जब वहाँ पर आता है, जो उस समय हम ब्लड डोनर से जो सैंपल लेते हैं, तो उन सैंपल्स में दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो उनका ब्लड ग्रुप हम टेस्ट करते हैं
0: जी,
1: क्या ब्लड ग्रुप है, और दूसरा हम उन चीज़ों के लिए टेस्ट करते हैं जैसे ऐसे इन्फेक्शंस की जो ब्लड के द्वारा जो है मरीज में जा सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, ये सारे टेस्ट सिस्टमेटिकली हम उसमें करते हैं
0: जी।
1: तो इन सबको करने में कम से कम जो है 24 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि जब तक ब्लड जो है साइट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में आता है, फिर उसके बाद जो उनका परीक्षण करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं तो वो 24 आवर्स लगते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: तो इसीलिए हम हमेशा लोगों से कहते हैं, देखिए कई बार जब हम लोगों से कहते हैं कि आप ब्लड दें, तो कहते नहीं, जब किसी को ज़रूरत होगी तो तब हम देंगे, लेकिन किसको किस समय ज़रूरत पड़ सकती है ये कहना मुश्किल है। किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और उसको अभी इसी समय तुरंत,
0: मतलब फिर वो टेस्ट करना, ये मतलब
1: फिर वो टेस्ट करना, तो अगर आप ब्लड देने के, एक एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप ब्लड देने के लिए आएँ तो उसमें क्या होता है कि वो टेस्ट करने में ही 24 आवर्स लग जाते हैं, तो उसमें
0: थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है उसका।
1: तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा आइए, रेगुलरली ब्लड दीजिए, क्योंकि ब्लड बैंक का मतलब है कि हमारे पास एक स्टॉक हो खून का हमेशा, जो कि टेस्टेड हो, सेफ हो, जो जब कभी भी किसी को भी अगर खून की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत उसको दे सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसीलिए हम हमेशा, देखिए मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में मैंने 20 साल तक काम किया, मैं उसकी हेड थी
0: जी।
1: तो हम हमेशा सब लोगों से यही अपील करते थे कि आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि जब कोई किसी का एक्सीडेंट हो या जब किसी को ज़रूरत हो तो तब आप आकर के खून दें। अगर आप हर कोई रेगुलरली खून देता है तो कभी भी किसी को भी किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुरंत ये खून उसको दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसे मतलब एक तरह से आप इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है मॉरिशस में, हर अंतराल पर देखा गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन के कैंपेन्स किए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, जहां पर लोगों से मांग की जाती है कि वे आगे आएं और इस नोबल कार्य में अपना सहयोग दें। डॉक्टर जी, मैं यहां पर जरूर पूछना चाहूंगी कि टेस्ट के दौरान, जैसे अभी मान लीजिए किसी ने ब्लड डोनेट किया, वो नहीं जानता है कि उसके खून में क्या तो कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर उसके खून में कोई समस्या दिखाई देती है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन दिखाई देता है, तो जिसने वो ब्लड डोनेट किया है क्या उनको इन्फॉर्म किया जाता है?
1: जी हाँ, ये सिस्टमैटिकली, अगर मान लीजिए किसी के किन्ने ब्लड डोनेट किया और उनके ब्लड टेस्ट के दौरान हमने देखा कि उनमें किसी भी तरह की जो है इन्फेक्शन है, तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, हम उनको बकायदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस वहाँ पे बुलाते हैं
0: जी,
1: उनकी काउंसलिंग होती है और उनको रेफरल देते हैं ताकि वो अपना इलाज कर सकें। तो हम उनको रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट जो उनके डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में हैं उनको, ताकि वो अपना इलाज कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: तो हर कोई जो है डोनर, अगर उनके ब्लड में हमें कुछ दिखा तो ये हमारी एक तरह से जिम्मेदारी भी होती है कि उनको
0: सही गाइडेंस करें,
1: उनको काउंसिल करके उनको रेफर करें।
0: बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो खून डोनेट करने में केवल दूसरों का फ़ायदा नहीं पर खुद का भी फ़ायदा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो आपके शरीर में फैल रही है और आप नहीं जानते इसके बारे में, तो जब आप खून डोनेट करते हैं तो इस टेस्ट के दौरान जब भी कभी कुछ ऐसा सामने आता है तो बेशक आपके लिए भी एक तरह का जैसे प्रिकॉशन तैयारी आप बता सकते हैं और आप आगे कोई बीमारी का सामना ना करें इसके लिए बिल्कुल आपको डॉक्टर्स की ओर से आपको पूरी सहूलियत मिलती है और वे गाइड करते हैं आपको कहाँ जाना है, किस तरह की आपकी ट्रीटमेंट को अगर आपको कंटिन्यू करना है। डॉक्टर जी, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे HIV जैसी कोई समस्या, HIV हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में खून देने से क्या किसी और मरीज को ये प्रॉब्लम हो सकती है?
1: जी हाँ, अगर किसी ने खून दिया अपना और उनको HIV है
0: जी,
1: और मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमने उसको टेस्ट किया और वो मिस हो गया हमसे किसी भी वजह से, कई कारणों से
0: जी,
1: तो ये डेफिनेटली अगर हम मरीज को ये खून देंगे तो उसमें ये बीमारी ज़रूर फैलेगी। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ब्लड सेफ्टी एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है
0: जी,
1: और ये ब्लड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस और

0: उसकी टेस्टिंग या मंत्रालय उनकी उनकी जिम्मेदारी है। ये जो है जो रक्तदाता हैं ब्लड डोनर उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब हम ब्लड सेफ्टी की बात करते हैं
1: जी।
0: किस तरह से उनकी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए हमेशा जब हम ब्लड सेफ्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक चेन है जिसको वेन टू वेन मतलब डोनर के खून से मरीज
1: के वेन तक जाना है,
0: वेन तक जाना है इसको
1: जी।
0: तो उसमें कई सारी जो है ऐसे स्टेप्स होती हैं जहाँ की हमको ये इंश्योर करना होता है कि ये ब्लड सेफ है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम डोनर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस आपने देखा होगा जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो एक क्वेश्चनेयर उनको देते हैं
1: सही,
0: जिसमें हम बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि हम ये स्क्रीन करें कि ये डोनर सेफ है कि नहीं ब्लड डोनेट करने के लिए। मान लीजिए एक सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं आपने कभी टैटू किया है, तो जब कोई बोलता है कि हमने टैटू किया तो हम पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको टैटू करे हुए, तो वो कहते हैं अगर अभी 2-3 दिन पहले किया है तो हम उस डोनर को उस समय नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हो सक हमें नहीं पता है कि उनने कहाँ जाकर के टैटू किया है, किस कंडीशन में किया, किस हालात में किया है, और वहाँ पे मतलब किस तरह के सेफ्टी और यू नो
1: प्रिकॉशंस लिए गए या नहीं
0: कंडीशन से।
1: हाँ,
0: तो अगर मान लिया आपने टैटू किया और आपको उस टैटू की वजह से कोई इन्फेक्शन है, तो अगर आपने आज या कल में ये टैटू किया तो आप अगर खून देंगे तो हम उसका परीक्षण करेंगे, हो सकता है कि अगर कोई इन्फेक्शन उस समय आपको हुआ है, मान लीजिए हेपेटाइटिस हो गया किसी को, तो वो हो सकता है कि तुरंत वो मिस हो सकता है,
1: खून में डिटेक्ट ना हो।
0: तो इसलिए हम ये सारे जो क्वेश्चंस पूछते हैं इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हम हर डोनर से ये अपील करते हैं कि जब आप ब्लड देते हैं तो ये जो क्वेश्चंस को आप पढ़ें, उनको समझें और जो है एक ऑनेस्ट जवाब दें। तो ये सबसे पहले ये प्रिकॉशन लेते हैं। उसके बाद जब किसी डोनर ने बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ये जो इन्फेक्शंस होते हैं तो कुछ लोगों में ज़्यादा इनकी वो जो है पॉसिबिलिटी होती होने की, जैसे जो इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स हैं, अगर आप इंट्रावीनस ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चांसेस हैं कि आप एक्सपोज हुए हों किसी तरह के इन्फेक्शन में, तो इसलिए हम उनसे कहते हैं कि आप ब्लड ना दें। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अस्पताल जा सकते हैं, किसी भी डिस्पेंसरी में कहीं भी आप जाकर के अपना टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट करने के लिए कि मुझे HIV है कि नहीं आप ब्लड दें, ये हम जो है उसको हम बोलते हैं कि ये प्रिकॉशन ले। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका बिहेवियर इस तरह का रहा है कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है तो आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। तो ये जो है ये पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन जो है लेबोरेटरी में, तो हर बार जो भी डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसका परीक्षण होता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं कि आपने आज किया, हमने बोला ओ रत्ना जी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है,
1: हाँ,
0: तो अब नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं है उनको उनका टेस्ट करने की। तो हर बार उनका टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग होती है, और जो ये HIV और हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस सी, ये मेन है इनके लिए हर बार टेस्ट होगा
1: जी।
0: एक बार जब टेस्ट हो गया तो बाकी और जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं कि जो ब्लड यूनिट होती है उसको ठीक से लेबल करना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उसका क्या ब्लड ग्रुप है, तो वो तो इस तरह के, और उसको किस टेम्परेचर में और किस तरह से हम उसको स्टोर करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ब्लड सेफ्टी के लिए। फिर फाइनली एक ब्लड सेफ्टी का बहुत बड़ा पहलू है कि जो डॉक्टर्स हमारे प्रेस्क्राइब करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि वो इसका सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल से मेरा मतलब है, कई बार मरीजों को मान लीजिए किसी को एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है, आपको क्रॉनिक एनीमिया है, लेकिन ठीक है आप जो है अपना काम कर पा रहे हैं, सिर्फ वो लेबोरेटरी में उसकी वैल्यू 9 है, और तो उसमें जो है क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी है, ये हमको पूछना चाहिए, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन वैल्यू को 9 से 10 या 11 ले जाने के लिए हम एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम देखें कि उसको एनीमिया क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जो एनीमिया होते हैं वो आयरन डिफिशियंसी या किसी इस तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होते हैं
1: जी।
0: तो ये जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं ये उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को किस तरह से यूज़ करें। हर मरीज को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है, कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका इलाज होता है
1: जी।
0: मान लीजिए किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसका इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, उसका इलाज जो है आयरन है, कि आप जो है अपने मरीज को आयरन प्रेस्क्राइब करें, मल्टीपल विटामिन।

0: इज देयर और उनको काउंसिल करें न्यूट्रिशन और इस कि वो उसका इलाज है, उसका इलाज जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से इस खून का इस्तेमाल करते हैं। तो तभी जब हमने कहा कि वेन टू वेन, तो डोनर से लेकर के मरीज तक आते आते जो है इस खून जो जो है बहुत सारे जो है स्टेप्स होते हैं ब्लड सेफ्टी के लिए, और हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। डोनर की जिम्मेदारी बनती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ट्रीटिंग डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है।
1: यानी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ये श्योर होना चाहिए कि वो जो खून पहुंच रहा है वो बहुत सुरक्षित तरीके से,
0: और खासकर जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो वही हम डॉक्टर से कहते हैं कि आप पूछिए अपने आप से कि इससे क्या फ़ायदा होगा मेरे मरीज को। अगर फ़ायदा है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आप ज़रूर ब्लड दें। अगर फ़ायदा आप सोचते हैं कि इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर किसी को, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सेफ
1: पॉसिबल है। और जैसे आपने बताया, ये तो चलिए बड़ी बड़ी बीमारी की बात हमने की, HIV हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ, जैसे पिछले सप्ताह भी हमने ये पूछा था डॉक्टर, लेकिन हम मेडिकल एस्पेक्ट भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर कोई डायबिटिक है, किसी को हाइपरटेंशन जैसी समस्या है, कोई लिवर फैटी लिवर का समस्या से जूझ रहा है, ऐसे लोग जब खून देते हैं डोनेट करते हैं तो क्या ये सेफ होता है? और अगले मरीज को जब ये डोनेट किया जाता है तो क्या उनमें से ये कोई समस्या उनको ट्रांसमिट नहीं होगी?
0: देखिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और तरह की लीवर की बीमारी और दिल की बीमारी, और किसी को अगर ऐसा है तो उनका खून मरीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा। मरीज के लिए सेफ है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है खून से ट्रांसमिट नहीं होती है, हाइपरटेंशन आपका खून से ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन हम ये सब सवाल मरीज डोनर से फिर भी पूछते हैं, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए ठीक है, ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। एक कि जब डोनर जो है ब्लड दे रहा है तो उसमें उसको किसी तरह की समस्या ना आए, और दूसरा जिस मरीज को ये खून जा रहा है तो उसको किसी तरह की समस्या ना हो।
1: बिल्कुल।
0: तो डोनर के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इसीलिए हम पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन तो नहीं ले रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन है, आप कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं,
1: उनको कोई कमजोरी ना आ जाए,
0: उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के मरीज खून दे सकते हैं अगर उनका डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है, और इस खून से मरीज में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं
1: ट्रांसमिट नहीं होती। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर, और इसी पर आधारित मेडिकल एस्पेक्ट पर आज हम बात कर रहे हैं। जैसे पिछले सप्ताह भी हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर बात की थी, काफ़ी चर्चाएं हुई थी, पर आज हम देख रहे हैं उसका मेडिकल पहलू, और ये भी जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में आज की चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर जिसका सीधा प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी इसे आप फॉलो कर पा रहे हैं। आपको याद दिला दें, इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है, टेक्निक पर हमारे साथ है कादिया, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और प्रोड्यूसर श्याम लीला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जानकी सुनू हमारे साथ हैं और आज हम कई सारी ऐसी बातों पर खुलासा कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसे समझना, जिसे साफ करना, जैसे दिमाग को साफ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लड डोनेशन से हो सकता है कि मैं पतली हो जाऊं या मैं पतला हो जाऊं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी से कि क्या ये बात कहाँ तक सच्चाई है इस बात में। डॉक्टर जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं खून दान अगर करूँगा या करूँगी तो मैं पतली

0: होती चली जाऊंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है।
1: जो आपने वर्ड यूज़ किया मिथ, ये तो वाकई मिथ है।
0: हाँ।
1: क्योंकि ब्लड डोनेट करके आप पतले नहीं होते हैं, लेकिन क्या ब्लड डोनेशन से आपके शरीर को कोई फ़ायदा है?
0: हाँ,
1: तो
0: जी।
1: ये मैं बताऊंगी। देखिए, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक तरह से जो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन होती है 120 दिन शरीर में
0: जी।
1: तो जब आप डोनेट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ नए कुछ पुराने चले जाते हैं, तो ये जो है जब आपके शरीर से खून निकलता है तो ये स्टिमुलेट करता है आपको बोन मैरो को नया खून बनाने में। तो एक तो ये है कि आप ब्लड
0: रिजुविनेट हो रहा है,
1: रिजुविनेट हो रहा है, आप डोनेट कर रहे हैं तो
0: जी।
1: दूसरी चीज़ मरीज डोनर्स के लिए, जैसे उनके जो जो हम स्वास्थ्य चेकअप करते हैं ब्लड डोनेशन से पहले, ये बहुत फ़ायदे का होता है। बहुत सारे हमारे पास डोनर्स आते हैं
0: जी,
1: तो जो जब वो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं तो पहली बार उनको पता चलता है कि उनको खुद एनीमिया है, ठीक है, उनको पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। तो क्योंकि वैसे शायद वो अपना चेकअप कभी नहीं करवाते, लेकिन जब वो ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं तो जब हम लोग चेक करते हैं तो ये जो चीज़ें उनमें डिटेक्ट हो सकती हैं
0: जी।
1: तो कई आती हैं, और ख़ासकर महिलाएं जो आती हैं तो उनमें तो हमेशा जो है बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें एनीमिया डिटेक्ट होता है, फिर हम उनको भी रेफ़र करते हैं और उनको कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए
0: जी।
1: तो ये दूसरा फ़ायदा है कि शायद वैसे आप ना आते, आपको पता नहीं चलता कि आपको एनीमिया है,
0: या उसका चेकअप भी हो जाता है,
1: हेल्थ चेकअप आपका हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि एक कई सालों से ऐसे मतलब स्टडीज़ कुछ हुई हैं जिनमें बोलते हैं कि जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं तो उनमें जो है कार्डियक हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। तो अब ये कितना सही है, ऑथेंटिक है, ये तो कई मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स छपी हैं। तो एक उसका इस वजह से भी हो सकता है कि खून में हमारे जो होता है आयरन होता है
0: जी,
1: खून में आयरन होता है, और ख़ासकर पुरुषों में जो है ये आयरन को शरीर से निकालने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जब आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो ये एक्सेस जो आयरन आपके शरीर से जो ये कम हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो हमारी जो है फिजिकल वेलबींग है, दूसरी होती है एक मेंटल वेलबींग।
0: बिल्कुल।
1: सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप डोनेट करते हैं और किसी की जान बचाते हैं तो आपको अंदर से एक सुकून मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने किसी की जान बचाई। और जो ये सेटिस्फैक्शन है इसको किसी चीज़ से ख़रीदा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ब्लड डोनर बनिए और आप ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि जो फिज़िकल जो उसके फ़ायदे हैं वो तो हैं, लेकिन जो एक मेंटल जो है वेल बींग सेटिस्फैक्शन जो आपको महसूस होता है ब्लड डोनेट करने के बाद कि मैंने किसी की जान बचाई, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा फायदा,
0: सबसे बड़ा फायदा है। और ह्यूमैनिटी की ओर से आप एक तरह से अपना एक नोबल कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सहयोग दे रहे हैं।
1: देखिए, इस साल का जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम भी जो है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। तो एक तरह से जो है ये ब्लड डोनेशन में कहते हैं ये वाकई एक जो है आप अपना जो है खून दे करके किसी की जान बचा रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ा डोनेशन
0: और
1: कोई नहीं
0: हो सकता
1: है।
0: सही बात है, सही
1: तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हर किसी को जो है ब्लड डोनर को ये सेटिस्फैक्शन ये होना चाहिए कि हाँ हमने ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाई
0: है। और डॉक्टर जी, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे मिथ है, अब इसमें मिथ है या ये फैक्ट है ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बार खून दो तो खून मोटा होता चला जाता है, ये बात में कितनी सच्चाई?
1: नहीं
0: है?
1: इस बात में भी कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, खून मोटा होने की मतलब ऐसे कोई बात नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, देखिए नॉर्मली हम कहते हैं मेल्स जो हैं हर 3 महीने में अपना खून दे सकते हैं, हर 3 महीने में, और जो फीमेल्स को हम एडवाइस करते हैं कि हर 4 महीने में अपना खून दें। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 24 आवर्स में उसका जो वॉल्यूम है वो रिप्लेस हो जाता है, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते में जो है आपके जो रेड ब्लड सेल्स भी रिप्लेस हो जाते हैं शरीर
0: जी,
1: में
0: जी।
1: तो शरीर में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं रेगुलेट करने के लिए कि कितना आपका बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक मिथ ही है कि ये कहना कि हम रेगुलर अगर ब्लड डोनेट करें तो हमारा खून वो
0: मोटा हो जाएगा,
1: मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: और एक और मिथ सामने आया, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार अगर खून दे दिया तो आपको बार बार लत लग जाएगी। ये बात मुझे मतलब ये जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये क्वेश्चन एक सामने आया, तो मैंने कहा ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है।
1: तो मैं तो कहूँगी अगर ऐसी लत लग गई तो बहुत अच्छा है,
0: ऐसी लत लगाइए, ऐसी लत लगाइए

0: कि आप लोगों को हेल्प कर सके, लोगों की जान बचा सके, और इसके लिए आप हमेशा ये लत लगनी चाहिए, क्योंकि सच में देखा जाए तो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बहुत ऐसे कैंपेन्स चलाते हैं जहां पर लोगों को बहुत जैसे सूचनाएं दी जाती है कि आप आगे आए और अपना बिल्कुल खूनदान
1: या पर
0: करें।
1: इसका जो है ये जो ये जो जो ये मिथ है इसके,
0: हाँ
1: क्योंकि कई लोगों में के मन में ये धारणा होती है कि अगर हमने एक बार खून दे दिया
0: हाँ
1: और अगर हम अगली बार नहीं देंगे तो शायद हमारे साथ कुछ शरीर में कुछ

0: बताया मोटा हो जाएगा या कुछ ऐसे, तो ऐसी कोई कोई बात नहीं है। तो अगर आप हम इसलिए भी लोगों को बोलते हैं कि रेगुलरली आप खून दें, क्योंकि हमको हमेशा एक सेफ स्टॉक की ज़रूरत होती है।
1: सही बात।
0: लेकिन ये गलत है सोचना कि ये धारणा कि अगर मैंने एक खून एक बार आज दे दिया तो अब मुझे देना ही पड़ेगा ज़िंदगी भर। कई लोग यही सोच करके नहीं आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने एक बार दिया तो मेरे
1: बार मुझे देना
0: हर बार देना ही पड़ेगा। तो हर बार आपको देना ही पड़ेगा ऐसी कोई
1: जबरदस्ती
0: नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर हर किसी को एक तरह से अर्ज करते हैं, मांग करते हैं हर किसी से कि आप रेगुलरली ब्लड दें।
1: एक तरह से हमारे शरीर के लिए ये फायदेकारक होता है। मैं जरूर ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर जी, क्या खून देने से इम्यूनिटी पर कोई असर पड़ता है? इम्यूनिटी क्या कमजोर हो सकती है?
0: जी नहीं, खून देने से इम्यूनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि जो भी हमारे सेल्स जो जा रहे हैं वो बॉडी जो है रिकवर कर लेती है। और ये भी एक मिथ ही है कि आप अगर ब्लड डोनेट करें तो उससे इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को मान लीजिए एनीमिया है
1: जी,
0: किसी को एनीमिया है और किसी तरह की वो बीमारी है, तो उसमें तो थोड़ा सा जो है आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। लेकिन हम जैसा मैंने कहा कि ब्लड डोनेट करने से पहले हर किसी को स्क्रीन करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन की का चेक होता है। और जिसको एनीमिया है उसको तो वो ब्लड हम लेते भी नहीं है उन डोनर्स से।
1: सही बात, मतलब पहले एक चेकअप होता है। हाँ, और अब ये एलिजिबल है या नहीं। हाँ, ये इसे देख कर ही आप उनको एनकरेज करते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। डॉक्टर जी, यहाँ पर एक और सवाल हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मन में आता होगा कि मान लीजिए अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति खून देता है तो क्या ये खून शाकाहारी व्यक्ति को जब चढ़ाया जाता है तो क्या इसमें कोई चेंजेस आते हैं?
0: मेरे ख्याल से तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये मुझे याद है बहुत सालों पहले किसी ने मुझसे ये कहा था कि कहते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ।
1: हाँ,
0: और मैं जो है किसी का खून नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आदमी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो देखिए, आप कोई मांसाहारी हैं और आप अपना खून दे रहे हैं, शरीर में जाकर के जो भी है आपके जो जो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं या मांसाहारी भोजन कर रहे हैं वो तो वो पच जाता है। और जो भी आपके जो है वो ब्लड सेल्स वगैरह जो फॉर्म होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों में एक ही तरह से होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप मांसाहारी हैं और खून दे रहे हैं और किसी शाकाहारी को जाए तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि वो शाकाहारी जो है वो खून लेने से वो मांसाहारी हो जाएगा। तो ये भी एक गलत धारणा है और लोगों को ये अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी चाहिए। और वैसे भी जब हम देखते हैं एथिक्स में जब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन के, तो हमेशा हम कहते हैं कि जो एक डोनर है और जो एक मरीज है रिसीवर है, उन दोनों के बीच में कंप्लीट एनोनिमिटी होनी चाहिए।
1: सही बात।
0: क्योंकि अगर मैं एक मरीज हूँ तो मुझे ये जानने की और मुझे खून की ज़रूरत है और मेरे डॉक्टर सोचते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मेरी सेहत में फ़र्क पड़ेगा,
1: सही,
0: तो मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये खून कहाँ से आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी तरह से अगर मैं एक डोनर हूँ, मैं अपना ब्लड डोनेट कर रही हूँ, तो मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे खून से किसकी जान बच रही है किसको। तो ये जो है ये एथिकल चीज़ है। वरना क्या होगा, मान लीजिए आप जो है सोसाइटी
1: इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन
0: आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: अब आप बोलेंगे कि मैं तो इस कास्ट का हूँ तो मैं सिर्फ अपने कास्ट वालों के लिए खून दूँ, या मैं इस रिलीजन का हूँ तो मैं सिर्फ अपने रिलीजन वालों के लिए खून दूँ, तो इसमें तो जो है फिर बहुत गड़बड़
1: ये एक तरह से देखा जाए
0: मैनेज
1: तो
0: करना ही मुश्किल
1: हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी से बहुत दूर चला जाएगा, ये भी एक तरह का एक व्यापार हो जाएगा।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए जो है जो हम लोगों के एक वो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उनका जो एथिकल चार्टर जो है वो हमेशा कहता है कि हर एक मरीज के बीच में और डोनर के बीच में कंप्लीट एनोनिमिटी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर जी, जैसे मान लीजिए कोई डोनर जा रहा है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उन्हें पहले कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं या किसी चीज़ का आवश्यकता से ध्यान देना पड़ता
0: है? जी हाँ, जो हम हर डोनर से कहते हैं कि सबसे पहले आप अगर ब्लड डोनेट करने के लिए आएँ, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए।
1: जी,
0: मान लीजिए आपको कोई बुखार है, फ्लू है, फीवर है, किसी तरह का कोई दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस टाइम आप जो है ब्लड डोनेट ना करें।
1: बिल्कुल।
0: तो स्वास्थ्य आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा, जब आप ब्लड डोनेट करने के लिए आएँ तो उससे पहले रात को अच्छी नींद सोएं। ऐसा नहीं कि आपने नाइट शिफ्ट करी और आते ही जो है ब्लड डोनेट किया, तो उसमें थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, थोड़ी सी कमज़ोरी और ये सब हो सकती है, चांसेस हैं
1: जी।
0: तो आप अच्छी नींद सोएं। ब्लड डोनेट करने से पहले थोड़ा सा लाइट खाना खाएं।

0: आप जो है बहुत हैवी मील जैसे बड़ी प्लेट बिरयानी या इस तरह सा खा करके तुरंत जो है ब्लड डोनेट के लिए डोनेट करने के लिए ना आए. लाइट मील होनी चाहिए, सोना चाहिए.
1: और मील के बाद कितने घंटे के बाद खून दे सकते हैं डॉक्टर जी?
0: मील के बाद जो है अगर आपने अभी खाया तो आप 2-3 घंटे के बाद अपना खून दे सकते हैं. लेकिन हैवी मील नहीं होनी चाहिए. लाइट मील खाने के बाद आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं
1: जी.
0: पानी खूब पिएं आने से पहले, मतलब ब्लड डोनेट करने से पहले और ब्लड डोनेट करने के बाद भी पानी खूब पिएं. अल्कोहल अवॉइड करें कि अल्कोहल मतलब आपने रात को खूब पिया और उसके बाद आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए तो ये अवॉइड करें क्योंकि ये आपके ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा. और जैसा कि मैंने बताया ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ा सा आराम करें, तुरंत अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम ना करें, थोड़ा सा आराम करके जो है फिर आप अपना अपनी एक्टिविटीज़ जो है रिज्यूम कर सकते हैं. तो ये प्रिकॉशंस जो हैं हर डोनर को ब्लड डोनेट करने से पहले लेना चाहिए.
1: और डॉक्टर जी एक व्यक्ति कितने पॉइंट खून दे सकता है?
0: एक व्यक्ति एक पॉइंट, एक बार में एक पॉइंट खून दे सकता है. और एक पॉइंट खून में जो है हमारे पास कम से कम जो है 400-450 ml के करीब जो है वो खून होता है जो कि वो डोनेट कर सकता है. क्योंकि औसतन एक जो एवरेज अडल्ट होता है उसमें हम बोलते हैं 4-5 liter जो है खून होता है. तो जब हम एक पॉइंट लेते हैं तो ये उसका 10% से भी कम है.
1: अच्छा.
0: तो इतना खून देने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर में और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं उसके. तो पर कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि अरे हमने खून दिया था हमको तो थोड़ा सा चक्कर आ गया और इससे कमजोरी आ गई. तो उसमें क्या होता है कि ये सारे जिसको हम बोलते हैं वेसोवेगल रिएक्शंस, एक ब्लड और ये खासकर जो पहली बार जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है. और ये थोड़ा सा क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जो डरे हुए होते हैं
1: बिल्कुल
0: तो जब वो जो डर एक स्ट्रेस जब होता है तो आपके अंदर तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो हो सकता है आपको ये वेसोवेगल रिएक्शन हो. तो इसीलिए हम ये भी ज़रूरी है, हम अपने स्टाफ को भी कहते थे कि सब जो पहली बार जो डोनर्स आ रहे हैं उनको आप रीअश्योर करें, उनसे बातचीत करते रहें और उनको उनकी मतलब अच्छी तरह से देखभाल करें तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है.
1: बिल्कुल
0: हाँ, उनका भी डोनर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए. जो पहली बार अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा
1: एनकरेज होंगे
0: जो है दोबारा आने के लिए एनकरेज होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो ये जो है बहुत ज़रूरी है.
1: और मैम मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन हर बार जैसे बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं वो हर बार जब जाते हैं तब कैंपेन्स के लिए?
0: देखिए ब्लड डोनर्स एसोसिएशन एक NGO है
1: जी.
0: तो जब ये जो ये पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सर्विस है ये दो उसके जो पिलर्स हैं. एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस जहाँ की जो खून हम इकट्ठा करते हैं वो आता है, उसका टेस्ट होता है, उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट और ये सब होता है
1: जी.
0: और दूसरा हमारे जो बहुत सारे जो NGOs हैं जिनमें ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण NGO है. तो ये जो है ये हमारे लिए काम करते हैं ग्रास रूट लेवल में, जैसे वो अवेयरनेस क्रिएट करना.
1: बिल्कुल.
0: अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्यों खून देना चाहिए, किस लिए खून देना चाहिए और क्या कर सकते हैं. और ये जो है ब्लड डोनेशन का को भी ऑर्गेनाइज करते हैं.
1: सही.
0: तो ये सब करने के लिए उनको बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में जो डोनर रिक्रूटमेंट टीम है उनके साथ जो है ये लोग क्लोजली काम करना पड़ता है
1: जी.
0: तो समस्याएं जैसे आती हैं क्योंकि ये एक NGO है तो कई बार NGOs के पास इतने जो लॉजिस्टिक्स नहीं होते हैं तो उनको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है कि ये डोनेट मतलब उनके साथ काम करना पड़ता है कि एक एक एक टीम बना करके वो काम करें. तो उसमें कई बार ये सारी ये चुनौतियां आ सकती हैं. और दूसरा कई बार वो होता है कि वहाँ आप जो है एक जगह ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं लेकिन अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के पास उतने लॉजिस्टिक्स नहीं होते हैं कि देने के लिए उस समय. तो ये भी इस तरह की जो है ये समस्याएं आ सकती हैं. और बाकी लोगों को कन्विंस करना ही बहुत बड़ा काम है. तो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जब से इसकी स्थापना हुई है इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल में बहुत काम किया है. जितनी ज़्यादा आजकल अवेयरनेस है कि ब्लड डोनेशन पे आजकल तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे रिलीजियस बॉडीज़ हैं तो सभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि उनमें ये अवेयरनेस है. लेकिन ये अवेयरनेस क्रिएट करने में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ
1: है. और जैसे 14 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी इस दिन पर कोई ख़ास गतिविधियों का आयोजन किया जाता है मॉरिशस में?
0: देखिए ब्लड डोनर्स एसोसिएशन क्योंकि

0: 14th जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, लेकिन जो ऑफिशियल जो फंक्शन है वो 14th जून मेरे ख्याल से संडे को पड़ रहा है या कुछ, तो वो 15 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रहे हैं। और ये जो जो इसका जो आयोजन होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इन सब के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन से ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है। ये जो है क्यूपिप टाउन हॉल, जो म्यूनिसपैलिटी क्यूपिप है, वहाँ पर इसका जो है ऑफिशियल आयोजन होगा। बहुत सारी गतिविधियाँ इन लोगों ने अरेंज करी हैं। एक तो स्कूल जो उसके क्यूपिप में आसपास के जो स्कूल्स हैं तो उनमें जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक मार्च होगा, तो जिसमें कि सब आसपास के स्कूल स्टूडेंट्स जो है भाग लेंगे, और उसमें पुलिस बैंड और प्रिजन बैंड और ये जो आपके QEC में जो वो करते हैं माजोरेट, वो भी जो है साथ में होगा। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मार्च किया जाएगा। उसके बाद जो है ऑफिशियल फंक्शन जो है म्यूनिसपैलिटी में होगा, जिसमें कि हमारे महामहिम जो है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक वो होंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें भाग लेंगे और इसके अलावा ब्लड डोनर्स एसोसिएशन, वहाँ पे ब्लड डोनेशन का भी आयोजन होगा। जो लोग ब्लड अपना डोनेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और उसके अलावा जो कुछ हमारे जो रेगुलर डोनर्स हैं उनको भी कुछ अवार्ड और सर्टिफिकेशन और रिकग्निशन इस तरह का दिया जाएगा। तो ये जो है जो वो जो ऑफिशियल जो उसका फंक्शन है ये इस तरह का होगा। उसके अलावा जो है ब्लड डोनर्स एसोसिएशन अभी वीक लॉन्ग वो लोग हर जगह जगह पे जो है ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं
1: जी।
0: तो एक जैसे कि हम बोलते हैं 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ वो जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर जो है ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं।
1: तो बस इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। जाते जाते डॉक्टर सुनो, आप हमारे श्रोताओं से कोई मैसेज देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारे सारे उन ब्लड डोनर्स को, उनको बहुत हार्दिक बधाई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की, और उनसे ये हमारी अपील रहेगी कि आप जो है बहुत नेक काम कर रहे हैं, एक बहुत ही नोबल काम है ये, और आप इसको करते रहिए। आप करिए, आप अपने परिवार और अपने जो है आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करिए कि वो आकर के रेगुलरली ब्लड डोनेट करें। तो इसका मैं सभी ब्लड डोनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके अलावा ब्लड डोनर्स एसोसिएशन और बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना जो है समय इसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, एक जो है एक वॉलंटरी बेसिस पे अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और इस नोबल जो जो कार्य है उसमें मंत्रालय का साथ देते हैं,
1: सहयोग देते हैं बिल्कुल।
0: और बाकी हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के जितने भी स्टाफ हैं वो भी, क्योंकि वो भी काम, उनके बिना भी ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर जानकी सुनू यहाँ पर जुड़ी। और जी हाँ, हम श्रीमान शुभानंद सी गुलाम जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हर वर्ष ये एक बहुत बड़े आयोजन में भाग लेते हैं और साथ ही साथ एक बहुत नोबल कार्य के साथ लोगों के जान बचाने का एक जिम्मा उन्होंने अपने सर उठाया है। तो बस उनको हिम्मत मिले इस कार्य के लिए, और साथ ही साथ मीडिया का सहयोग हमेशा से रहा है ऐसे नोबल कार्य के लिए। तो इसी के साथ हमारे टेक्निकल टीम का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया, हमारे साथ टेक्निकल पर जुड़े रहे ताकादेय, साथ ही साथ दीपशिका और श्याम लीला जी हमारे प्रोड्यूसर, और हमारे जितने भी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को सुना देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच। इसी के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
2: आज की चर्चा। KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुमेर आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार आदाब। भारत की तरफ से मॉरिशस को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में इन नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाली बसों के बरअक्स इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक खास मूल ढांचे की जरूरत है, यानी चार्जिंग यूनिट।

0: और दूसरे इंतजाम अहम हैं। इस संदर्भ में लातू के निगमे नेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपो में जरूरी मूल ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। कल मंत्री उस्मान मोहम्मद ने वहां एक दौरा भी किया और इसके दौरान सेशल की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोर्ट भी मौजूद रहीं। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के सिलसिले में मॉरिशस में हुई तरक्की का उल्लेख किया और पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के अमल की भी सराहना की। ये जाने कि आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करेंगे वो 5 से 10 पॉइंट गंवा सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स काटे जाते थे। हमारे जलाशयों में जलस्तर में लगातार गिरावट, कल हुई आमहुवी CWA की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक जलाशय 64.7% भरे हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 84.6% था। महोवाकुआ में हालत काफ़ी गंभीर है। मुल्क का ये सबसे बड़ा जलाशय सिर्फ 45.8% भरा है। इस स्थिति के मद्देनज़र कई कदमों पर गौर किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। इनमें नए भूमिगत जलाशय, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट इकाइयों का क्याम और सप्लाई के लिए वक्त मुकर्रर करना शामिल हैं। प्रशिक हीरू मुर्शिस मराठी मंडली फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। रविवार को महाराष्ट्र भवन मोका में नई प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। संकल्प दल से प्रशिक हीरू को 146 वोट मिले, जबकि चक्र दल से पूर्व अध्यक्ष बलराज नाहू को 125 मत मिले हैं। और विदेश में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई जानलेवा हमले किए हैं, बावजूद ये कि ईरान ने पहले हमला न करने की चेतावनी दी थी। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू कैलिमाई कैथोबोन में 78 साल की 78 years old श्रीमती भागवंती बिसुन, श्रीमती भागवंती बिसुन पैदाइशी नाम सुबनुत, जो इंदिरा मैडम क्वी मांजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर एवेन्यू कैलिमाई कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर हम आप सभी श्रोताओं के साथ जुड़ चुके हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:04 हो रहे हैं। आज है बुधवार 10 जून। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और इस कार्यक्रम से, रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, कहते हैं कि हमारे जीवन में जो है, जो भी लोग आते हैं, जिनसे भी हम इस जीवन के दौरान, जिनसे भी हमारा मिलना जुलना होता है, जान पहचान होती है, सभी से हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में नाता अवश्य जुड़ा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति, कोई जो भी व्यक्ति आता है, या तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कोई सबक देने के लिए आता है, या जिन उनके ज़रिए हमें कुछ जानने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का अनुभव मिलता है, या कुछ नई बातों को जानने का मौका मिलता है। जिस भी व्यक्ति से किसी न किसी रूप में हम जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं समय आने पर हमें कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं, और इसी तरह से हमारे जो संबंध है आगे बढ़ते रहते हैं। और सभी संबंध के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गहरा जो है रिश्ता, कोई ना कोई गहरा नाता, कोई ना कोई गहरा संबंध अवश्य छुपा हुआ होता है। जिनसे भी हम मिलते हैं, बिना कारण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही हमारे ये जो है धागे जोड़े होते हैं उनके साथ। और ईश्वर के बनाए हुए जो भी संबंध होते हैं, वो कभी भी आसानी से टूटते नहीं हैं। इसलिए संबंधों का सदैव हमें सम्मान करना

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए यहाँ पर भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम है, आज बुधवार है तो अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे कार्यक्रम विनय अंजलि, जिसे प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर गंगू जी। तो आइए डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुनते हैं हम कार्यक्रम विनय अंजलि।
0: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण सादर नमस्ते। विनयांजलि कार्यक्रम सेवा में प्रस्तुत है आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे एक बहुत ही मधुर भजन से। गायक हैं स्वर्गीय मुकेश जी।

श्रोताओं, अभी आपने जो भजन सुना, कवि प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ यह भजन है, पेतु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। आपने भजन में सुना कि भगवान को पिता, माता, सहायक, स्वामी, सखा, नाथ, रखवारे, सुखदायक, दुख दुर्गुण नाशनहारे, महाराज, शांति निकेतन, प्रेम निधे आदि आदि शब्दों से संबोधित किया है। प्रश्न उठता है कि परमेश्वर को इतने नामों से क्यों संबोधित करते हैं, क्यों पुकारते हैं? किसने हमें सिखाया कि भगवान के इतने सारे नाम हैं और इतने नाम क्यों है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर वेद माता ने हमको दिया है। वेद में परमेश्वर के अनगिनत नाम इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उनके गुण, कर्म और स्वभाव अनंत है। हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में एक श्लोक का गान करते हुए कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक में हमने ईश्वर को माता, पिता, बंधु, सखा और देव कहकर पुकारा है। इस श्लोक का आधार ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 98 सूक्त का 11वां मंत्र इस प्रकार है, त्वम ही नः पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बभूविथ अधाते शुम्न मीमहे। ऋग्वेद की इस ऋचा में ईश्वर को माता पिता शब्दों से पुकारा गया है। माता किसे कहते हैं यह जानने की बहुत ज़रूरत है। माता का हृदय दया का भंडार होता है, उससे बढ़कर बच्चे का कल्याण करने वाला और कौन हो सकता है? माता की

सेवा का मूल्य सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। माँ अपना दूध पिलाकर हमें शक्ति देती है, स्वयं भूखी रहकर हमको अमृत पिलाती है, अनगिनत रातें जाग जाग कर हमें निद्रा देवी की गोद में सुलाती है। एक कवि ने लिखा, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। हमने परमपिता परमात्मा को माता इसलिए कहा क्योंकि वह भी हमारी जन्म देने वाली माता के समान हमारा पालन करता है। ईश्वर धरती के माध्यम से अनेक खाद्य पदार्थ प्रदान करके आहार के रूप में हमको देता है। हम भोजन खाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है, शरीर का निर्माण होता है। क्या कभी हम प्रश्न करते हैं कि परमपिता परमेश्वर किस तरह माता का रूप धरकर हमारा पोषण करता है, हमारे शरीर की रचना जिस तरह माँ करती है उसी प्रकार परमेश्वर माता का रूप लेकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। वेद में बताया गया कि धर्म मार्ग पर चलकर हम सुख और शांति पाने के अधिकारी बनते हैं। परमपिता परमेश्वर सभी माताओं की माता है, वो भी हमें यही बताता है कि धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वह दयालु परमात्मा हमारे पिता के भी पिता है। जिस तरह हमारे पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके हमें सुखी बनाया, वैसे ही परम पिता परमात्मा हमारे पालक हैं, हमारे पिता हैं। हवा बहाकर हमारी नाक में प्राण शक्ति भरते हैं, सूरज का प्रकाश देकर हमारी आँखों में ज्योति भरते हैं, आकाश के द्वारा हमारे कानों को सुनने की शक्ति देते हैं, जल देकर हमारी प्यास बुझाते हैं, तरह तरह के अनाज और फल देकर हमारी भूख को शांत करते हैं, सब प्रकार का रस देकर हमारे शरीर के अंग अंग में शक्ति का संचार करते हैं। इसलिए वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा को जानो और मानो। त्वम ही नः पिता वसु, त्वम माता शतक्रतो बभुविथ। मंत्र में शब्द आया वसु, वसु का अर्थ है बसाने वाला। परमेश्वर ने इस संसार को हमें बसाने के लिए ही बनाया है। ऋग्वेद कह रहा है कि परमात्मा वसु है, हमें बसने के लिए जिस तरह एक मकान एक घर की ज़रूरत होती है उसी तरह उन्होंने यह संसार हमको दिया, यह दुनिया दी और कहा इसमें बसो। ऋग्वेद आगे कह रहा है शतक कर दो बभुविथा, अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि से तरह तरह के उत्तम कर्म करना है हमें। परमात्मा से हमारी प्रार्थना की हे प्रभु आप शतक्रतो हैं, सब प्रकार के कर्म सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें श्रेष्ठ अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। फिर मंत्र कहता है अधाते सुमनमी महे, यानि उस परमेश्वर से हम सुख मांगते हैं। पिता परमेश्वर हमें सुख तभी देते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं। हम अपने माता पिता से जो रुपये मांगते हैं, यदि माता पिता को यह पता होता है कि हम उन रुपयों से अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उन्हें खुशी होती है। कल्पना करें हमने माँ से रुपये प्राप्त करके

पुस्तक खरीदी और पुस्तक से हमने अपने जान को बढ़ाया। यह देखकर माता प्रसन्न होती है और वो भी सुखी होती है और हम भी सुखी बनते हैं। यदि माता पिता ने हमें रुपये दिए और हमने उन रुपयों को नशीली वस्तुओं में बर्बाद कर दिया, गाली गलौज और मारपीट करने लगे, तो परिस्थिति क्या होगी? जेल जाना पड़ता है, जेल की यात्रा करनी पड़ती है। क्या माता पिता के दिए रुपये से हमारा भला हुआ? इसी प्रकार मंत्र में कहा जा रहा है कि जगत की माता परमात्मा हमको सुमनमी महे सुख देते हैं। हम उनसे सुख की याचना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमको आप प्रेरणा दीजिए कि हम अपनी बुद्धि से उत्तम उत्तम कर्म करें और सुख प्राप्त करें। श्रोतागण, कुछ समय पहले जो भजन आपने सुना उसके प्रथम चरण में कवि ने कहा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, यानि परमपिता परमेश्वर जगन माता है और हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं। हम सुख की कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले। उस सुख को पाने के लिए परमेश्वर हमारे सहायक होते हैं, वे हमारे सखा हैं, मित्र हैं। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन की सहायता की, दुख की घड़ी में उनको धर्म का मार्ग बताया, उसी प्रकार परमात्मा सखा बनकर हमारी सहायता करते हैं, वे सहायक हैं और सन्मार्ग की ओर हमें बढ़ाते हैं। यदि हम श्रद्धा से उस माता को पुकारें, उस पिता को पुकारें, उस सखा को पुकारें, तो वे हमारी पुकार सुनकर हमारी सहायता के लिए अवश्य तैयार हो जाते हैं। हमें स्मरण रखना होगा कि वही सहायक परमात्मा हमारा सच्चा सखा और सच्चा स्वामी है। जब हम उस स्वामी को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं, तब शोक के सागर में गोता खाना पड़ता है। आरती भजन आप सुनते रहते हैं। आरती भजन में एक पंक्ति है, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यान जो ध्यावे फल पावे, दुख भी नशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिना औरन दूजा आस करूं मैं जिसकी। श्रोताओ, हम जगदीश्वर से विनय करते हैं कि वे हमारे विषय विकार दूर करें, पाप से हमें बचाएं, हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, जिससे कि हम सुख के अधिकारी बन सकें। आशा है आप इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे और इस प्रार्थना के अनुसार ही बर्ताव करेंगे। अंत में आप आरती भजन सुनेंगे। गायक हैं प्रदीप। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में सहायता दी श्रीमती अंजू जी, हम उनका आभार मानते हैं। आपने सुना, आपको धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। तब तक आप आरती गीत सुनिए।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम विनय अंजलि, जिसे प्रस्तुत किया डॉक्टर गंगू जी ने। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं। और चलिए इस अगले भक्ति गीत की ओर बढ़ते हैं, और इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

चलिए, यहाँ पर भक्ति गीतों के कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, और कहते हैं ना कि भक्ति करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। ईश्वर की भक्ति तो हम जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वहीं से हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं। बस मन में सच्चाई होनी चाहिए और ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और संकल्प होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को याद करने के लिए हमें किसी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जिनके न होने से हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ईश्वर का ध्यान हम करते हैं, और ईश्वर का ध्यान करते हुए जो है हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। यहाँ पर आज बुधवार है, तो हमारा प्रयास यही है कि भगवान गणेश पर आधारित भक्ति गीत हम चलाएं। तो इस अगले भक्ति गीत द्वारा आइए भगवान गणेश का स्मरण करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। बोवालो मेबक के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, बोवालो मेबक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक गोपीलाल लेन, रामनारायण लेन, एपास ओफरे, तोंबू लेन, आलेगेद, गोपाला लेन, दुलौ लेन, रू चुबोंबू, नियोन सुप्लिया, अब्दुल रजाक मोहम्मद स्ट्रीट और शिमे ग्रोव इंडस्ट्रीज बोवालो, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 11 जून को सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, सेवास्तोपोल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर विलाज लेसिया सेवास्तोपोल, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 11 जून को यहाँ पर दिन के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही वाकवा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, वाकवा के खास कर हॉलीवुड नंबर 1, रूथ कैंसकोंटो नंबर 2, रूथ देवेशे, लामारी रोड, रूथ बेगे, रूथ बुनफे, शेमे रिजर्व, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 10 जून को दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति धारा इस कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ पहुँचे हैं। दिन के 10 बजे से आप हमारे साथ जुड़े हैं भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे और ईश्वर से यही मांग करेंगे कि वे सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हम भी सदा यही प्रयास करें कि ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहें। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम श्री गणेश चालीसा के साथ विराम देंगे। पुनः हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। 11 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। तो अगली भेंट तक के लिए सुमिता को अनुमति दें। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: स्टूडियो में आगे सुमेरा लेकर संक्षिप्त समाचारों से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार रादा। भारत की तरफ से मुर्शिद को हासिल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 95 बसें हमारी सड़कों पर कार्यरत होने लगी हैं। देश भर में ये बसें 33 लाइनों पर सेवा दे रही हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में नई बसों की बदौलत एक असल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आज से पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हुआ है। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत गाड़ी चलाते वक्त जो लोग फोन का इस्तेमाल करें वो 5 से 10 पॉइंट गवा सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 3 से 6 पॉइंट्स काटे जाते थे। मेट्रो में अनुचित हरकतों और मेट्रो लाइन पर इलेक्ट्रिक सामग्रियों की चोरी से मुतालिक बढ़ती तादाद के सिलसिले में मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड कदम उठाने का दावा करती हैं। सवारियों की हिफाजत के लिए अपराधियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। मेट्रो एक्सप्रेस ने इलेक्ट्रिक सामग्रियों को हाथ लगाने के खतरों के बारे में भी याद दिलाया। इसके चलते अब सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। अक्टूबर नवंबर 2025 के नेशनल स्कूल सर्टिफिकेट इम्तहानात में कयोल मुगिसिया की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे और दोपहर बाद पौने 1 बजे से 2 बजे के बीच मुर्शिद एग्जामिनेशन सिंडिकेट जा सकते हैं। ये प्रक्रिया वहां जाकर पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन फी के लिए 526 रुपये और पर्चे के लिए

सदकल्लाहु लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें हमेशा तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह इस काबिल है कि आप उस पर एतमाद कर लें और वही आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। और वो रास्ता है तवक्कल का रास्ता, नाकाबिले बयान हद तक अल्लाह ताला की शान, अजमत, बड़ाई और जलाल पर यकीन। उसकी यही शान है, वो तो बस कुन फरमाता है, फिर उसकी खलकत, उसके जलवे हर तरफ बिखेर देती है।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:23 हो चुके हैं। बुध का दिन है, जून की 10 तारीख है और माह ज़िलहज की आज 23 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं।

0: इस कलाम की फरमाइश हमसे की थी नूतकदाम के नासिर और नाजिमा महबूब ने। मौज़े सामीन, ताख़ीर ना करते हुए अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम।

सकता है जिसने पूरा दिन इसे रोज़ी दी और जिसने इसकी बारगाह में ये सब भेजे हैं उसके हुजूर ये जाता है कि नहीं जाता। एक तो ये इम्तिहान का वक्त है, दूसरा ये कि दिन और रात का ये मिलन का वक्त होता है, इसलिए अपने रब को याद करें। लेकिन मैं इसकी तफसीर एक ये है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करने का दुनिया में भी फ़ायदा है और जब इंसान मरता है तो मरने के बाद कब्र में भी फ़ायदा होता है। मरना, जब इंसान मर जाता है तो मौत कोई आम बोलने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत सख्ती बड़ा दिन होता है वो इंसान की ज़िंदगी का। इसका नाम सुनकर आदमी को पसीना आ जाता है। फरमाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अली फरमाते आया उलूम शरीफ के अंदर के इंसान की तरबियत के लिए और आप उसे नसीहत करें तो उसके लिए मौत का जिक्र ही काफ़ी है कि उसके सामने मौत का आप जिक्र कर दें। फरमाया कि मौत की हैबत जब इंसान पर तारी होती है और उसके आसाब और उसके जो उसके जिस्म हैं और जो उसके जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, जब वो ठंडा होना लगते हैं और जब उसकी घरघराहट चलना शुरू हो जाती है तो उस वक्त के आलम मत पूछिए कि कितना सख्ती भरा वक्त होता है। वजा सकरतुल मौत ज़ालिका मा कुंतम तुहीद, सूरह काफ में पारा नंबर 26 में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद मरने के बाद जो कब्र में उतारा जाता है तो ये कब्र की जो पहली रात है ये बहुत सख्ती भरी रात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रोने लगे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, हुज़ूर ने पूछा सहाबा ने कि आप क्यों रो रहे हैं, तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कब्र की पहली रात की सख्ती याद आ रही है। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब चीखें मार कर रोते थे कब्र की पहली रात, इतनी सख्ती भरी रात होती है, यानी जब कब्र में उतार दिया जाता है अज़ीज़ व क़ारीब उसे छोड़ के आ जाते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक मोमिन का हक है और मोमिना का हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसे गुस्ल दिया जाए, उसे कफन दिया जाए, उसका गहवारे में उसे रखा जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और उसकी नमाज जनाजा पढ़ के उसे कब्र में उतारा जाए, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, उसके लिए दुआए मगफिरत की जाए। जब उसकी दुआए मगफिरत करके और लोग चले आते हैं तो हुजूर ने फरमाया कि वो कब्र में बंदा मोमिन जो लेटा होता है, जो कब्र में जिसको लिटाया है, तो वो उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है और जब जूतों की आवाज़ सुनता है तो फरमाया सिवाय इंसान के उसकी आवाज़ सब सुनते हैं, इंसान नहीं सुनता। तो वो आवाज़ देता है आज मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई पलट कर नहीं देखता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी आसना में दो फरिश्ते आते, आता हु मलकानी फ़ी कब्री फ़युकाइदानी ही, वह उसे उठाकर बिठाते हैं। फ़यकूलान, उससे कहते मन रब्बू का, बताओ तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनू का, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, माँ कुन तकूल फ़ी हाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदे को कब्र में पहली मर्तबा फरिश्ते उठाकर बिठाते हैं और वो मौत की नींद से उठता है और आंखें खोलकर मसल कर देखता है तो कब्र में उसे जब भी रखा गया हो, चाहे के दिन के 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, ये रात में किसी भी वक्त, लेकिन जब कब्र में उसे उठाकर बिठाया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे अभी शाम का वक्त है, असर की नमाज का वक्त हो रहा है, सूरज गुरूब होने वाला है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते अगर वो नमाज असर की पाबंदी करता होगा दुनिया में और पाबंदी के साथ नमाजी होगा और नमाज असर की खसूसियत के साथ पाबंदी करता होगा और जब उसे अकेले कब्र में तनहा भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप अजीज़ वकारीब बस्ती वाले जब अंधेरी कोठरी में जहाँ सांस तक नहीं, जहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, जहाँ कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, जब उस अंधेरी कोठरी में आकर के उससे दो फरिश्ते उठाकर बिठाएंगे, फ़यकूलान, और उससे सवाल करेंगे, तो वो आंखें मलता हुआ जब उठेगा और कब्र में पहली आंख खोलेगा तो उसे लगेगा कि अभी असर का वक्त हो रहा है। अगर दुनिया में उसकी नमाज असर की आदत होगी और पाबंदी से अदा करता होगा तो वो फरिश्तों से कहेगा मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरज गुरूब होने वाला है, नमाज असर का टाइम निकला जा रहा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं नमाज असर अदा कर लूँ। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते फरिश्ते कहेंगे पढ़ लो, तो वह नमाज असर की नीयत से अपने कफन में कब्र में नीयत बांधेगा अल्लाहु अकबर, तो वह फरिश्ते आपस

में कहेंगे इसने पहले सवाल का जवाब दे दिया, पहला यही है मर रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन है। ये कह रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर ये सना पढ़ता है, सुबहाना पढ़ता है, तो कुरान की तिलावत सूरह फातिहा पढ़ता है, इस्लामी तरीके से नमाज पढ़ता है, तो फरिश्ते कहते हैं इसने दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, इसलिए यही है मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। और दीन नमाज भी है, और नमाज दीन के अंदर है, और ये मोमिनों की मेराज है, तो ये नमाज अदा कर रहा है, तो लिहाजा ये दीन मुहम्मदी पर, दीन हनीफ पर है। अब उसके बाद वो जनाब वाला रकातें मुकम्मल करता है, और आखिरी रकात में बैठकर पढ़ता है तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ये तशाहुद में बैठकर कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और फिर उसके बाद ये दुरूद पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब वो ये पढ़ता है तो फरिश्ते कहते हैं अब इसने तीसरे का भी जवाब दे दिया, हमारा तीसरा सवाल यही था कि इनके बारे में क्या अकीदा है, तो ये तो दुरूद और सलाम पढ़ने वाला है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहा है, तशाहुद में बैठ के सलाम भेज रहा है। और उसके बाद जनाब वाला दुआए मासूरा पढ़ता है, और पढ़ने के बाद ये फेरता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर उसके बाद ये दुआ करके फरिश्तों की तरफ मुखातब होकर कहता है अब बताओ तुम क्या सवाल कर रहे थे। तो वो फरिश्ते कहते हमने जो सवाल करने थे तुमने उसका जवाब अपनी नमाज असर के ज़रिए दे दिया। तो वो कहेगा अब क्या है, तो कहेंगे अब कुछ नहीं है, नम का नौ मतलूरूस। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते फरिश्तों से कहा जाएगा ये मेरा बंदा सच्चा है, इसने सच कहा है, फ़फ़रिशु लहु मिनल जन्ना व अलबसुहु मिनल जन्ना वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्ना, इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछाओ, इसके लिए जन्नत के कपड़े पहनाओ, इसे जन्नत की खिड़कियां खोल दो दरवाज़े, ताहत्ते नज़र ये अपनी कब्र से जन्नत को अपनी देखता रहे, और इससे कहो नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, अब तुम्हें क़यामत के दिन जगाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, नमाज असर की पाबंदी की बरकत ये है, आज हम नमाज असर को छोड़ देते हैं और मियाँ नमाज असर ही क्या पांचों नमाजें खा जाते हैं, और हमें गैरत तक नहीं आती, हमारी हैर गैरत ही मर चुकी है, तो गैरत कहाँ से आएगी। एक मोमिन की शान ये है, वो आदमी ही क्या है जो आकिल और मालिक भी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा करना ना कर सके, वो अल्लाह की इबादत ना कर सके, वो अल्लाह के हुजूर खड़ा ना हो सके, वो क्या है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है बेनमाजी की। एक गरीब आदमी जो छोटे से टूटे हुए मकान में रहता है लेकिन खुशू और खुजू के साथ पाँचों वक्त की नमाज अदा करता है, और एक सोने के महल में रहता है और अच्छी गाड़ियों में चलता है, तो उस सोने के महल में रहने वाले की कोई इज्जत नहीं है अल्लाह की बारगाह में, और उस गरीब आदमी की इतनी इज्जत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और अल्लाह का सुकून इसके दिल पर नाजिल होता है। याद रखिए नमाज छोड़ने वालों, इस हदीस पाक को सुनो, ये मैं आखिरी हदीस बताकर अपनी बात खत्म करता हूं, खुदारा खुदारा नमाज छोड़ने से बचो, नमाज की पाबंदी करो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-आस عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي من خلف। अहमद दारमी और बहकी में यह हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोज़
نماز کا ذکر کر رہے تھے اور حضور پاک فرماتے جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ کمال ایمان کی دلیل

0: होगी, ना बख्शिश का जरिया होगी, और कयामत के दिन कारून, फिरौन, हाबान और उबैया बिन खलफ के हमराह वो होगा, उसका हश्र। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इस लानत से हमें बचाए, इस अजाब से बचाए, हमारा हश्र सिद्दीकीन के साथ फरमा दे, सालिहीन के साथ फरमा दे, नमाजियों के साथ फरमा दे, शुहदा के साथ फरमा दे। ये तब होगा जब हम फराइज और वाजिबात की पाबंदी के साथ उस पर अमल करें, और खुसूसियत के साथ नमाजों की पाबंदी और बिलखसूस नमाज असर की पाबंदी करें। आप नमाजें पढ़ के तो देखो, फिर आपके घरों में, आपके कारोबार में सुकून, इत्मीनान, तरक्की, बरकतें, रहमतें कैसे नाजिल होती हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी नमाज की तौफीक अता फरमाए पाबंदी के साथ बजमात, और आप सबको भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक दिल को छू जाने वाला बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इन दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। सनीचर 13 जून, जी हाँ, सनीचर 13 जून आलिमिया कॉलेज हाइलैंड्स फिनिक्स में 4:15 यानी 3:45 PM से शाम के 6:30 तक उर्स शरीफ मुबल्लिग आज़म मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल हलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया जा रहा है। ख़वातीन के लिए भी खास इंतज़ाम।

सनीचर सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख्वातीन को शिरकत की दावत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, करीमुल्ला फैमिली बहन नाजरा दुलू, जिनके लिए करीमुल्ला फैमिली ने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं कि अल्लाह पाक उनकी नाजरा की तमाम दुआएं कबूल फरमाए और सेहत के साथ उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। इसके अलावा वाकवा से मुस्लिम चिबाई भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं।

ये आलम नशा के सीने वाले, मुझको सरकारे मदीना ही अता करते हैं, मेरे गमख्वार हैं रहमत के खजीने वाले। हश्र के पुल से वो बेखौफ गुजर जाएंगे, जामे कौसर तेरे हाथ से पीने वाले। कितने खुशबख्त नसीबों के सिकंदर हैं वो लोग, इश्क़ सरकार में मरने और जीने वाले। कोई ख़तरा नहीं तूफ़ान की तुगयानी का, कैसे डूबेंगे मोहम्मद के सफीने वाले।

0: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीईबी वाकवा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। वाकवा के खासकर हॉली रूट नंबर 1, रूट कैंस कौटो नंबर 2, रूट देव्यागे, रूट लामारी, रूट बेगे, रूट बुनफे, शिमे रिजर्वो, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 10 जून को दोपहर के 3 से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 kHz पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: सौंदर्य लहरी, सौंदर्य लहरी। संगीत ప్రియులందరికీ మా నమస్కారములు। సౌందర్య లహరి అనే కార్యక్రమంలో మీకు స్వాగతం, సుస్వాగతం। సౌందర్య లహరి అనే కార్యక్రమంలో ఈరోజు నేను విష్మ మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను। 12 నుంచి 12:30 దాకా ఈ సంగీత యాత్రలో కలిసి

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गुजरात नी सुगंध, गुजरात नो रंग, गुर्जरी धराना मीठा झरना, MBC रेडियो पर।

दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, कैसे हैं आप? आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आज बुधवार 10 जून 2026 और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद प्रोग्राम, आपकी पसंद प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए हर बुधवार की तरह मैं उषा कौर यहाँ पर, और हमें पता है कि आप लोग भी साथ निभाएंगे और इस पल को और खूबसूरत बनाएंगे। तो याद दिला दे, नंबर है 4028085 4028085, और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 15251705। हमें आपका इंतज़ार है। और आज का ये पहला गाना फिल्म सत्ते पे सत्ता, ये रोमांटिक गाना आप सभी लोगों के नाम, आप जहाँ पर भी इस समय काम कर रहे हैं या फिर घर पर है, गाड़ी चला रहे हैं और गाना सुन रहे हैं, तो बस इस गाने के साथ आप गुनगुनाइए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आपकी पसंद, चलिए आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और आज की पहली फरमाइश विश्वानी डुमन जी के लिए और वो रहती है वाक्वा। इस समय हमें सुन रही है और गाना खासकर वो मांग रही है अपनी बहन इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए और साथ ही साथ में ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं बुबासा से। फिल्म का नाम है जालिम, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथ ही साथ में विनोद राठौर की आवाज़ों में।

आपकी पसंद, आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना लता जी की प्यारी आवाज़ में, और ये गाना जाएगा रिवियर दे क्रियोल, जी हाँ, के रहने वाली साधना जी, जी हाँ, गाना मांग रही हैं जीवन फैमिली के लिए जो रहते हैं रिवियर दे क्रियोल और मॉ डालबेयर, उनके परिवार जो रहते हैं मॉ डालबेयर, यूनियन पार्क और ला रोज़ा और दुबई के ओल्ड जीबन फैमिली के लिए ये गाना जाएगा। चलिए, बहुत ही प्यारा गाना।

मैं हेलो का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। जी हाँ, और यहाँ पर अगला गाना भैराग फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में। सारे शहर में आप सा, जी हाँ, ये बहुत प्यारा गाना जाएगा अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं काठुबोन से, और साथ में गाना वो मांग रही हैं अपने पति राजन के लिए और बेटे वरुण।

उरे जब जब जुल्फे तेरी, जी हाँ ये बहुत ही प्यारा गाना आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में नया दौर फिल्म से लिया गया ये गाना जाएगा, खासकर सुदेवी जी की मांग पर, और वो रहती है वाक्वा। गाना खासकर ललिता दीदी जो रहती है त्रियोली उनके लिए, कुशल फैमिली, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले विमल, वर्षा, वीर, निया, मालेंगा के ओल, राम रतल परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआबू परिवार और गुहांग सिंह परिवार के लिए। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। देश में पानी की कमी को देखते हुए जल्द ही पानी वितरण पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सबसे पहले पेनविलियम्स क्षेत्र प्रभावित होगा, जो मऊ वाकवा जलाशय से पानी प्राप्त करता है। इस जलाशय में पानी का स्तर घटकर 45.8% रह गया है और करीब 1.5 लाख ग्राहकों को रोजाना 4 घंटे तक पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर आने वाले महीनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। अतिरिक्त भूजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मोबाइल इकाइयों के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। FCC की जांच में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अटसू के पूर्व अधिकारी कोविलेन संगाहन पीले मर्डे को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। 37 वर्षीय इस पूर्व पुलिसकर्मी पर आरोप है कि वो करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स मॉरिशस लाने की कथित साजिश में शामिल था। इस ड्रग्स की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है और गौरतलब है कि उसे पिछले वर्ष भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। FCC ने अदालत में उसकी जमानत पर विरोध जताया है। मॉरिशस में हिरण शिकार का मौसम शुरू, ये सत्र 1 जून से 30 सितंबर तक चलने वाला है। इस साल बाजार में करीब 600 टन हिरण का मांस आने की उम्मीद, इसकी कीमत लगभग 350 रुपए किलो रहने का अनुमान है, लेकिन शिकार के लिए सख्त नियम लागू रहेंगे। वैध परमिट लेना जरूरी होगा। हथियारों की जांच पुलिस करेगी और केवल मंजूर कारतूसों को ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना और बाजार की जरूरत को पूरा करना है। विदेश स्तर की खबरों में अमेरिका ने कहा है कि एक अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद ईरानी के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमरीकी सेना के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस के पास रेडर केंद्रों, निगरानी केंद्रों और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। बहरीन, जोर्डान और कुवैत ने भी सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पुष्टि की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद जवाब देना जरूरी था। वहीं ईरान ने कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब देगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कॉलिव्यू ओकुले में 71 साल की 71 years old की श्रीमती धनवंती मोगन, की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:30 AM। रॉयल रोड क्लूनी में 65 साल के 65 years old के श्री केसरी दसोई की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनके भाई विजय दसोई के मकान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:04 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. 819 kHz.

0: यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां। बोवालों और मेबर के आसपास के इलाके गोपीलाल लेन, रामनारायण लेन, एम्पास ओफ्रे, बेजटोंगो लेन, आली गुड, गोपाला लेन, डुलॉ लेन, रू जुमांबो, रू नियों, रू सुफ्लेयर, अब्दुल राजाक मोहम्मद स्ट्रीट और शमें ग्रोव इंडस्ट्री बोवालों के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और लेजियो और सेबास्टोपोल के रहने वालों को, जी हाँ, उनको सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 सुबह के दिन के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और सीते जंक्शन पाई के एवेन्यू चुलिप, जी हाँ, उन रहने वालों को यह सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद। तीन बजकर 8 मिनट हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, और यहाँ पर प्रस्तुत है आपकी पसंद प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 4 बजे तक, और आप भी साथ निभाइएगा। और आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और यहाँ पर कोलेन जी हैं, वो रहते हैं नुवेल फ्रांस, और गाना वो मांग रहे हैं फिल्म अनारी से लिया गया। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना लता जी, और साथ में है साथियों की आवाज़ों में, और ये गाना जाएगा उनके लिए और पूरे मिसेरी परिवार के लिए।

की पसंद। तीन बजकर 12 मिनट हुए हैं और आज 10 जून 2026 और कई लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, और आप इस समय हमें सुन रहे हैं तो हम आपको कहते हैं, हम आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर अमृता जी जो रहती है काहू कासिया गाना मांग रही हैं अपने दामाद सूरज नागिन के लिए जो रहते हैं रिविएरा पिचित रिविएरा। जी हाँ, जन्मदिन के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं पत्नी प्रतिमा देव, बेटी अदिति, बेटा है राहुल, भतीजी है परी और मनीषा और साथ में पूरे नारायण परिवार की ओर से। और साथ ही साथ में केशवंती जी जो हमें सुन रही है गुडलैंड से और गाना वो मांग रही है अपनी नातिन जी हाँ आशनी के लिए, उनका जन्मदिन है, बधाइयाँ दे रही हैं उनके पापा वीर, बेटा वियान और पूरे परिवार की ओर से। और साथ ही साथ में चलिए धन्यवाद आपको, आप साथ दे रहे हैं एक बार फिर से जो भी हमें सुन रहे हैं पूरी MBC टीम की ओर से आपको जन्मदिन मुबारक।

आपकी पसंद। तीन बजकर 20 मिनट हुए हैं। चलिए यहाँ पर एक और प्यारा गाना खासकर अमीना जी के लिए, वो रहती है पोखालय और गाना वो मांग रही है अपने तीन भतीजे के लिए और वो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस वीकेंड को और जिन्होंने मना लिया है ओके अकिल है जो 8 जून को अपना जन्मदिन मना लिया है, एक है अली और फयाज़ जो 13 जून को अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं आपको, आपके भतीजे को और ढेर सारा प्यार उनके पूरे परिवार की ओर से। फिल्म का नाम है आ गले लग जा, किशोर दा की आवाज़ में और साथ ही साथ में सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ों में।

आपकी पसंद। जी हाँ, अगला गाना फिल्म अलबेला से लिया गया और ये गाना माला झरी के लिए जो इस समय हमें सुन रही है। गाना अपनी सहेली के लिए मांग रहे हैं और वो अभी आम्स्टर्डम में है और बेटा के यहाँ है और सहेली का नाम है अमिता मुहाबियर जो रहती है बुनाके। और याद दिला दे के माला जरी जो है वो रहती है पिछ थाफरे।

की पसंद। दुनिया हसीनों का मेला है दोस्तों, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर खास गाना हम चला रहे हैं बुआशहरी के रहने वाले धनी जी के लिए, और गाना वो मांग रहे हैं यश और हेमिश के नाम, जी हाँ उनके दो नाती जो है। और आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं, 3:30 बज चुके हैं, नंबर है 4028085402808585। मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5251705। हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो साथ दे रहे हैं।

आपकी पसंद। आपके पसंद प्रोग्राम यहाँ पर गाना हम चलाने जा रहे हैं शिवरानी जी के लिए। वो रहती है लॉन्ग माउंटेन और गाना वो मांग रही है ये रात फिर ना आएगी। जी हाँ, और गाना आशा जी की आवाज़ में यही वो जगह है। बहुत ही प्यारा गाना है।

आपकी पसंद। जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। 3:50 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। यहाँ पर फिल्म थानेदार का ये खूबसूरत गाना जाएगा बंधु परिवार के लिए, जो हमें सुन रहे हैं थयोले से।

चलिए यहाँ पर मुलजिम फिल्म से लिया गया ये अगला गाना सुनते हैं, और गाना जाएगा अनीता जी जो रहती हैं फिक ऑफ लक, उनके मांग पर, और गाना वो मांग रही हैं अपनी सहेली कविता भीमा के लिए। आज उनका जन्मदिन है और ढेर सारी शुभकामनाएं उनके ओर से और उनके सभी परिवार की ओर से। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों। 3:55 हो गए हैं, ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शिरीष रामा के साथ, और हमारी मुलाकात होगी, हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और साथ में होंगे रोशन भाई, जी हाँ, अंताक्षरी प्रोग्राम में। तो तब तक इस खूबसूरत गीत के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए आशा जी, मोहम्मद अजीज़ साहब, रीमा लहरी की आवाज़ों में।

0: इसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: बस हमें श्रोता चाहिए अंताक्षरी के लिए 5:14।
0: अंताक्षरी अंताक्षरी।

0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। उषा जी और रोशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर अंताक्षरी प्रोग्राम।
1: बिल्कुल।
0: और कैसी हैं आप उषा जी?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? नमस्कार आपको और नमस्कार प्यारे श्रोताओं।
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं तो ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि आज तो अंताक्षरी है और कल से शुरुआत है वर्ल्ड कप 2026 की भी।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: और चलिए आप लोगों का हम यहाँ पर हार्दिक अभिवादन करते हैं, दिल से आप लोगों का हम स्वागत करेंगे और आपको कहेंगे कि वी जस्ट Like you all. हमेशा की तरह। और जबकि हमने उषा जी से कहा कल तो वर्ल्ड कप है, तो चलिए आज एक अंताक्षरी कप हो जाए।
1: अंताक्षरी कप। और अंताक्षरी कप के साथ साथ यहाँ पर हमने ये बताना भूल गया कि हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, बता दीजिए।
1: ऑन रेडियो मॉरिशस पेज ऑन लाइव टिकटॉक। अगर आप हमें इस वक्त आप तो हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन वॉच अस ऑन टिकटॉक।
0: ऑन टिकटॉक AM2 रेडियो मॉरिशस, जहां पर आप लोगों को मिलता है संगीत रस। और बहना ने कह दिया टिकटॉक पर आप हमसे संबंधित भी हो सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए बहना।
1: व्हाट्सएप नंबर है 5251700525517005।
0: अंताक्षरी से जुड़ने का साधन तो अनेक
1: हैं। जी, और यहाँ पर माधवी डुमर है, कह रही है नमस्ते आप दोनों को। नमस्ते आपको। और परी भी है, मैं रोशन की मामी हूँ। अच्छा जी।
0: अरे, परी जी मेरी मामी है।
1: अच्छा, पता नहीं।
0: अच्छा, देखेंगे।
1: ओके, गुड, नाइस नाइस टू हियर। और क्या करें, यहाँ पर कॉल्स आने लगे हैं
0: तो हम बता दें आज का विषय क्या
1: आप
0: है,
1: आप खुद बताइए।
0: अच्छा, कल तो वर्ल्ड कप है, तो चलिए आज एक ऐसा हम खेल पहली बार के लिए आप लोगों के लिए निर्धारित करेंगे। एक श्रोता शुरुआत से अंत तक रह सकता है, वो सभी को चैलेंज कर सकता है,
1: लेकिन उनका जो फोन क्रेडिट है वो तो खत्म हो जाएगा ना।
0: अब क्या करें, एक बार तुम कर सकते हैं ना, वर्ल्ड कप एक बार के लिए आता है ना। तो हो सकता है आपके लिए कोई भी प्रश्न हो उषा जी की ओर से, मेरी ओर से, तो आप तैयार रहें। जब तक कि आपकी जीत हो रही है तो आप बरकरार रहेंगे।
1: बिल्कुल। और ये भी बता दें कि यहाँ पर जब आप लोग मैसेज कर रहे हैं ना टिकटॉक पर, तो अगर कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, आप भी खेल सकते हैं और जवाब भी आप लिख सकते हैं कमेंट पर।
0: बहुत अच्छा,
1: चलिए मजा आएगा और खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है, हम उनको लाइन पर लेंगे।
0: चलिए हम देखते हैं कौन लाइन पर है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी।
1: नमस्ते श्यामा जी, कैसी है आप?
0: ठीक है,
2: ठीक हूँ।
1: आप है श्यामा जी फ्रॉम विलमे।
0: तो चलिए श्यामा जी, आप पहला श्रोता है, हो सकता है कि आप अंत तक रहेंगी। ओके,
2: दो बुधवार को मुझे लाइन नहीं मिला,
1: तो आज मिला है, तो आज के लिए
0: आज हो सकता है कि आप पूरे प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम तक आप रह सकती हैं, जब तक कि आपकी जीत हो रही है। ओके,
2: तो मैं अपनी पसंद के गाना गाऊं?
0: नहीं
1: नहीं नहीं,
0: एक कंपटीशन की तरह है। ओके, तो हम उषा बहन से मांग करेंगे कि एक छोटा सा टुकड़ा आप गा लीजिए पहले, तब उस पर एक प्रश्न होगा, कोई भी गाना उषा जी।

0: तेरे प्यार में सारा आलम।
1: जी हाँ, सारा आलम सब भूल जाएंगे अगर आपकी आवाज़ सुनेंगे तो। तो चलिए सारा आलम शमा जी, ओके, तो म से आपको एक गाना गाना पड़ेगा, म से। लेकिन हम दूसरे श्रोता को भी लेंगे, ले लीजिए प्लीज उषा जी, देखते हैं कौन है दूसरा श्रोता, अगर है कोई।
0: हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
0: नमस्ते
1: सरिता जी फ्रॉम कतबोन
2: जी। एक सप्ताह मैंने भाग नहीं लिया, एक सप्ताह तो मुझे लाइन नहीं मिली,
1: तो आज दोनों को मौका मिला है।
0: चलो हमें पता है, लेकिन शिकायत करना बेकार है, क्योंकि समय ज्यादा

0: नहीं है हमारे पास, और आप जो वो सवाल वो पूछने वाले हैं उसका जवाब दीजिए प्लीज।
1: ओके, तो हम श्यामा जी से शुरुआत करेंगे। और श्यामा जी, उषा जी ने खत्म किया म स्वर से। ओके, म से कोई भी गाना गाइए प्लीज।
2: मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी, तरप तरप कर यही कहेगी, सदा रहा है सदा रहेगी।
1: जी हाँ, सदा रहेगी आपकी मोहब्बत। बहुत बढ़िया, आपको मिले हैं 10 अंक श्यामा जी। अब हम बढ़ेंगे सरिता जी की ओर। सदा रहेगी, ग से कोई गाना गाइए प्लीज। ग से

0: ये दिन कहीं बीते ना, ये रातें कहीं बीते ना, ये दिन गाता रहे मेरा दिल।
1: बहुत अच्छा सरिता जी, और आपको भी मिले हैं 10 अंक शमा जी की तरह। अब शमा जी आपके लिए प्रश्न उषा जी तैयार किया है उन्होंने।
2: जी हाँ, एक फिल्म है परिंदा, और इसमें कौन नजर आए थे, कौन हीरो और हीरोइन, उनका नाम बताइए।
3: अनिल कपूर।
1: हाँ जी बिल्कुल,
3: माधुरी दीक्षित।
1: ओके, जैकी श्रॉफ। तो बताइए एक गाना उस फिल्म से आपको गाना पड़ेगा।
3: परिंदा।
1: ये
3: तो नया फिल्म है।
1: नहीं जी, नई फिल्म नहीं है, 1989 की फिल्म है। गाइए, आपका समय शुरू होता है अब।
3: ये शायद है बटटावरा।
1: बटटावरा। आए, ये तो हिफाजत फिल्म का गाना है जी। क्या हो गया? कोई बात नहीं शमा जी, आपने कोशिश की, आप 10 अंक लेकर चली गई। ओके, जा रही है, कोई बात नहीं, फिर भी आपने कोशिश की है। धन्यवाद शमा जी। चलिए हम सरिता जी की ओर बढ़ेंगे।
2: सरिता जी, लेकिन सरिता जी के साथ कौन आएगा, है ना?
1: चलिए देखते हैं। बिल्कुल।
2: हेलो।
1: हेलो जी।
2: जी
1: हाँ जी, नमस्ते।
4: हाँ भाई, नमस्ते भाई।
2: नमस्ते,
1: जय भाई, नमस्ते। कैसे बा?
4: अच्छा भैया, अच्छा बा ना?
1: हाँ अच्छा बा, बिल्कुल। तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। ओके, सरिता जी के अभी बारी बा, उषा जी पूछलन कि परिंदा से गो गाना गाए के, परिंदा फिल्म से। तो सरिता जी यहीं पर है, पर सरिता जी के लिए।
3: यही हूँ।
1: सरिता जी, गाइए परिंदा फिल्म का कोई भी गाना।
3: परिंदा, हाँ। मुझे अभी याद नहीं आ रही है।
2: और हाँ, इसको आगे ले जाने से पहले यहाँ पर एक श्रोता है जो हमें देख रही हैं, फ्रॉम लाइव टिकटॉक, स्कारली डी, उन्होंने जवाब दिया है माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। हाँ, आपने सही कहा, और परी जी ने भी ने यही बात कहा, और इस पर हम सुनना चाहते हैं एक गाना।
1: हाँ जी, सरिता जी आपका समय शुरू होता है अब। कोई भी गाना परिंदा।
3: मुझे याद नहीं आ रही है।
1: ओ, ओ सरिता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आपको भी पता नहीं चला, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे हम। ओके, धन्यवाद आपको। ओके,
3: धन्यवाद,
1: धन्यवाद। तो चलिए हम उषा जी से मांग करेंगे कि परिंदा का कोई भी गाना आप सुना दें। कोई भी गाना।

0: ये गाना था बहुत ही आसान सा, कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा जी, आप जय जय जी यहीं पर हैं? ओके। उषा जी ने गाया हम न होंगे जुदा, है ना? तो द एक अक्षर है, द द से कोई भी गाना आप गाइए, द से।
2: द आपने त कहा?
0: द द द जैसे दिल, द जैसे दिल, दिल द।
2: टूटे हुए खामों ने
1: द द द जय
0: भाई जी, द से हमने कहा, द द
2: द आपने द कहा?
0: हाँ द, हाँ गाइए गाइए द से।
2: दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा जब जब जग छाई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब।

0: बहुत सुंदर आपने गाया है और मुकेश डा की आवाज में आपने गाया, बहुत अच्छा। जय भाई, आपको मिले हैं 10 अंक। चलिए हम देखते हैं दूसरी लाइन पर कौन है आपके साथ खेलने के लिए।
1: हेलो
0: हेलो जी,
2: हेलो नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
0: नमस्ते
1: नमस्ते मीनाक्षी जी, हाउ आर यू, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ।
0: चलिए मीनाक्षी जी, दूसरी और जय भाई हैं, इस तरफ हम दोनों हैं और उस तरफ आप
1: और यहाँ पर जारी रखने से पहले यहाँ पर माया है, वो हाय बोल रही है।
0: हाय माया जी,
1: हेलो। और इंदिरा लॉटन भी यहाँ पर है, लेकिन हमेशा की तरह वो गाना मांगती है। हम इंदिरा जी, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है।
0: हाँ जी, ये तो अंताक्षरी प्रोग्राम है जिसमें आप अक्सर भाग लेती हैं।
1: और धन्यवाद जो लोग जुड़ चुके हैं, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मीनाक्षी जी को हम सुनते हैं।
0: मीनाक्षी जी, ओके, तो उषा जी की ओर से एक प्रश्न होगा आपके लिए, कोई कोई सिंगर पर, कोई फिल्म का नाम, या आप ही बताइए कौन सा प्रश्न।
1: प्रश्न एक, शुरुआत में हमने एक गाना गाया, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, ये गाना कौन सी फिल्म की है, किस फिल्म से लिया गया है,
0: याद आया आपको?
2: मैं सोच रही हूँ।
0: सोचिए,
1: सोचो सोचो जल्दी सोचो।
2: अरे बाप, ये तो
0: नहीं याद आया। कोई बात नहीं, उषा जी बता देंगे आपको।
1: दिल एक मंदिर।
0: दिल एक मंदिर, ओके, कोई बात नहीं। दिल एक मंदिर, तो कोई बात नहीं, जो गाना आपको गाना पड़ेगा दिल एक मंदिर का, और गाना आपको पता है? कोई बात नहीं, अगर दिल एक मंदिर नहीं तो पुराना मंदिर फिल्म का गाना गा दीजिए, पुराना मंदिर।
2: वो पल छिन याद है, बिता दी तेरी संग जो, लगा के मुझे अंग जो।
0: जी बिल्कुल, और आपने सही गाना गाया, 10 अंक आपको मिले हैं मीनाक्षी जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे जय भाई की ओर।
1: हाँ जय भाई, यहाँ पर हैं आप,
0: कौन सा गाना आप?
1: हाँ, कौन सा गाना हम आपसे गवाएंगे? तलत महमूद साहब का एक गाना गाओ।
3: तलत महमूद,
0: हाँ जी गाओ, तलत महमूद जी का गाना।
3: मेरा करार ले जा मुझे।

0: कोई बात नहीं जय भाई, ओके अच्छा है, अच्छा
1: जी,
0: है,
1: हाँ जी।
0: अच्छा है, बहुत अच्छा आपको मिले हैं 20 अंक जय भाई। आप यहीं पर रहें, नहीं जाएं। अब हम मीनाक्षी जी की ओर बढ़ेंगे। मीनाक्षी जी के लिए कौन सा प्रश्न है उषा जी?
1: मीनाक्षी जी, कौन सा प्रश्न हम आपसे पूछे? ये जो गाना है तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव, किस फिल्म से लिया गया है?
0: याद आया आपको?
2: हाँ, मुझे मालूम है।
0: यारा
2: तो नहीं आ रहे अभी।
1: आए हाय
0: यारा, यारा दिल, यारा दिलदारा,
2: यारा दिलदारा।
0: ओके, तो कोई बात नहीं, अब एक गाना इस फिल्म का गाइए आप प्लीज। जैसे कि आप,
2: अरे वाह, मेरी जिंदगी आना ही परा सजना, जालिम है दिल की लगी।
0: जी हाँ, जालिम है दिल की लगी। और मीनाक्षी जी को भी मिले हैं 10 अंक, यानी 20 अंक दोनों के पास है। ओके, जालिम है दिल की लगी। चलिए जय भाई, आपके लिए अब ओके। फिरोज खान साहब पर कोई भी गाना गाइए प्लीज।
3: फिरोज खान वो फिल्म था कसमकस।
0: वाह, गाइए
1: गाइए
0: गाओ गाओ
3: कसमकस।
0: कोई भी गाना फिरोज खान का, लगता है कि कसमकस नहीं तो और कोई फिल्म से लिया गया कोई भी गाना गा दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब।
3: हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे।

0: अंतरा नहीं भाई जी,
1: नहीं नहीं अंतरा नहीं,
0: अंतरा नहीं। बहुत अच्छा, आपको मिले हैं 30 अंक, क्या बात है, आप पहला श्रोता हैं जो 30 अंक प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा जी मीनाक्षी जी,
2: फिरोज खान जीतेंगे
0: नहीं, जय भाई बहुत
2: जीतेंगे,
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब देखेंगे आपके लिए, अगर आप 90s की शौकीन है ही तो कोई भी गाना आप गाइए जिस फिल्म में अविनाश वधवन जी ने काम किया है। चलिए देखते हैं।
2: आजकल लगता नहीं दिल, आजकल जब से

0: बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, क्या खेल रही हैं आप? दोनों के पास 30-30 अंक हैं, क्या बात है
1: जी। हाँ, यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बता दे, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक पर काफी लोग नंबर जुड़ चुके हैं और नंबर भी मांग रहे हैं। और माला बोयो है और साथ में माया गामडोज भी जी हैं, वो सुन रही हैं हमें। और अजमेर भी है, हेलो अजमेर आपको, हाय साविना है। चलिए जारी रखते हैं और मीनाक्षी को
0: बहुत बढ़िया। अब जय भाई की ओर बढ़ते हैं। ओके जय भाई।
2: हाँ बोला।
0: ओके चलिए, अब आप एक गाना गाइए शमशाद बेगम जी पर।
2: शमशाद बेगम पर?
0: हाँ गाइए।
2: शमशाद बेगम आपसे कहा ना?
0: हाँ जी बिल्कुल गाइए।
2: चांदनिया मन के प्यार हो साजना, हो साजना। चांदनिया मन के प्यार हो साजना, हो साजना।
0: ओके ओके कोई बात नहीं भाई जी, आपने बहुत अच्छा गाया है। आपको मिले हैं 40 अंक, क्या बात है उषा जी, ये तो बहुत बढ़िया है। 40
1: तालियां तालियां
0: तालियां जय भाई के लिए। और तालियां, ये तो टाइमर चल रहा है। चलिए मीनाक्षी जी, देखते हैं कि आप भी 40 अंक पा सकती हैं या नहीं। एक गाना आपको गाना पड़ेगा उषा जी, तब उस पर हम एक प्रश्न पूछेंगे मीनाक्षी जी से, देखते हैं।
1: चलिए, विरासत फिल्म में
0: कोई गाना गाइए। हाँ
1: कोई गाना, एक गाना गाइए
0: विरासत फिल्म से लिया गया। अरे वाह,
3: कितना मधुर है ये मिलन। सनसन अनपुरी बोले, ओके
1: हाँ
0: सनसन अनपुरवा डोले, झूमे ये धरती और गगन। क्या बात है मीनाक्षी जी, आपको भी मिले हैं 10 अंक, यानी 40 अंक दोनों के पास
1: जी। और यहाँ पर तनुजा अर्जुन है, हाय टू यू, गुड आफ्टरनून। अश्विनी खिरोदर है, हेलो। और साथ में परी जी भी जवाब दे रही है। इस फिल्म में तारे हैं बाराते, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना है।
0: हमारी श्रोता जो है बहुत बढ़िया है, बहुत तेज है जानकारी में।
1: हाँ जी।
0: जय भाई।
1: शोभा जी नमस्ते।
2: हाँ
1: भाई, जय भाई बोलो।
0: जय भाई, आपके लिए एक प्रश्न है, जरा आप गौर फरमाएं। ओके कोई भी गाना,
2: जोर से बोलिए।
0: अच्छा, एगो गाना गावो जिस फिल्म में सनी देओल बा।
2: सनी देओल पर?
0: हाँ सनी देओल पर कोई भी गाना गावो।
2: सनी देओल बा तो?
0: हाँ गावो। ओ जय भाई, कहाँ हो गल, कहाँ हो गल जय भाई। कोई बात नहीं,
2: सोचते सोचते तो वक्त हो गया।
0: कोई बात नहीं विजय, लेकिन फिर भी तुम्हारा 40 अंक मिला बा, बहुत बधाई जय भाई, धन्यवाद, फिर से मिल अब सर। ओके
2: धन्यवाद
0: भैया। हाँ तो चलिए मीनाक्षी जी, आप बताइए सनी देओल पर कोई भी गाना अगर है आपके पास तो गाइए।
3: धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान।

0: ओके?
1: बहुत अच्छा, लेकिन कंटिन्यू तो करना चाहिए था ना।
2: अगर
1: बंद हो
0: जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी, हमको तुमसे प्यार हुआ है।
1: बिल्कुल आपने सही जवाब दिया मीनाक्षी जी, और आपको मिले हैं 50 अंक। क्या बात है, आप यहीं पर रहे, देखते हैं और अगर कोई और है तो।
2: हेलो
1: हेलो हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम?
3: सबीना।
1: सबीना कहाँ से बात कर रहे हैं सबीना जी?
3: कैन यू स्पीक इंग्लिश?
2: नहीं, हिंदी।
1: हिंदी में। From where are you phone? Are you phoning us?
3: मेरा नाम Sabina.
1: Sabina, yes. From where? कहाँ से?
3: At Mayberg.
1: Mayberg. Okay, Sabina ji. Do you want to play?
3: Yeah.
1: Okay. तो कोई प्रश्न, उषा जी एक गाना आपके लिए गाएंगी, जहाँ पर से समाप्त होते हैं आपको वो अक्षर लेना है। प्लीज गाइए उषा जी, कोई भी गाना।
2: Okay.

0: जी हाँ, मिल गया तो यसे आपको गाना पड़ेगा, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में उषा जी ने गाया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो चलिए यसे कोई भी गाना गाइए सबीना जी, य कोई भी गाना यसे गाइए। य
1: नो आई लाइक I say truly I like the voice of Usha.
0: Okay. आपने फोन किया बताने के लिए कि उषा जी का की आवाज आप बेहद पसंद करते हैं। ओके कोई बात,
2: थैंक यू सो मच,
1: आई हियर हर वॉइस इन माय ईयर।
0: ओके थैंक यू सबीना जी फॉर दिस वेरी वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स।
2: चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय
0: बाय।
1: शी इज अ गुड गर्ल।
0: मीनाक्षी जी आप यहीं पर हैं, बाय माय डॉटर उन्होंने कहा।
2: बाय माय डॉटर, ओके बाय अम्मा। और यहाँ मीनाक्षी जी है, कौन है? हेलो,
0: चलिए देखते हैं दूसरी लाइन पर कौन।
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
2: नमस्ते। और हम नमस्ते कहेंगे सान को भी जो इस समय हमें देख रहे हैं। हेलो टू यू।
0: ओके आशा जी, एक तरफ, दूसरी तरफ मीनाक्षी जी।
3: अरे ये तो
0: ये तो गर्मा गर्म मुकाबला होगा अभी। अच्छा चलिए, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। आशा जी यसे कोई भी आप गाना उठाइए प्लीज।
3: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही गाना आपने गाया है और आपको मिले हैं 10 अंक। मीनाक्षी जी के पास 50 अंक है। ओके मीनाक्षी जी
4: जी,
0: ओके उन्होंने गाया हम है राही प्यार के का गाना आमिर खान और जूही चावला पर। ओके तो चलिए एक और गाना हो जाए इन दोनों पर जो ये दोनों नजर आए थे उस गाने में, एक और गाना।
4: यही फिल्म का या गाना?
0: कोई भी गाना, जरूरी नहीं कि यही फिल्म है, कोई भी गाना जहाँ पर गाइए।
4: जब से देखा तुमको यारा दिल की धर जी।

0: क्या
1: आपकी
0: बात
1: आवाज
0: है?
1: बहुत अच्छी है, वेरी नाइस,
0: बहुत अच्छा। आपको मिले हैं 60 अंक यानी 60 points। ओके आशा जी, अच्छा जब से देखा तुमको यारा, ओके कोई भी गाना जिसमें यारा हो,

0: बहुत अच्छा आशा जी, और आपको मिले हैं 20 अंक।
1: ओके,
0: ओ क्या बात, धमाल आपके लिए। चलिए आप यारा मेरे यारा। अच्छा तो ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लिया गया है, है ना? तो चलिए आपके लिए प्रश्न इस प्रकार है मीनाक्षी जी, इस फिल्म में मंदाकिनी थी या राजीव कपूर भी थे, तो कोई भी गाना आप राजीव कपूर पर गाइए। कोई भी गाना, कोई भी फिल्म, कोई भी फिल्म। अरे बाप रे बाप, गाइए गाइए।
2: आसमां से लिख दूं नाम तेरा, इस जमी से लिख दूं, यही तो
0: नाम तेरा।
2: नाम
0: बिल्कुल
2: तेरा,
0: और आपने सही गाना गाया है। मिले हैं आपको 70 points। क्या बात है
3: 70 points।
0: अब उषा जी एक अंतरा गाएंगी आशा जी के लिए। और अंतरा आप, हाँ जी, कोई भी गाना आशा जी के लिए अब गाइए प्यार से, ताकि आशा जी को पता चल जाए।
3: ओके, कौन सा अंतरा हम गाएं?
0: कोई भी अंतरा। आशा जी आप तैयार हैं?
2: कोशिश
0: कीजिए। बिल्कुल, हमारी दोनों जो श्रोता हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेल रही हैं। चलिए आशा जी आपके लिए ये अंतरा है।
3: ये जान कर बलम जी थामी है तेरी बाहें, खत्म होने नहीं दिया आपने।
0: गाइए गाइए।

0: दिल की लगी।
1: क्या बात है आशा जी, बहुत बढ़िया। मिले हैं आपको 30 अंक, 70-30। ओके, यहाँ पर लगता है उषा जी की केवल ये दोनों ही रहेंगे अब। हाँ जी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम देखते हैं मीनाक्षी जी कितने दूर तक जा सकती हैं और आशा जी कितने दूर तक जा सकती हैं।
2: कितने दूर, कितने पास।
1: बिल्कुल, तो चलिए उषा जी, आपने ये फिल्म देखी है जुनून?
2: हाँ,
1: 1992 की फिल्म है।
2: अच्छा
1: जी,
2: अच्छा।
1: चलिए अब हम देखते हैं मीनाक्षी जी को पता चलेगा जुनून का कोई भी गाना। अरे वाह, गाइए।
0: दिल के करीब है तेरा प्यार मेरा नसीब है।
1: बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, मिले हैं आपको 80 पॉइंट्स। चलिए आशा जी, आपके लिए ये गाना है अब।
0: तो क्या करें, मैं स्टॉप करूं?
1: आप तो और, नहीं,
2: और नहीं,
1: तो, और नहीं, आपको और ज्यादा आ जाना है। देखिए कितने, जब तक कि आपकी हार नहीं, ये वर्ल्ड कप कल शुरू हो रहा है ना, इसीलिए ये एक कप की तरह है।
0: मैं सोच रही हूँ और फोन कर रहे हैं।
1: नहीं, आज का जो विषय है यही है।
0: जी हाँ,
1: ओके, तो चलिए आशा जी की ओर बढ़ेंगे हम। आशा जी, आप 80s और 90s की फैन है ना? ओके, वेरी गुड। तो एक फिल्म आई थी जानबाज, कोई भी गाना।

0: किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में।
1: बिल्कुल, हर किसी को तो प्यार नहीं मिलता है, कभी कभार ढूंढना पड़ता है। आशा जी, मिले हैं आपको 40 अंक और मीनाक्षी जी को मिले हैं 40 × 2 80 अंक। लेकिन वो पहले से आई थी, है ना आशा जी?
0: ओके, पर अभी से ही कांग्रेचुलेशन मीनाक्षी जी।
1: नहीं, अब और समय है, अभी और समय है,
2: अभी तो खेल बाकी है,
1: बाकी है,
2: हो सकता है,
1: हो सकते हैं कि आप मीनाक्षी जी को पार कर लें, पता नहीं। मीनाक्षी जी, ओके, तो आशा जी के लिए एक अंतरा उषा जी ने गाया, चलिए आपके लिए एक अंतरा उषा जी लाई है, अब सुनिए और पहचानिए कोई भी गाना।
0: ओके।

0: जी याद है आपको?
1: आ रही है। अरे आयु
0: आयु, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन
1: नहीं आ
0: आपने
1: रहे।
0: बहुत अच्छा खेला हमारे साथ।
1: हाँ जी
0: बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी।
1: जी थैंक यू।
0: चलिए अब आशा
1: आप
0: जी की ओर
1: दोनों
0: बढ़े।
1: को और आशा जी को
0: ओके, बेस्ट ऑफ लक आप
1: शुभकामनाएं
0: कहेंगे।
1: देती हूँ।
0: चलिए अब आशा जी की ओर हम बढ़ेंगे।
1: ओके ओके बाय बाय।
0: ओके, तो चलिए मीनाक्षी जी को मिले हैं 80 अंक, आशा जी आप 40 अंक हैं। ओके, अभी उषा जी ने एक अंतरा गाया,
1: हाँ
0: चलिए देखते हैं आपको पता हो या नहीं।

0: टू गुड आशा जी, उषा जी उन्होंने सही गाया।
1: हाँ सही है।
0: अरे वो क्या बात है। चलिए आशा जी को मिले हैं 50 अंक, जब तक कि कोई और नहीं आ जाता आप ही पर हम रहेंगे अभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। चलिए हम 90s की ओर बढ़ते हैं अब। 90s में एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था प्यार का तराना। हाँ जी, कोई भी गाना आप गाइए फिल्म प्यार का तराना से।

0: क्या बात है आशा जी, बहुत ही बढ़िया, आपको मिले हैं 60 points। और दूसरी लाइन पर देखते हैं उषा जी कौन है, दूसरी लाइन पर कोई आया है?
1: दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो,
0: आ गए हैं वो, चलिए। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते उदय भाई।
1: नमस्ते, और हम
2: कंपटीशन टफ था दोनों पर, लेकिन मीनाक्षी जी कैसे कहते हैं
0: अंत में,
1: वो चली गई, और उदय भाई, उदय भाई
2: शायद वो रोकना चाहती थी।
0: कोई बात नहीं, लेकिन आप
2: लेकिन
0: आ गए हैं,
2: बहुत बधाई।
0: ओके, लेकिन फिर भी
3: नमस्ते उदय
1: जी। उदय उदय भाई ये सुनो, यहाँ पर और लोग हमें देख रहे हैं फ्रॉम लाइव टिकटॉक, तो उनको हम हाय कहते हैं। इंदिरा माधव सिंह है, और वो है क्या बोलते हैं उनको, रिया अनथ है। धन्यवाद आप लोगों को, और ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा। नंबर है 4028085, अगर कोई लिख सकता है यहाँ पर तो अच्छा होगा हमारे लिए।
0: ओके, कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं उदय भाई की ओर। ओके, आशा जी को मिले हैं 60 points, अभी तक मीनाक्षी जी पहले स्थान पर हैं। उदय भाई, कोई भी गाना आप गाइए, एक गाना है जो रफी साहब ने गाया है, और वो गाना शुरू होता है वो जब याद। कोई भी गाना जो वो जब याद से शुरू होता है, रफी साहब का गाना गाइए।
2: वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गम जिंदगी के, और आगे मालूम नहीं।
0: कोई बात नहीं,

0: बहुत ही प्यारा
1: बहुत
0: गाना है,
1: सा गाना है। उदय भाई आपको मिले हैं पहले 10 अंक। ओके आशा जी यहीं पर हैं? ओके ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने गया वो जब याद आई है ना, तो कोई भी गाना आप गाए जिस गाने में वो शब्द है जब,

0: जब
1: हाँ जी
0: जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। LOVE, LOVE, LOVE
1: क्या बात है, लव LOVE। आशा जी मिले हैं आपको 70 points, क्या बात है। उदय भाई अब आपकी बारी है,

0: दासिता
1: क्या
0: तेरी
1: बात
0: ये
1: है।
0: जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दासिता तेरी ये जिंदगी।
1: बहुत अच्छा उदय भाई, किशोर दा उस फिल्म में
0: फिल्म
1: एक्टर
0: शरारत
1: थे
0: है।
1: शरारत, और रफ़ी साहब ने
0: हाँ
1: उनके लिए गाया था। क्या बात है, आपको मिले हैं 20 अंक। तो चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है आशा जी,
0: हाँ जी,
1: देखते हैं कि आप खरी उतरे उतरेंगी या नहीं। एक फिल्म आई थी सलमान खान और स्नेहा उलल, क्या वा की फिल्म थी वो, स्नेहा उलल और सलमान खान, फिल्म थी लकी। हाँ
0: लकी।
1: जी, कोई भी गाना इस
0: हाय रम रमा, हाय मोरे रामा, दिल में मचा है क्यों कोई हंगामा। आगे याद नहीं,
1: क्या बात है आशा जी, बहुत ही बढ़िया।
0: कोई यहाँ पर हमें
1: और
0: व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं तो उनको बता दे 5251-7005।
1: 7705, बहुत अच्छा। और आशा जी को मिले हैं 80 अंक, यानी मीनाक्षी जी की तरह आप एग्जेक्टो चली आई हैं। और क्या कहें, अब तो समय हो गया, एक अंतिम गाना रहेगा उदय भाई के की ओर अब। ओके उदय भाई, क्या करें, आपको 30 अंक प्राप्त होने का आपको मौका है अभी। तो चलिए आपके लिए एक गाना उषा जी गाएंगी और आपको अक्षर लेना है, कोई भी गाना आप गा दीजिए उषा जी उनके लिए,
0: कोई भी गाना।
1: कोई भी गाना, अगर आप जो दिल चाहे कोई भी गाना गाइए।

0: गाना कौन सा है?
1: ओके, अकेले हम अकेले तुम, कोई बात नहीं, कोई नहीं तो हंसे कोई गाना गाइए तब, हंसे। हाँ जी, हंसे।
0: यहाँ पर टिकटॉक पर सब सही सही जवाब दे रहे हैं।
1: कोई भी गाना हंसे आप शुरू कर सकते हैं।
2: नहीं,
1: हंसे
2: ना।
1: हाँ गाइए, गाइए।
0: सही कहा आपने, हंसते हंसते गाना है इस पर,
1: गाइए।
2: हंसते हंसते,
1: हाँ गाइए।
0: देखो,
2: बच्चाई रसते जिंदगी यूं ही बदलती रहे, कभी खुशी में बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
1: धन्यवाद आशा जी, आपने हाँ जी आपने मदद कर दी और उदय भाई को मिल गए 30 अंक। हाँ जी,
0: चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों,
1: धन्यवाद आप दोनों को, बाय
0: बाय।
1: आशा जी बहुत बधाई हो आपको, आपको भी मिले हैं 80 अंक, बाय
0: बाय
1: बाय बाय। तो ये थी आशा जी, मिले हैं 80 अंक और मीनाक्षी जी को भी मिले हैं 80 अंक। और इसी के साथ अंताक्षरी प्रोग्राम संपन्न हो चला। जल्दी जल्दी कोई भी आप हमारे
0: शुरुआत से गाना गाए थे हमने, और इसी से हम
1: अंतरा गाएंगे,
0: अंतरा गाएंगे
1: गाइए।
0: पंच

0: क्या बात है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। बहुत ही सुंदर सा गाना आपने बहुत ही मधुर आवाज में गाया, और ऐसे ही आप अपने श्रोताओं के लिए गाए। और लेकिन आज आपको टिकटॉक लाइव उन्होंने देखा परफॉर्म करते हुए
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा। तो चलिए उषा जी की इसी मधुर आवाज के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे।
1: ओके।
0: और आज का जो विषय रहा बहुत ही क्या कहें, अनोखा रहा, है ना
1: जी। और यहाँ पर अपने सभी लोग जो हमें देख रहे हैं फ्रॉम टिकटॉक, उनको भी हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय,
0: नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि आपको,
0: फिर से मुलाकात होगी, बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूरोपीय संघ और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के 4 देशों मॉरिशस, मादागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर आज बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए। गाड़ी चलाते हुए अब अपने मोबाइल फोन पर मात्र एक नज़र डालने से भी आपको पेनल्टी पॉइंट्स लग सकते हैं। अब से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ में फोन

0: लेना एक दंडनीय अपराध है। स्टीवन मुटुकोपेन मामले में आजसू के पूर्व ऑफिसर कोविलेन संगहन पीले को आज मोका की अदालत में पेश किया गया। उस पर करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स के आयात की कथित साजिश में शामिल होने का शक है, जिसकी कीमत करीब 200 मिलियन रुपए की बताई जाती है। विदेश स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरा करके इतिहास रचा। इससे भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपीय संघ और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मारागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस के बीच कायम इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सिलसिले में चली बातचीत के निष्कर्षों पर आज बालाक्लावा में हस्ताक्षर किए गए। व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों संगठनों के बीच 6 सालों तक बातचीत के सकारात्मक नतीजे के रूप में ये हस्ताक्षर किए गए। करुणा लालू।
1: 6 वर्षों की बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया गया। 10 जून 2026 को बालाक्लावा में यूरोपीय संघ तथा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के चार देशों मॉरिशस, मारागास्कर, सेशल्स और यूनियन ऑफ कोमोरो के प्रतिनिधियों ने एक उन्नत आर्थिक साझेदारी समझौते यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर वार्ताओं के सफल समापन की घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना, निवेश को आकर्षित करना और साझेदारी को और भी मजबूत बनाना है। मॉरिशस के लिए ये समझौता निर्यातकों, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। साथ ही 450 मिलियन उपभोक्ता वाले यूरोपीय बाजार तक उसकी विशेष पहुँच को और मजबूत करेगा। ब्रसेल्स की ओर से समझौते को यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। यूरोपीय आयोग का मानना है कि ये समझौता साझेदार देशों में रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा। व्यापार के अलावा ये समझौता सार्वजनिक खरीद, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल करता है। क्षेत्र के कई मंत्रियों की उपस्थिति इस साझेदारी के महत्व को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक लचीला बनाना है। मॉरिशस का निजी क्षेत्र भी इस विकास पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मानना है कि ये समझौता नए बाजारों तक पहुँच बनाने और अधिक मूल्यवर्धित क्षेत्रों में विस्तार का महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। ये उन्नत समझौता भविष्य में यूरोपीय संघ और सब सहारा अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक नए मानक के रूप में देखा जा रहा है। हस्ताक्षर और अनुमोदन की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यूरोपीय आयोग के अनुसार इसके 2027 के अंत तक लागू होने की संभावना है।
0: गाड़ी चलाते हुए अब अपने मोबाइल फ़ोन पर एकमात्र नज़र डालने से भी आपको पेनल्टी पॉइंट्स लग सकते हैं। जी हाँ, आपसे गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ में फ़ोन लेना एक दंडनीय अपराध है। ये इन सब के बीच क्या जीपीएस डिवाइस या हैंड्स फ्री के इस्तेमाल और आपातकालीन परिस्थितियों में फ़ोन के प्रयोग की अनुमति है? इस पर परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कई सवालों के स्पष्टीकरण दिए। इस पर रिपोर्ट हम कुछ ही देर में प्रसारित करेंगे। तो नए कानून पर रिपोर्ट तैयार है, सुनिए।
1: 10 जून की मध्यरात्रि से यदि आप कार अथवा मोटरसाइकिल चलाते वक्त हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए पाए गए तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर 5 अंक काटे जाएंगे। यदि आप इस उल्लंघन को चुनौती देते हैं और बाद में अदालत में आपको दोषी पाया जाता है तो 10 अंक काटे जाएंगे।
2: Nous montrer les élèves, c'est tout vin mouton. Mais comment vous êtes sorti de venir, c'est parce qu'il n'y a aucune instruction.
3: Comment tu as conseillé, c'est un portable, se contrôler avec lui. Et quand passe ce téléphone-là, se contrôler, il a regardé qui est le portable qui est là. Et quand causé, c'est vraiment portable, vous avez beaucoup dangereux.
4: Est-ce que je peux causer que mon passage? Après ça, pourquoi je peux mettre au téléphone? Nous avons un véhicule,

0: Modène qui est un ben building system. Normalement, en Europe, en Angleterre, illégal. Mais c'est pourquoi, sinon, nous utilisons pêche ban voiture pareil, vin sur le marché local.
1: अब सब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हैंड्स फ्री किट, ब्लूटूथ डिवाइस, स्टीयरिंग व्हील में लगे कंट्रोल या अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। भले ही आपके लाइसेंस पर अंक न काटे जाए, कुछ गैजेट्स और तकनीकों का उपयोग करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान 15 साल से अधिक पुराने कानून में पहले से मौजूद हैं।
2: रेगुलेशन रोड ट्रैफिक Act Construction and Use of Vehicle Regulation de 2010, Regulation 90, qui lit at the material time, ça veut dire 16 ans de cela, qui focus low la construction de bande véhicule, ça veut dire ce système de freinage, ce système de sassis, ce système d'échappement, etc. Mais à cette époque-là, je n'inclus le système de communication là-dedans, et quand on get les audits, tout ça qui appelle, qui nous est là comme évolution technologique dans la 16 ans qui vient traverser là, il y inclut là-dedans. La loi, c'est la loi. C'est pour cela qu'ils vont dire qu'il y a une petite confusion qui finit au cœur à partir de sa implémentation devant un amendement pour pénalité pour le système qui est là. Quelque part, il y a un côté positif là-dedans parce qu'il nous permet de revoir sa régulation qui datait de 16 ans là et pour aller lier avec le développement qui finit dans la voiture à ce moment-là.
1: क्या हाथ में मोबाइल रखने के नियम में कोई अपवाद भी हैं? उदाहरण के लिए डिलीवरी कर्मियों या टैक्सी चालकों के लिए जिनका काम काफ़ी हद तक मोबाइल पर निर्भर करता है, या फिर यदि आप किसी बीमार को ले जा रहे हों और डॉक्टर या परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन करना आवश्यक हो।
2: While driving a motor vehicle, no subject to paragraph, no person shall, while driving a motor vehicle, use a handheld or hand-free microphone or telephone handset to answer or make a call, no matter how urgent the call is.
1: अब तक पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत जारी 6,450 चालानों में से 1,113 ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल से संबंधित हैं, यानी कि 17% तक।
2: Quand nous ne faisons pas permis à point, nous pas augmenter l'amende du tout. Beaucoup de monde peut dire qu'il nous peut faire ça pour renflouer la caisse de l'État. Oh, c'est pas vrai, parce qu'au lieu qu'il nous peut prendre casse, qu'il nous peut prendre en plus, tout ne reste pareil, nous peut donner point.
1: फिलहाल यदि आप अपने लाइसेंस पर अंक कटने से बचना चाहते हैं, तो वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बचें।
3: स्टीवन उटुकॉपेन मामले में एफसीसी के जांच में नया घटनाक्रम सामने आए हैं। पिछले 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए आजसू के एक पूर्व ऑफिसर कोविलेन संगहन पीले को इस नए मामले में आज मुका की अदालत में पेश किया गया। 37 वर्षीय इस व्यक्ति पर करीब 11 किलो सिंथेटिक ड्रग्स के आयात की कथित साजिश में शामिल होने का शक किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 200 मिलियन रुपये की बताई जाती है। जांचकर्ता ने उसकी जमानत पर रिहाई को लेकर आपत्ति जताई। विधि मासीपुरन
4: 37 वर्षीय कोविलेन संगहन पीले मर्दी, जो पहले आजसू में तैनात थे, को मंगलवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एफसीसी द्वारा साजिश के एक अस्थायी आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये मामला एफसीसी की उन जांचों की निरंतरता में है, जिनके परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2025 को ड्रग तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में स्टीवन मुतुकोपन की गिरफ्तारी हुई थी। एफसीसी के अनुसार इस जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन्स के विश्लेषण से ऐसे संवाद सामने आए हैं, जिनसे इस संदिग्ध और आजसू के अन्य पूर्व या वर्तमान सदस्यों के बीच एक साजिश होने का अंदेशा है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस नेटवर्क ने मॉरिशस में लगभग 11 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स के आयात को आसान बनाने की कोशिश की थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 200 मिलियन रुपए है। इस बुधवार को मुका अदालत में पेश किए जाने पर कोविलेन संगहन पीले मर्दे को अपनी जमानत के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ा। उसे 17 जून तक फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसकी जमानत पर रिहाई की याचिका पर अदालत द्वारा आगामी 18 जून को विचार किया जाएगा।
3: बजट 2026-2027 की प्रस्तुति में अब मात्र 9 दिन रह गए हैं। गवर्नमेंट हाउस में तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। बजट सुदृढ़ करने, आर्थिक सुधार लाने और अंतिम निर्णय लेने के लिए टीमें नई अनिश्चितताओं से भरे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में इस विशेष रूप से जटिल कार्य को अंत

0: अंतिम रूप देने के लिए अथक प्रयास कर रही है विधि मासिपुरम।
1: कुछ ही दिनों में सरकार राष्ट्रसभा में अपना राष्ट्रीय बजट 2026-2027 पेश करेगी। वित्त मंत्रालय में अब अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता के साथ परामर्श समाप्त हो चुके हैं। प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है और बजट प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा जारी है। आगामी वित्तीय वर्ष के हर एक विवरण को सावधानीपूर्वक अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय से सीनियर एडवाइजर एरिक निंग पिंग चन बताते हैं, कार्य सक्रिय है। वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच एक पॉलिसी डायलॉग है। निजी सेक्टरों के साथ परामर्श किए जा चुके हैं और जनता ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। कार्यों में तेजी लाई जा रही है। बजट भाषण को तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अधिकारियों को जनता की उम्मीदों को पूरा करने के साथ साथ कई आर्थिक और वित्तीय बाधाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। पिछले साल की तुलना में दो कारक उभर कर सामने आए हैं जो थोड़ा सा भिन्न है, शायद पिछले साल की तुलना में थोड़ा मुश्किल भी। पिछले साल शागो समझौते को 10 बिलियन रुपए को फाइनलाइज करने पर निर्भर कर रहे थे और उसे बजट में शामिल किया गया था, लेकिन ये पैसा नहीं मिला। अब इस आगामी बजट में शागोस को शामिल भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल ईरान युद्ध नहीं था, फिर भी फिस्कल कंसोलिडेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बजट घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करना, साथ ही वृद्धि भी लानी चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा भी आवश्यक है।
2: Oublier évidemment la protection sociale et là nous avons un peu plus de ciblage pour être capable mieux protéger les plus vulnérables.
1: इसके साथ ही वित्त मंत्रालय बजट प्रक्रिया की सफलता के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने और आयातित उत्पादों पर निर्भरता घटाने के महत्व पर जोर देता है, ताकि देश के आयात बिल को कम करके व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जा सके और मॉरिशस के रुपए की स्थिरता में योगदान दिया जा सके। इस महत्वपूर्ण बजट भाषण का समय आगामी शुक्रवार 19 जून को शाम 5 बजे राष्ट्रसभा में तय किया गया है, जो कि एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण आर्थिक संदर्भ में काफी प्रतीक्षित बजट है।
0: मॉरिशस अब्सा लिमिटेड ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ये वरिष्ठ बैंकिंग संस्था अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के बीच निवेश, व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजिक पुल की भूमिका निभाती है। इस बात की पुष्टि ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केनी फिला ने आज की। उन्होंने ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टल में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की। हर विश्व कप के दौरान जहां फुटबॉल प्रेमियों में अपनी पसंदीदा टीमों के लिए उत्साह होता है, वहीं कुछ लोग स्टिकर्स जमा करने विश्व कप का आनंद जीते हैं। कल 11 जून से फुटबॉल का महोत्सव शुरू हो रहा है। टीवी पर मैचों के इंतजार के साथ बड़े छोटे सभी फैंस खिलाड़ियों के स्टिकर्स जमा करके अपने एल्बम भरने में लगे हुए हैं। विधि मासिपुरम।
1: एक तरफ स्टिकर्स हैं तो दूसरी तरफ गायब नंबरों की जांच करने के लिए एक कागज या एक एप्लीकेशन। यहाँ अदला बदली बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। आशनी अपने बच्चों के शौक को साझा करने के लिए इन स्टिकर्स को इकट्ठा करती हैं।
3: Oui, les garçons, quand depuis que j'ai commencé en plus à livre là, je suis vraiment excitée tous les soirs. Maman, est-ce que tu as eu les cartes? Maman, qu'est-ce qu'on manque? Et c'est vraiment, vraiment un joli plaisir.
1: सोशल मीडिया पर बने इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य हर किसी को अपना एल्बम पूरा करने की सुविधा देना है।
4: Fini bout 2026 là, mais nous peut continuer une zone pour un camarade soit là le Ben Swapping Zone. Il y a une de mes camarades pour compléter tout album petit à petit.
5: Longtemps ici comme ça, batch tout ça, c'est comme ça 5 pour 1, 10 pour 1, mais non, aujourd'hui non. Mais il y a un gars son timin là, il veut marquer Ronaldo. Pour terminer ce livre, il a juste des stickers duplicate.
1: मॉरिशस में वर्ल्ड कप के इन एल्बम्स के लिए क्रेज 1982 से चली आ रही है, जब स्पेन में विश्व कप हुआ था।
6: स्पेन 1982
1: तब से ये उत्साह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब भी हम इन किताबों को खोलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।
7: À part pour Coupe du Monde, est-ce qu'il vous a refait avant le magazine? Quelquefois, oui, mon frère, vraiment un bon souvenir.

0: Nice, façon de dire. Ouais, assez souvent, mon fait livre. Je garde bien dans ma bibliothèque pour voir qu'il y a en bonne condition ces affaires.
1: इस बड़े खेल आयोजन के आगाज में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ लोग अभी भी सभी स्टिकर्स इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।
2: नाम मैं 200 कोड पर फिनिश लिव बिलान पे रोडे 100 से बस मैंने 300 डूब पॉल लेला इसी आज आज आज मैं 100 है पे लेला मैं रिप्लेस मैं गेटे सब जन नू पे रिप्लेस लिव ला दे मैडम एक मैं
1: वहीं कुछ लोग इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं।
3: डिसेमेंट पर कंप्लीटली et quand vous avez une photo, c'était un joueur gagnant, Jordan Ayew.
4: Quel est ce sentiment qui anime toi là quand tu finis ta livre là?
5: Un soulagement et un contentement aussi.
1: Karib 9000 rupaye ki lagat ke bavjood विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले इस कलेक्शन को पूरा करना प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और गर्व का क्षण बना हुआ है।
6: श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरा करके इतिहास रचा है। इससे वे भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पार किया है। 12 सालों में भारत को प्रगति की राह पर अग्रसर करने के लिए कैबिनेट की मोदी जी की ने उन्हें बधाइयां दी। याचना मिश्रा।
7: बारह साल भारत के विकास के नाम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर से उन्हें इस बात के लिए बधाइयां दी जा रही हैं। साल 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने 2019 और 2024 के आम चुनावों में भी लगातार जीत हासिल की। इस तरह वे लगातार जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए देश का नेतृत्व करने वाले सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा बटोरी है। ऊर्जा सुधार, जल संचालन, आर्थिक विकास, मूल ढांचा, एक दीर्घकालिक विजन जो भारत को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। भूमि से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय करने वाले नए भारत का विजन जिसके लिए अब भी कार्य जारी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। अब ये उपलब्धि श्री नरेंद्र मोदी के नाम भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक नए रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो चुका है।

और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज रात को और कल सवेरे के दौरान देश के उत्तर और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। कल दोपहर बाद के मौसम की बात करें तो देश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 18 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:37 पर हो गया है। सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:41 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: ब्रांच रोड मोनाको में 62 साल के 62 years old के तिलक राज सीताराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सीवान मोन्टो के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान मोनाको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्ड्रीमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। रॉयल रोड कटकुकू में 50 साल के 50 years old के अजय लुबिन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जान के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके ससुर सूरज देव हीरालाल के मकान कटकुकू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। कॉलिव्यू ओकुले में 71 साल की 71 years old की धनवंती मुगन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुंजल, लोग उन्हें प्रेमिला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उन्हीं के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भ्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। एवेन्यू कुसियाल पलमा कटरोबोन में 75 years old के रामजी टुकाराम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किसना के नाम से अधिक जानते थे। वे पहले CNT में काम करते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे कटरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयल रोड पंचवती रिविया जुरांपोर में 70 साल के 70 years old के राज जीबोसिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुरेश के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी सरोदा चिबोसिया के मकान रिविया जुरांपोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट डे लास्को की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। इंग्लैंड में 79 years old की देवी एरामा अपादू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम शेनिगाडू, लोग उन्हें देवी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दोपहर बाद 2 बजे इंग्लैंड में ही उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं। अंग्रेजी भाषा में नेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो निर्धारित था गुरुवार 11 जून 2026 सुबह 10 बजे सेज कॉन्स्टेंटिन थिएटर वाकवा में टेक्निकल कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है।
1: NBC Radio 24 hours a day.
2: रेडियो मार्शल्स पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कम्युनिके सुनिए। कैटबोन के रहने वालों को खासकर एवेन्यू विक्टोरिया कुछ एवेन्यू विक्टोरिया के कुछ हिस्से इन एवेन्यू डेपिने एवेन्यू नाज और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरा कम्युनिके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही। मोसेलमा ग्रीन क्रीक फिकोफ्लैक के निवासियों को खासकर रू जु क्वें डे मिया एवेन्यू जु को डे गार्ड Rue de l'Île Plate, Rue de l'Île Gabriel और Residence Blue Rock के निवासियों को सूचित किया जा रहा है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। तीसरा कम्युनिके सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। कॉन्डस वाक्वा रोड खासकर इन गलियों के निवासियों को जो है लाल बहादुर शास्त्री रोड और आसपास के निवासियों को सूचित किया

बताया जाता है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। और एक कम्युनिके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से लेसिया और सेबास्टोपोल के इन गलियों के निवासियों को, जो है विलाज लेसिया, सेबास्टोपोल और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल गुरुवार 11 जून 2026 को दिन के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो उन सभी जगहों को बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थे कम्युनिके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वराल वेदिका मन दैनंदिन सायंत्रपु तेलुगु कार्यक्रमम।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त सुनने वालों को हमारा साथ

दर प्रणाम कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि विश्वास से भरा हुआ मन भय से मुक्त और शांति से युक्त होता है। तो चलिए इसी सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोताओं, ईश्वर पर विश्वास का अर्थ केवल चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके निर्णयों को स्वीकार करना भी है। सच्चा विश्वास मन को स्थिरता देता है और हमें प्रेम, करुणा तथा सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित भी करता है। तो चलिए भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

बजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम जारी है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। श्रोताओं, विश्वास अध्यात्म का वह आधार है जिस पर श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक

शांति का भवन खड़ा होता है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है तो वह हर परिस्थिति में धैर्य और आशा बनाए रखना सीख जाता है। विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ स्थायी नहीं है और हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है।

श्रोताओं, जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो यही विश्वास हमें यह संदेश देता है कि चाहे राह कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा और अपने सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक डोमिनिक को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी रहमत बहुत वसी है. अल्लाह हर फिक्र परेशानी से बड़ा है. अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. उसकी बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है.

ऐ अल्लाह, ऐ नहायत रहम करने वाले, ऐ बहुत मेहरबान, हमारे दिलों पर अपनी तरफ से इत्मीनान नाजिल फरमा और हमारी रूहों को मोहब्बत, नूर, रज़ा और यकीन से भर दे। हमसे दिलों की थकन, गमों का बोझ और सीनों की तंगी दूर फरमा और इस रात को हमारे लिए राहत, दिल का सुकून, नफ्स की हिदायत और रास्ते की रोशनी का ज़रिया बना। आमीन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3।
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: सब संगतियालो के अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में तुमने की देखा था MBC रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सबके के स्वागत बा। आज बुधवार की रात, बुधवार 10 जून साल 2026, अभी से लेकर रात के 11 बजे ले चलो के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। नाचब सा, गावब सा, कमरवा डुलावब सा, खूब धमाल हो, हंगामा और मस्ती। और प्रोग्राम में ढेर कुछ बा है, ढेर कुछ बा जोई जोई चीज जैसा हो जाते टेलीफोन करे कर सको दे क्या, फिर हमने के टिकटॉक पेज पर अपन अपन कमेंट्स भेजा, अपन SMS भेजा और बोलिए थोड़ा कौन गीत मन करता सुने के। तो चला भोजपुरी तड़का प्रोग्राम की शुरुआत कर जलसा के गीत के साथ, जलसा बा अंजू की आवाज़ में।
5: Ladies and gentlemen, namaskar, the Bhojpuri

वाह, ये मैजिक नहीं था कौन सी है। रेडियो में कितना बदलाव हुआ, और आजकल रेडियो से कहते हुए देखे भी, आगे के ज़माने में खाली रेडियो सुना था, सब रेडियो देखा था, उससे टिकटॉक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या बात है क्या बात है। और अगला गाना वो बहुत ही जोरी गीत था, और लंगरो भाग कर, बाप रे बाप है, लंगरो कहाँ भागता है। गीत गहरे हवन अविनाश रामदायन, गीत रावत से नीतीश बुलाकी, थापा, हीरा लक्ष्मण, और ढेर कोई हमने की शादी होता है टिकटॉक पेज पर और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर, हेमा पीताम्बो, फिर नवीन जी, साथ में निर्मल, प्रतिमा, चेष्णा, केशावदीन, एम डी दुलाल, फिर निर्मला, साथ में चेष्णा, बंधु अवनी, प्रीति, रुखसान, श्वेता, और फिर आश, काजू, जिमी, जॉर्डन, भारती, अनवर, बिरबल, अनिष्ठा, मीला, अमृता, अमृता दुखित, ईसा, गौतम, मीनूष, परवाज, फदीरा, बराल, पुकी, नेहा, जाइना, कुमार, मागर, सदूद, जॉर्डन, अनिश्वरी, राहुल, येष्णा, विद्यानी सिचन, और फिर आरती, वेदिका बोलक, सन, मनीषा, एलेक्स अहमदा, हेलो आरती, तो सब श्रोता लोग कहते रही। अगला गाना लंगरो भागल, अब लंगरो भागता का है, इतना नहीं जानते हैं, पर बड़ा जोर भागता, देखिए ऐसा भाग के कहाँ जा रहा,

जिन दिन की तोरा बेसब्री से इंतजार रहल उ दिन चलल। कल तारीख को चेक, कल है 11 जून, यानी कि कल से शुरू होता वर्ल्ड कप फीफा 2026। आहा, सब कोई बड़ा तबला बा, एक्साइटेड बा ये सब मैच देखे खातिर। तो ये कल से शुरू होता 11 जून से और 19 जुलाई रे चली वर्ल्ड कप फीफा। एक में 48 टीम रे, 48 देश रही कर में भाग ले कहाँ छुट, और देखा सब के कर जीत होला। कोई बता अंग्रेजिया के जीत हो, कोई बता लाल माए के, कोई बता ला फ्रांस के, ये तो समय ही बताए भैया कि किकर जीत हो। पर छोटा से लेके बड़ा ले सब कोई एक्साइटेड बा कि है वर्ल्ड कप फीफा कैसे रही। और सुना था कि नोरा फतेही काल बड़ा जोर नाची है ऑफिशियल लॉन्चिंग में, और बेनाबो और शकीरा गीतवा गई दिन से डाई डाई। तो एमबीसी रेडियो टीवी से जुड़ल रही है, और जो मार्च में कोनो कोनो मार्च जो खेलिए जरूर तो सब बचा एमबीसी टीवी पर देखे। तो बेशक वर्ल्ड कप फीफा के लिए हो जाइए तैयार, कल से शुरू होता 11 जून से 19 जुलाई ले। तो चला बगला गीत सुनब जा, ले ले ले ले मजा मजा गीत। तो चलाती से प्रतिमा और दीना खातिर, वीना को गोस्वामी और सब परिवार के नाम, विश्वानी बाबूला लाहौजा से, सुरमा दुखी थवन मेबर्ग से, और साथ में हरी गीत चलावत इस संगीता अमीरन के नाम, आप रहे लाहौजा बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत तोहरो नाम। रे गीत चलाते इस बेबी, फिर शीनी बेबी, यज रिया माफी विषय, उमा दर्शन सुरेखा, फिर एम सन वीर किरण फिदू नुरेजा योवाना कवि विमा चतुर्धा विद्यानंद लखी, और जितना कोई अभी हमने के साथ देवा था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर।

0: है गीत लो के नाम कविता रूप नारा है गीत और नाम ले ले ले ले मजा मजा गाले गाले मस्ती में
1: ले ले ले ले मजा मजा कर ले कर...

लिली मजा लिली लिली मजा लिली मजा लेते रहिए और उनके साथ देते रहिए रात के 11 बजे तक। तो लोग कहानी सुना आपको, लालची आदमी तो बहुत साल पहले वो गांव में वो बहुत गरीब आदमी रहा था। उनका शादी नहीं हो रहा, लड़का फैका का नहीं रहा, तो अकेले रहा था। बड़ी गरीब रहा और बड़ी पारिश आदमी, काम उम नहीं खोज करे के। तो एक दिन का जी ने कहाँ से वो मुर्गी उड़ के कर जौदे में तरल, तो मुर्गिया के खूब खेलक होके खाई उई के दिलक। अब मुर्गी जो है रोज के अंडा देवा तल, पर सोचने वाली बात है कि मुर्गी रोज के सोना के एगो अंडा देवे। लालची आदमी जब देखलक मुर्गी सोना के अंडा देवता, तब ओकर मन में लालच भराल। अब एक सेमेन, दू सेमेन, तीन सेमेन, एक महीना हो गल, दू महीना हो गल। तो एक दिन है लालची आदमी का सोचता, सोचता है मुर्गी के पेट में सोना के अंडा बा, अगर का पेट फारब था हमके सब सोना के अंडा मिली और ये सब सोना के अंडा बेच के हम धनवान बन जा। तो बुर्बक का करलक, रात के बखत सब कोई सुतर बा, तो गल पुलाई में मुर्गी के पकड़लक, पकड़ के मुर्गी के पेट फाड़ दिलक। अब पेट फाड़ दिलक तो बेचारी मुर्गी मर गल, प्लस न सोना के अंडा मिलल न कुछ मिलल। उस दिन से वो आदमी आर गरीब हो गल। तो कहानी की सीख की है कि जिंदगी में कबो लालच नहीं छाना की, गुमो नहीं छा बने की। देखा लालच के को नतीजा हो, लालच के हमेशा बुरा नतीजा होला। सोना अंडा दे वाला मुर्गी, वो मुर्गी के पेट फाड़ दिलक, सोचल थे बना अंडा मिली सोना के, पर न मुर्गी बचल न अंडा मिलल। तो तू ऐसे नहीं करिया है तो कमन इंसान हो। अगला गीत है दिन तना दिन था, राजीव मंगर की गावल है। गीत चलाती से उमा मंगर की ओर से, उमा दर्शन की ओर से, एसोसिएशन ऑफ हिंदी भोजपुरी धार्मिक सभा बोबासे बासे रोड काटो बोर्ड के सब सदस्य खातिर। फिर निधि खातिर गीत चली, शबनीज, रीता कालू, फिर है गीत पूनम गोपाल, अलीमा दुमन, रोहित यादव, और फिर है गीत चली सब जानकी प्रसाद परिवार के नाम। और राइट रोबिन जी, और जो रोबिन है गीत औरों खातिर, शमीरा है गीत औरों नाम, बाबू यादव, रेखा, फिर है गीत चली अमीरिया, बीना, उर्वशी, शमीमा, नलिनी, गुडू, मधु, करण, शीतल, रोबी है गीत और खातिर, इंद्रानी है गीत और नाम, और आश आशी है गीत और खातिर, और शीतल रोबी बहुत प्यार से हमने देखा था और हमने सुना था। कहानी और अब बढ़िए पसीनार है लालची आदमी की कहानी। तो चल अब गीत सुनब जा, दिन ता ना ना ना दिन ता।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: रात के 9:32 हुआ था। दूसरा तो और पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, जहाँ पर नाची लासा, गावी लासा, कमरवा डुलाई लासा और तिलों के टेलीफोन के जरिए ही प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा गीत चुन तुरा मंगता सुने के हमने चलाई लासा, पर साथ में ढेर कुछ थोड़ा से बांट ही लासा भी, ढेर कुछ तैयार करके अन नहीं सर। अब अगला जो चीज़ बताया आप सर, वो एगो एगो फ्रेंच लेखक को नाम भा जॉ बाचिस मोलिए, एगो फ्रेंच लेखक और वो खड़ा बोल रहे इफो मोजे पू वीव इनोबा वी पू मोजे, खान पान के बारे में कि हमने कि इंसान के चाय ना खाए कि

जीवित रह के नहीं कि जीवित रह के चहला खाए के ते एगो मिकर में एगो थी चहला खाए के भोजन जो ना जरूरी है ताकि हमनी सगब से जिए भोजन का आपसे शक्ति मिली ऊर्जा मिली तो काम करब सर अब नहीं कि ढेर कोई खाली दिन रात काम नहीं करे रहा खाली खाते रहे रह ई बुरी बात है चहला खाए के खातिर मोलिया बोलक बा इफो मोजे पूवी इनो बाबी पू मोजे बहुत ही आसान है सबके बतौर जान जाए तो ये दुनिया एकदम चोरी हो जाएगी और जब खान पान की बात करते सर तो पीमा के याद चल पिटी पिटी पीमा गो पीमा बा पिटी पिटी पीमा बा पिटी पीमा गो पीमा पीमा कारी सब कहते पीमा बा हर जन पिटी पीमा रहेला रोड्रिक जेबा वहाँ के पिटी पीमा खाई बा ऊ लाला बढ़िए बढ़िए बढ़िए तीता रहे पर ढेर कोई खुशिया तीता खाए के का कर बैसन में चल अगला गीत चला बब जा पिथी पिथी पीमा बा गीत मिस्टर इदू मिस्टर गंगू और जे फैमिली के सब सदस्य के नाम नटराज रामकुरन नोबेल फोन सेवन कल भाई अरुण कल बहन कल माता पिता और सब परिवार के लिए और कविता अनु हमने के साथ जुड़ल हवन गीत और नाम चलावत ऐसा बलराम गीत और खातिर तो हर सब परिवार के नाम यासीन गीत और नाम नुर्मिला सारा करुणा रमजात पेरिस फ्रांस ढेर कोई हमने के अभी देखा था सुना था श्रेष्ठा और हरिराम बैर सुरेश महातो है गीत और खातिर भवी भावना भैरव है गीत और नाम विदुरा कृपा अंसुया है गीत और खातिर फरीदा और है गीत चलावब स वीना राम दुनिया खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ मियान वकार गीतोरो खातिर आयरा है गीतोरो नाम और सुना के नाम ये गीत चली चला पीती पीती पीमा ये गीत सुनम छा

पीमा देखेर न पीमा के अचार बनेला पीमा के चटनी बनेला पीमा तरकारी में इस्तेमाल करेला सब पीमा के ढेर प्रयोग बा है पर पीमा उतना अच्छा नहीं बा ढेर तीता पीमा खाई बा तो पेट गड़बड़ा जरा पीमा जीस खाइया काहे छा इतना खाई के और अब हमने बात कर सर कि रात के समय सूते से जब जैसा सूते तो ढेर कोई खुशी रह गुच्छी आदमिया बारे की ये जरूरी है सब कोई बराबर नहीं बा ढेर कोई सकेरा अंधेरा में सूते पर ढेर कोई खुशी रह गुच्छी आदमिया बरल रही अच्छा ताकि रात एक दरूर नहीं लगी तो सबको के अपन तरीका बा सूते के भैया है तो को गुच्छी आदमिया हो तो बार दिया ताकि रात के दरबर बने कब वो रात की देर कोई बबाला या कोनो खराब सपना दख बताए कुछ उठे बताए से भयभीत हो जा रहा सा ना हाँ तो खातिर गुच्छी आदमिया छा बर्थडे रखे के और अब अगला गीत जो है चली नीतीश बुलाकी के नाम वो हमने के हाई बोला था हेलो हेलो वेद साहब है गीत हो नाम साहिल है गीत हो खातिर जोदान है गीत हो नाम देविया रुखसाना और रहमान रूपेश रूपेश मंडल बबीता है गीत हो खातिर सिम्बा है गीत हो नाम दिनेश हरी और किंग खातिर भी गीत छरी है गीत चलाती से अनिता लाल जी मोदाल बिया से आफे सैम्पिया से हवन अनिता हवन फ्रिक ऑफ लाख से और बहुत प्यार के साथ हमी के साथ जुड़ल हवन तो चल एक साथ सुने गीत आओ भैया कृषि की आवाज़ में

सब कोई शर्म ना कर आई ड्राइविंग करते थे गुरकी उर्की नहीं मर जाए आइदर यू ड्राइव और यू ड्रिंक अगर गुरकी मर ले हुआ तो सफेद डाल दिया वरना गुरकी के बदले पुड़की पड़ जाए करेगी अगला गीत करेला हो जुम्बा और आजकल दिखे से दुनिया में सोलर एनर्जी के बोल बालावा ढेर मना देश में आज जैसे क्राइसिस हुआ था तब घाम के जो जो प्रकाश और ज्योति है और से कुआं बने रहा घाम की ज्योत से और सोलर एनर्जी से बना था इलेक्ट्रिसिटी फिर इब्रिड गाड़ी कुओं से चले वाला गाड़ी सब भी बना था तो सकेला एक दिन ऐसा ना आए जापानी हम की पूछाता है कि घामा से चले हुआ गाड़ी वो भी सकेला एक दिन हो कहे कि जापान जो है जो टेक्नोलॉजी की बात कैसे था जापान सबसे आगे जापों तब बुझा था आने वाले साल में ऐसे गाड़ी चली वो गाड़ी ढेर मांगा रही वो चली सोलर एनर्जी से क्या बात है तो ऐसे में चला सुनब जा है गीत बिछानी दीपा गावल जुम्बा शिखा गंगाराम गीत और खातिर फिर बाब समी के साथ देवोत्थवन हेलो बनीश्री बंधुआ गीत और नाम यजना मुकेश बिरज भूखने की तोहर नाम फिर है गीत चली अनिता अफ्रीकों फ्लैग से बहुत बहुत प्यार के साथ लाजवंती गुर है गीत तोहर नाम बबीता नैमन गीत और खतीर वनिश्री बंधु यशना मंगरू याश निवेश जोरी क्लोर क्लोद है गीत और नाम और कविता तो कल है ये तो रखा तेर बहुत बहुत प्यार के साथ यस मुकेश भाई बहुत खुश होगा नाम सुन लग तो भैया है गीत तोहर खातिर कमरवा डुलावा जुम्बा

गीतो अच्छा बोला के चेहरा जुम्बा करे के कहे कि आजकल ढेर कहती बीमारी होता सब कोई के फजीर के राजो में सुन बसोक समाचार में तेसन जैन जैन लोग जाता दुनिया से बड़ी दुख दुख पुछाला पर चेहरा कोनो न कोनो प्रकार के एग्जरसाइज करे के आधा घंटा रोज की डॉक्टर लोग बोले रहा रोज के चेहरा सातों दिन आधा घंटा कोनो न कोनो एग्जरसाइज जो थोड़ा पसंद बा गुड मॉर्निंग वॉक या जुम्बा या जे बधोगी जॉगिंग करे जोन भी एग्जरसाइज थोड़ा अच्छा लगी जरूर करिया जाए। अब हम बात करब से हमने के रामायण ग्रंथ के बारे में तो जो रामायण है एक में ढेर कुछ सीखिला सा आदर्श समाज आदर्श राजा आदर्श पुत्र आदर्श भाई कैसे चला भाई भाई में जिए के भाई भाई कैसे जिए ला ये रामायण में हमने सीख रहे हैं कैसे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको संगे जिए ला और कैसे को देश के चलाए के राजा कैसे चला रहेगी तो वो राजा चेहरा राम लिखा रहेगी राम राज जहाँ पर सब कोई खुश रहेगा। और रामायण में नवदा भक्ति नाइन टाइप्स ऑफ डिवोशन हयो सीख रहे हैं सर और आदर्श पुत्र राम जो है अपन माँ बाप के सब आज्ञा के पालन करे तो ऐसा लड़का चेहरा पैदा करे कि जोन अपन माँ बाप के जो है आज्ञा के पालन करी तो रामायण से भी ढेर कुछ सीखिला सर और ढेर कुछ सीखते रह सर और है जो ग्रंथ है बहुत महान ग्रंथ है जो रामायण है तो लड़का लोग अभी की नहीं जाने रहा लड़का लोग के चैनल सिखाए के अगला गीत मोरिस देश संदीप जगारू गीत अगले वन है कि चाची ललिता कुशल खदेर आशा जानू कुमारी शुभम दीदी आरती साइलेंट की ओर पत्नी रानी बेटी परी इंदिरा लौतन में बैग से गीत हो नाम और है गीत चरावती से नीर खातिर वेदा खातिर जो हम के साथ देवतवन फिर राम जतन ठाकुर गीत हो नाम और सबिना

चलता तोहर रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर लाइव और टिकटॉक पेज पर भी और बेशक यहाँ पर यही समिति के साथ एक खातिर। और अब हम बात करब सर टमाटर के बारे में। टमाटर जो है वो एगो फल भी है और एगो सब्जी भी है। भारत में जेब तेरे कोई टमाटर खाला एगो फल लिखा एगो फूई लिखा हाँ कि नहीं। तो टमाटर से ढेर चीज बनाएला सर जैसे चटनी टमाटर से होगाए बनेला टमाटर फ्रिका से हाँ कि नहीं। और टमाटर तो हर तरकारी में भैया इस्तेमाल होला पोमनामू नहीं रही तो नहीं सर पोमनामू हो तुला सुस बोई रहा ना। तो टमाटर जो है एक उपयोग होला सब प्रकार के खाना में। तो बेशक अभी यहाँ पर इस तरह के शादी होते रात के 10 बजे तक तू सुना था रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने देखा था। तो अगला गीत और खातिर है गीत भागते रहेला आदमी। आज के आदमी तो भक्ति रहेला बाप कबो यहाँ भागता कबो वहाँ भागता कबो वहाँ भागता भागते रहेला। तो गीत चलावते इस वंदना गुमानी खातिर और माँ खातिर चंपा रामगतिया देविका रामगतिया शिल्पा की ओर से गीत करपति कर भाई प्रशांत माँ राधा बेटा और सब शिवालक परिवार के नाम है। गीत चली राज मन्ना ओकर परिवार खातिर सावन और जिमी दुखिया गीत और खातिर रवि दिनू के ओर पत्नी ओकर लड़का ओकर माँ बाप खातिर सुदेश जसवा गीत और खातिर तोहर माँ राजकुमारी खातिर स्टीव माना है गीत तोहर पत्नी तोहर लड़का तोहर माँ तोहर बहन तोहर जीजाजी और सब माना परिवार के नाम चिबुक लोंग राजा और नानो है गीत और खातिर और प्रवीण भैरव हमने के साथ देवतवन है गीत और नाम अवसर खान है गीत तोहर खातिर शीला बेचन फिर है ये गीत हमने चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ कमर मिन्हास के नाम गौरंगा है गीत तोहर खातिर और तोहर सब परिवार के नाम और है गीत विकास बीगू के नाम आप रही फोन जिसक लवना की ओर से और है ये गीत हमने चलावते इस विदा के नाम विदा जोन बोला था कि वो नवदा भक्ति में माने रन द 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन जोन रामायण में जोड़ी से स्पीक कर जरूर वेदा अगर तोरा मौका मिली तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप करिए नवदा भक्ति एक्सप्लेन इन रामायण। तो अभी रात के 10:01 हुआ था चल देखी ला सर कहाँ आदमिया भागा था चंद्रदेव जी बोधन गीत वगैरह वन वृंदा जुरावंद गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ बबीता नैनम मनीषा बबीता नेमन है गीत और खातिर बबीता खातिर और चांदनी हमने के साथ होता चांदनी हवन रोजल से चांदनी बताए गीत है वो खास इंसान के नाम जेकरे वो दिल ही दिल में प्यार कर रहे क्या बात है। तो चलो एक साथ सुने है गीत भागते रहेला आदमी।

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135।

0: या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: Continuous music.
2: RM3
3: Radio Mauritius
4: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस।
4: रेडियो मॉरिशस।
5: भोजपुरी,
6: भोजपुरी तड़का,
5: तड़का।
6: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
7: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC।

हाय किसी सज्जन हद दूर से दिखेला पत्नी जब सिंदूर में मांग डाला था अभी होता था दूर से ताकता दूर से निहारता कि है ऐसे का हो इतोंजे हो का रात की 10:15 और अब सास बहू की कहानी ये कहानी तो सबको जाने रहा हमेशा से ऐसे होते अलबा जब वो छोकरी शादी करके आवे रहा अपन नया घर में तब परेला ओके सास के सामना करे के आसान बात नहीं है एगो छोकरी खातिर अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपन पति लग यार तो यहाँ आप सास होके बोलिए ऐसे करे के ओसे करे के तो सास बहू में कबो कबो हो जाला तो जानी रहा सर और कबो कबो सास करा करा बोलिया बोल देवे तो कबो को बहू अपन सास के ओकर प्लास में डाल देवे सर तो सास के चना सोचे के कि हजन छोकरी ये गुजर घर से यार बात छा निमन से बचाए कि हेने उन्हें बचे बा तो थोड़ा तो मसाला दे नहीं मन से हाँ कि नहीं तो नहीं बोलिए छोकरिया मुबी बा है हाँ पीती पीती पीमा बा भाई मुकेश ब्री री बुकन गीता चल गए भैया गीता खेले नहीं सर है पीती पीती पीमा बा ठीक बा और जिस बोलते सास बहू के जो नाता है तो एक सिलके करके जीव सिलवा एगो सास अगर अपन बहू के अपन बेटी लेखा मानी और एगो बहू जे अपन सास के अपन माँ लिखा मानी तो कबो सास बहू में झगड़ा नहीं हुए कोनो कोनो घर में दिखी रहा सर सास बहू एकदम प्यार से जिए लन सर माँ बेटी लेखा जहाँ सास जाला वहाँ पत्यो जाला जहाँ जाला पत्यो तो वहाँ कर सास भी जाला पर कोनो कोनो घर में तो महाभारत सास बिल्कुल बहू के नहीं पसंद पड़ेला बहू सास के नहीं पसंद पड़ेला और जब छोकरा काम करके आवे रहा तो माँ सब बात बेटा के कान में डाल दे बेला अब देखा महाभारत ऐसे ही सब नहीं चाहला सास बहू के चाहला माँ बेटी लिखा रहे कि ताकि सब कुछ अच्छी तरह से बीती कृषि की तो अकेले वन सास बहू है गीत चलावती स मालिनी नवाज भी गापेन रोसाई अपाया सजूल और लक्ष्मण के नाम साइलेंट के उसे गीत चली कर पत्नी रानी बेटी परी माँ रीता और सब परिवार खातिर बिना भैरव गीत कर दुगो बेटा और कर पति के नाम सत्यम सुबोल हवन मेबक से इमानुएल लॉन्गचिल एसएसएस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और सैंटोबे एसएसएस कॉलेज के अध्यापक नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स के नाम भी और अभी डिम्पल अम्मी के साथ वतन हेमंता राना मगन वाजिम है गीत और नाम चली साथ में अभिषेक गीत और नाम अभिसन जिन होटल काम कर रहे हैं गीत और खातिर शीला चोआ सिम सिम है गीत और नाम उम्र वर्दा रोजाबेल करिश्मा जादू शामिला तो ये सब संगत खातिर है गीत सास बहू चले एक साथ सुने

सास बहू की कहानी सुनना ना कैसे होला। और अभी को संगतिया वाला इंडिया कॉल से मिल जा। हेलो, हाँ टेलीफोन आकर के टेलीफोन काट दे वेला सर। ब्रावो, ऐसने करिए सर, ऐसने करिए सर। का बोल गीतवा जब समाप्त हो टेलीफोने कर बा तो टेलीफोन आ लियो सर। अब गीतवा चला था बीच में सुने करा था वह गीतवा नहीं सकब सा काटे का है कि ढेर कोई गीतवा फिशे करा था सुना था मगन में हवन सर। तो लोग का करे रह सर, तो लोग बीच में सुने करे रह सर। और जैसे गीतवा फिनी होला हमने जैसे टेलीफोन लेवे तब गीतवा काट दे वेला। अमृता गणेश पीतों से आवन गीत तोहर खातिर चलिए अगला गीत मीठा मीठा बोलिया। और ये मीठा मीठा बोलिया जो है कर बहुत असर होला दुनिया में। अगर सब कोई मीठा बोली बोली तब कोई कोई से झगड़ा नहीं करी। अरे देश विदेश में आजकल झगड़ा हुआ था, अगर सब कोई मीठा बोली बोला तो झगड़ा कबो ना हुआ था। और है जो मीठा बोली है कर से अपनी इंसान के दिल जीती रह सर। और अगर खराब बोली बोल बा तो आदमी तो से नफरत करी। अच्छा और मीठा बोली बोल बस सब कोई तोर से प्यार करी, सब कोई तोरा अपना मानी। तो जहाँ ले सकब मीठा बोली बोलिया, अच्छा बात करिया। बात करे से आगे निमन से सोचे कौन सी बोलते हुआ। कोई के नीचा नहीं दिखाया, कोई के निंदा नहीं करिया, कोई के चुगली नहीं करिया, कोई के पलाब नहीं करिया। आजकल दिखी रहा सर फिर कोई इधर की हाई बात लेके उधर, उधर बात लेके इधर। और खासकर भी बड़ा आदमी लोग में देख रहे हैं इसे सब है।

ता हम नहीं खुशी रही ला सर कि है सब बोली से कोई के घर टूटी काहे चला इधर के बात उधर करे की तो लोग के काम बस नहीं रहे का यही खातिर कोनो न कोनो काम करिए ताकि इधर के बात उधर अगर को बात सुन ला भी कोई बोल ला तो खाई कान से सुन के हाउ कान से निकाल दिया अब तू बतवा लेके अकोर में अपन जेपी डाल के बतवा के आगे बढ़ाई बह तो महाभारत हो लगी भैया महाभारत हो लगी खून खराबा हो लगी खातिर बोल से कोनो भी बात करे से आगे सोच समझ के बात करिए कि का बोलत हुआ कौन सी बोलत हुआ और सुनल बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जबरे तो अपन कान से कोनो बात नहीं सुनब तो कोनो भी डिसीजन नहीं लिया हमने की काम तो लोग के समझाए के अब तो लोग देखा जा समझदार के इशारा काफ़ी बा अगला गीत मीठा मीठा बोली बोलिए और एक गीत चलाते तो विदेश में भी हवन ऑस्ट्रेलिया में अजय और पूरम चिंता राम और बेटा बाल गोपाल लास्ट स्विस में हवन रंभा है गीत और खाते तोहर तीन गो बेटी तोहर घरोला और फिर लंदन में वृंदा हवन हमने के साथ देवतावन और जितना कोई विदेश में बा और हमने के सुना था बहुत बहुत प्यार के साथ थैंक यू जी पारिश रावल गीत और खातिर गीता जाबल गीत और नाम केशवदीन है गीत और खातिर वंदना है गीत और नाम सर्वी जगे सर है गीत और नाम तो चल एक साथ सुने मीठा मीठा बोली के कौन असर होला।

मीठा मीठा गीतवा सुदेवी के नाम जो नैनन बाकवा गीत मांगले हवन त्रियोले की दीदी ललिता सब कुशल परिवार के लिए आत्माराम भैया के लिए सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रामरतन परिवार और सब संगत के नाम जो हमने सुनाते हैं बखत एमबीसी रेडियो पर।

है। जिंदगी आसान नहीं है संगत या लोग, चेहरा बहुत कड़ी मेहनत करे के तब जाके पैसा मिलेगा। एक महीना काम कर बह फूल तब जाके ले थौं थौं तैन के पैसा मिलेगा। तो आसान नहीं है तो ढेर कोई सोच रहा लाभी फासिल नहीं जिंदगी में। जिंदगी ले जाए के आसान बात नहीं बा। सजीबे मधु है अगला गीत तोहर खातिर चली ओके खाली पीले सुना नोयन के गीत मांगले हो तो थोड़ी समय में चलाओ सर। खाली पीले खाले पीले जिले भैया जिंदगी में कब खाले पीले जिले भैया है गीत गैले हवन सोना नोयन थोड़ी समय में चलाओ सर। ओके शिबे माधु तोहर गीत थोड़ी समय में। यस काव्या अगला गीत बाहर गौरी के गीत है नाचो बेटी दस्यान रानी ये गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और फिर जितना कोई अभी रात के काम कर रहा था नाइट शिफ्ट में बोंको आज बोला था इस सत्य लोग के शास्त्री बन माली उनके साथ देव तो राजेश चौहान है गीत और नाम बनीसन दीपा है गीत अभी चलावते रूमिला के नाम हेलो चांदनी है गीत और खातिर उर्वशी है गीत और नाम और जालील है गीत और खातिर और है गाना हम चलावते फेरी लव है गीत और नाम नाचो बेटी।

हाँ बोला था जिंदगी में का बा, जिंदगी में कुछ नहीं बा, खाले पीले जिले भैया, जिंदगी में का बा, खाले पीले जिले भैया। और आज जन्मदिन बा खाबीर के, रोशनी कर्मा खाबीर के बोला था हैप्पी बर्थडे जमेलिया जमेला की, तोहर खातिर तोहर घरोला खातिर भी चली बहुत प्यार के साथ। यस और जमेला और पति दोनों जना हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर। सुमिला नंदा लगी तोहर नाम मंजुलिका है की तोहर खातिर, और रोशनी और बेटा खातिर भी है गीत चली। रानी हेलो योगेश बस नैत है गीत तोहर खातिर, और चेता कोई खुशे नाचे के गावे के मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार चला गीतवा में हमने ताली मार अब सा और थोड़ा नचाओ अब सा। ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे। ताली मार यानी कि थपड़ी बजाओ। मार ताली मार ताली मार हमर संगे, मार ताली मार हमर संगे। दिनेश लखनजी ये गीत तोरो नाम

मर ताली मर हमर संग मर ताली मर। और किशवादीन बोला था कल उजाता डाउन टाउन टोरंटो जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 आ गया था। अकेले अकेले जाता हुआ हो हमरो बुला दो हम आओ अब दूश 2024 हेलो शबरान गीत और खातिर अगला गीत जोली छोकरी से प्यार करी लज कर खातिर हम रोज जीला हाय गीत में सबको नाचब सा है जोली गीत है लाटिको हेलो आशा गदाधर गीत और खातिर फिर रॉबर्ट है गीत और नाम बानू बानु सुखिया है गीत और खातिर और सब परिवार के नाम यस एंड दिनेश लखनद्री भी हमने के साथ देवतवन या यस सबीना हम ठीक हैं आशा करते तू भी ठीक है वजह यस दुश बोला था या ओके बाद में थोड़ा सा बताया आपसे दुश अभी रेडियो की बात कर जाए रेडियो के प्रोग्राम चलता ठीक बा अब ऐसे ना गीत चली है गीतों में सब कोई संगे संगे आवाज मिलाओ सा गाओ सा नाचो सा ओके 1 2 3 है गीत सब रेडियो लिसनर्स के नाम जो नहीं बखत हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर और जो कोई हमने की सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर

जिकर खातिर हम रोज जीला, लाबू के किस समझाबू के कोई न कोई बताए दे हमको से प्यार करीला, जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बतलाबू के।

राजमन्ना हमनी के सुना था और देखा था मौताबाद से। राजमन्ना कैसे समाचार, गमौटा हुआ था कि नहीं? हाँ पूछा था एक दो मरले हुआ नहीं हो बाजी ने कहा था बाप बोलता का हो प्रताप भाई। और राजमन्ना जो है बहुत प्यार से हमनी के सुने रन त है अगला गीत और खातिर सुंदर पर यह गीत और पत्नी तोहर लड़का लोग खातिर और सब मन्ना परिवार के नाम। और मन्ना कैसे बा अभी बोला था वहाँ पर ही लेता हूँ कैसे बा हमने बगल यहाँ पर ही तो ठंडा ठंडा करता पर पानी नहीं बरसता उतना है बड़ी मौके के अलावा राजमन्ना पानी नहीं बरसल बा जितना चाहना बरसे के हमने की दादी नानी लोग जो आगे हर पर गावत है आजकल उस दुनिया में नहीं है वन सर ये खातिर पानी नहीं बरसता दिखता हुआ तो कैसे हुई हमने की अगर जैबों में पानी कमती हो ली जाता अब पानी नहीं रही तो कैसे हुई बोला था राजमन्ना। और राजमन्ना जो है बड़ा जोर नाचा था हमने के संगे संगे का बोला था राजमन्ना और गी दारब सा नजबा हमने के संगे कमरवा डोलाइबा ओके गीत सुंदर परी बिना सिंचन है गीत और नाम लाला फिदा है गीत और कतेर। और राजमन्ना भी बहुत बहुत प्यार से हमने के देखा था और सुना था भी तो चला सुनब जाए गीत सुंदर परी।

0: तो कौन सी बात हो गई बेटा? छोकरिया पसीन बात हो के?
1: हाँ दादा, हमार बगल से तो हाँ बा।
0: एक बगल से तो मुंह मीठा करी जा और छोकरी से पूछी था तेरी सर। कहाँ बात हो बेटी? तो हरा भी पसीन बा। शर्माओ नहीं बोला ना। तब ना के बात बोली। पसीन बा तो हरा।
2: पसंद बा।
0: तेरी बोल यार रिश्ता पक्का समझी सा।
3: किस्मत हमर खुल गल रेखा नक्षेदी के गावल ही गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने की सुन ला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमने की देख ला टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के। आशा करते हैं तो हर मनोरंजन जरूर होल हो। कुछ मिनट में रात के 11 बजे रहा रात के 11 बजे सुन सुन बदल सुने रेपल और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे रे MBC रेडियो मॉरिशस पर। तब तक हमने की इजाजत द और जय प्रताप सिंह से ताल्लुक की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते बाय बाय।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों, शायद आपकी पहली मोहब्बत, बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों। शायद आपकी पहली मोहब्बत बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप काम पे हो तो आपको विश करना चाहेंगे वो को आजमाई दिया, और अगर घर पे हो आराम फरमा रहे हो तो बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे आप लोगों के लिए। जी हाँ, पुराने बॉलीवुड के सुनहरे गीत आपके दिल को ज़रूर छू जाएंगे, ये हमें पता है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और ये अगला गाना आप दिल से महसूस कर लीजिए।

जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लेना चाहिए और सुनिए वो गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल सुनहरे पल में लेकर आते हैं ऐसे कुछ प्यारे प्यारे गाने जो सीधे आपकी यादों को छू जाते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए बस तैयार हो जाइए मेरी जान, अगला गाना आपके नाम।

पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि उनमें बसी होती हैं यादें और जज्बात। आइए उन लम्हों को फिर से जी लेते हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। तो दोस्तों,

म्यूजिक सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस भी किए जाते हैं, हमेशा हम आपको कहते हैं। और आज के ये गीत आपके दिल की हर धड़कन को एक नई मुस्कान देंगे।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा दिल के करीब रखते हैं, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हर उम्र के लोगों को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। आज हम वही अनमोल गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यादों की डायरी खोलिए और पुराने बॉलीवुड के उन गीतों के साथ वक्त को थोड़ा सा पीछे ले चलिए। स्वागत तो बड़े प्यार से हमने कर लिया है जी, और ये शो बहुत ही प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि बस आप रिलैक्स होके हमारे साथ एंजॉय कीजिए।

MBC Radio, your music companion.

0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और तुम्हारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.